0: समर्थन देने की जरूरत दोहराई। रूस के विदेश मंत्री सर्गोई लावरोव ने कहा कि यह मंच उन देशों को एक साथ जोड़ता है जो अफगानिस्तान के साथ समान और पारस्परिक रूप से लाभकारी साझेदारी की उम्मीद करते हैं। मॉस्को फॉर्मेट की स्थापना वर्ष 2017 में अफगानिस्तान में सुलह और शांति को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। समाचार कक्ष से विकास नापा।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका के कारोबारी नेताओं से मुलाकात की और भारत में साझेदारी तथा निवेश को बढ़ावा देने के अवसरों पर चर्चा की। श्री गोयल ने कल अमेरिका के न्यूयॉर्क में ब्लैकस्टोन के अध्यक्ष और मुख्य संचालन अधिकारी जोनाथन ग्रे, न्यू बर्गर बर्मन के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी जॉर्ज वॉकर तथा द एसटी लॉडर कंपनी के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी स्टेफन डी ला फेवरी से मुलाकात की। श्री गोयल ने कहा कि मजबूत व्यापक आर्थिक बुनियाद और पूंजी बाजारों के विस्तार के साथ भारत में वैश्विक निवेशकों के लिए बड़े अवसर और दीर्घकालिक मूल्य सृजन की संभावनाएं हैं। श्री गोयल G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए अमरीका गए थे। यमन की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सरकार ने हूती विद्रोहियों के खिलाफ बड़ा सैन्य अभियान शुरू किया है। सरकारी बलों ने लाल सागर के तट पर प्रमुख रणनीतिक ठिकानों को अपने नियंत्रण में लेने का दावा किया है। एक रिपोर्ट।
2: राष्ट्रपति पद के अध्यक्ष राशद अल अलीमी ने इस अभियान को औपचारिक रूप से ऑपरेशन डॉन ऑफ यमन नाम दिया है। इसका उद्देश्य हुती नियंत्रण वाले इलाकों को वापस लेना, सरकारी संस्थाओं को बहाल करना और राजधानी सना पर फिर से नियंत्रण हासिल करना है। हुती समूह ने वर्ष 2014 से सना पर नियंत्रण कर रखा है। अल अलीमी ने एक दिन पहले सैन्य अभियान शुरू करने की घोषणा की थी। यमन के सशस्त्र बलों ने कहा कि उन्होंने सादा, अलजौफ, ताइज और पश्चिमी तट पर हुती ठिकानों के खिलाफ 1,122 सटीक सैन्य अभियान चलाए। इस घटनाक्रम के बाद मक्का रक्षा गठबंधन की आपात बैठक भी हुई जिसमें सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की शामिल हुए। तीनों देशों ने सामूहिक रक्षा संबंधी प्रतिबद्धताओं को लागू करने की दिशा में आगे बढ़ने पर सहमति जताई। इसमें मौजूदा व्यवस्था और सदस्य देशों के राष्ट्रीय कानूनों के अनुरूप सऊदी अरब में सैन्य हमलों और क्षमताओं की तेजी से तैनाती शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार हुती नियंत्रण वाले इलाकों को वापस लेने की कोशिश कर रही है। दुबई से मनीष शिवाझोली की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: अमेरिका, कनाडा, लातिन अमेरिका और कैरेबियाई क्षेत्र के 8 देशों ने ईरान और उसके सहयोगी संगठनों पर पश्चिमी गोलार्ध में आतंकवादी गतिविधियों और अन्य नुकसान पहुंचाने वाली कार्रवाइयों में शामिल होने का आरोप लगाया है। इन देशों ने ऐसी गतिविधियों से निपटने के लिए आपसी समन्वय बढ़ाने पर बल दिया है। ये घोषणा पिछले महीने अमेरिका और पैराग्वे के बीच हुए एक मंच की बैठक के बाद जारी की गई। इस बैठक का उद्देश्य क्षेत्र में ईरान से जुड़ी कथित आतंकवादी गतिविधियों के खिलाफ कानून प्रवर्तन सहयोग मजबूत करना था। सरकार ने आरोप लगाया कि ईरान और उसके सहयोगी संगठन पूरे क्षेत्र में आपराधिक गतिविधियों में शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरश ने सुरक्षा परिषद में सुधार करने में विफल रहने के परिणामों के प्रति सदस्य देशों को आगाह किया है। महासचिव के उप प्रवक्ता फरहान हक ने कहा कि गुतरश ने सदस्य देशों से रुकी हुई सुधार प्रक्रिया को आगे बढ़ाने पर बल दिया है। श्री फरहान हक से विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर की उस टिप्पणी के बारे में सवाल किया गया था जिसमें उन्होंने कहा था कि संयुक्त राष्ट्र की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था में सुधार जरूरी है जिससे वह प्रासंगिक बनी रहे। उन्होंने कहा था कि वर्ष 1945 में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के बाद से उसकी सदस्यता लगभग 4 गुना हो गई है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने संसद में आवास संबंधी 2 आपातकालीन विधेयकों के खारिज होने के बाद 29 नवंबर को समय पूर्व आम चुनाव कराने की घोषणा की है। इसके बाद सरकार पर राजनीतिक दबाव बढ़ गया था। एक रिपोर्ट।
3: सांचेज ने यह फैसला मंत्रियों और अपनी सोशलिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ सप्ताहांत में हुई बैठक के बाद लिया। प्रधानमंत्री के सामने कार्यकाल पूरा होने तक सरकार चलाने या नए जनादेश के लिए चुनाव कराने का विकल्प था। शुक्रवार को स्पेन के निचले सदन ने सरकार द्वारा समर्थित आवास से जुड़े 2 विधेयकों को खारिज कर दिया था। सांचेज की गठबंधन सरकार को संसद में कम हो रहे अपने बहुमत के कारण समर्थन बनाए रखने में लगातार मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज को अपनी सरकार को सुरक्षित बनाए रखने के लिए हर मतदान पर सहयोगी दलों से बातचीत करनी पड़ी।

0: है। संसद में मिली दो बार की हार के बाद सरकार के लिए अपनी नीतियों को आगे बढ़ाना मुश्किल हो गया है। इस बीच स्पेन के स्वायत्त क्षेत्र सऊता में प्रवासन संकट ने भी सरकार पर राजनीतिक दबाव बढ़ा दिया है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से अलका सिंह।
1: विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उनका व्यक्तिगत तौर पर मानना है कि दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की उड़ान में हुए आतंकी हमले के लिए ईरान जिम्मेदार था। श्री ट्रंप ने यह बात संवाददाता सम्मेलन के दौरान कही। यह बयान पिछले महीने 30 सितंबर को फ्लाई दुबई की उड़ान FZ-1073 में बीच हवा में विमान को हाईजैक करने और उसे दुर्घटनाग्रस्त करने की नाकाम कोशिश के बाद आया है। ओमान के सह पायलट हमाम अल हमामी ने कॉकपिट में भारतीय कैप्टन स्मिथ मच्छर पर हमला किया था। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद कैप्टन मच्छर कॉकपिट का दरवाजा खोलने में सफल रहे, जिसके बाद यात्रियों और चालक दल के सदस्यों ने हमलावर को काबू कर लिया। प्रसिद्ध ब्रिटिश उपन्यासकार जेफी आर्चर का निधन हो गया है। वे 86 वर्ष के थे। उनके निधन की पुष्टि उनके प्रकाशक ने की। प्रकाशक के अनुसार आर्चर का निधन कल उनके घर पर हुआ। उनकी मृत्यु के कारण का पता नहीं चला है। जेफरी आर्चर ब्रिटेन की कंजर्वेटिव पार्टी से सांसद भी रह चुके थे। क्रिकेट में भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला का पहला मुकाबला आज लखनऊ में खेला जाएगा। ये मैच शाम 7 बजे से भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। फीफा अंतर्राष्ट्रीय मैत्री फुटबॉल मैच में भारत का सामना आज उरुग्वे से होगा। ये मुकाबला कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में खेला जाएगा। भारत ने इससे पहले पनामा के साथ 1-1 गोल से ड्रॉ खेला था, जबकि शनिवार को ब्राजील से 4-0 से हार का सामना करना पड़ा था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने अफगानिस्तान की संप्रभुता, एकता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति समर्थन दोहराया। अफगानिस्तान के नागरिकों के कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। यमन की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सरकार ने हूती विद्रोहियों के खिलाफ बड़ा सैन्य अभियान शुरू किया। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने सुरक्षा परिषद में सुधार करने में विफल रहने के परिणामों के प्रति सदस्य देशों को आगाह किया। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने संसद में उनकी अल्पमत सरकार द्वारा विधेयक खारिज होने पर नवंबर में शीघ्र चुनाव कराने की घोषणा की। और भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 T20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच आज लखनऊ में। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड मॉर्निंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय विद द वर्ल्ड न्यूज। The headlines. India voices support for Afghanistan's sovereignty, unity and territorial integrity, reaffirms its commitment to welfare of Afghan people. Yemen's internationally recognized government launches major military offensive against Houthis. UN Secretary General Antonio Guterres warns member states on failing to reform Security Council. Spanish Prime Minister Pedro Sanchez calls early elections in November after parliamentary defeat. And first T20 international of the 5-match series between India and West Indies to be played in Lucknow today. India's voice support for Afghanistan's sovereignty, unity and territorial integrity, reaffirming its commitment to the welfare of the Afghan people at the 8th Moscow Format Consultations on Afghanistan hosted by Russia and Moscow. Indian delegation was led by Ambassador to Russia, Vinay Kumar, and Joint Secretary, Dr. M. Suresh Kumar. Representatives from Russia, Iran, Kazakhstan, China, Kyrgyzstan, Pakistan, Tajikistan, and Uzbekistan attended the forum. Belarus and Egypt participated as guests. Afghanistan was represented by Foreign Minister Amir Khan Mutaki. Russian Foreign Minister Sergei Lavrov said the forum brings together countries seeking equal and mutually beneficial partnerships with Afghanistan. Yemen's internationally recognized government has launched a major military offensive against the Houthis, with government forces claiming advances around the key strategic post along the Red Sea coast. We have a report.
3: The offensive, formally named Operation Dawn of Yemen by President of the Presidential Leadership Council, aims to retake territory held by the Houthis, restore state institutions, and regain control of the

नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। मैं प्रियांशी आपके साथ जुड़ी हूं आपके मनपसंद कार्यक्रम दिल का मेलबॉक्स में आप सभी के पसंद के गीतों की सुरीली माला लिए। तो इस कार्यक्रम में आप हमें अपनी प्रिय गीत और संदेश ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। हमारा प्रयास रहेगा कि उन सभी संदेशों को कार्यक्रम में हम सम्मिलित करें। आपके मन में कोई बात हो, कोई दुआ, कोई छोटा सा संकल्प या कोई खास संदेश, तो उन्हें भी अपने प्रिय गीतों के साथ अवश्य भेजिए। तो श्रोताओं, जल्दी लिख भेजिए अपना मनपसंद गीत, संदेश, नाम और अपना शहर और भेज दीजिए हमें fmgoldairdelhi@gmail.com पर। मैं पुनः ईमेल स्पष्ट करती हूँ, fmgoldairdelhi@gmail.com, या फिर आप हमें व्हाट्सएप पर संदेश भेज सकते हैं 9868 68753 पर, यानी 9868 68753 पर।

तो संगीत की इस दिलकश लहर के बाद आइए श्रोताओं खोलते हैं आज का दिल का मेल बॉक्स और पढ़ें आपके आत्मीय संदेश। बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढिंगिया, नमन ढिंगिया और अपार जी ने हमें संदेश भेजा है। भाटापाड़ा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि और नोखेलाल वर्मा। यवतमाल से हमारे साथ हैं सूरज लोंढे, प्राची लोंढे, एकलव्य लोंढे, धनश्री बुरांडे और इनके साथ संदेश और हमें प्राप्त हुआ है। मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा, भूमिका अरोड़ा ये लिख रहे हैं श्री गंगानगर राजस्थान से। आज हम आप ही के रास्ते आएंगे तस्वीर कार्यक्रम में, सुनिएगा 11:10 पर। नांदेड़ महाराष्ट्र से हमारे साथ हैं संतोष भाकरे, सुनैना, सुकन्या और सविता जी। बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा और बेबी आराध्या लिख रहे हैं हमें राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से। सहारनपुर से सैयद मसरूर, शाइना हसन, अक्सा अदीब, नाजिया, आफिया और इब्राहिम और सद्दाम हमारे साथ हैं। मजनू कटीला दिल्ली से, कमल बालूजा, मधु सागर और मध्य प्रदेश सतना से उमंग मलिक, आकांक्षा और माही। आइए श्रोताओं सुनते हैं इनकी फरमाइश पर ये गीत।

आइए श्रोताओं, अब फिर एक बार सुने आपकी आवाज, देखें किसने भेजा है संदेश हमें और कहां कहां से लिख रहे हैं। अनिल जैन जैन साहब, संयम मुस्कान और मास्टर जीवम हमें लिख रहे हैं मेरठ से। कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जौड़ा, इनके साथ हैं सीटी दीवाना और गुरवंश सिंह जौड़ा। हरेंद्र खाती, राजेंद्र लोहित, मनबीर राणा ये लिख रहे हैं हमें हापुड़ उत्तर प्रदेश से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। रजाक मोहम्मद, शमीम बेगम, इमरान।

हरेंद्र खाती, राजेंद्र लोहित, मनबीर राणा ये लिख रहे हैं हमें हापुड़ उत्तर प्रदेश से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। रजाक मोहम्मद, शमीम बेगम, इमरान खान और इरफान खान हमारे साथ जुड़े हैं हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से। गगनदीप थांदी, तृप्ता कुमारी थांदी, डॉक्टर प्रियंका, डॉक्टर प्रशांत, डॉक्टर प्रियम, बेबी वामिका और वाणी हमारे साथ हैं। सतवीर सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं, इनके साथ हैं देवेंद्र सिंह बिजारनिया, राजपाल, अभिषेक, योगेश, पूजा, आरजू और नव्या बिजारनिया। ये लिख रहे हैं हमें सिरसा हरियाणा से। आपका बहुत धन्यवाद। सीकर राजस्थान से हमारे साथ हैं दातार सिंह शेखावत, संगीता कन्वर, तुषार सिंह और रिंकी शेखावत। तो आइए श्रोताओं, सुनते हैं इनकी फरमाइश पर ये गीत।

और अब समय है फिर श्रोताओं आपके संदेशों का। देखें कौन सा नाम, कौन सी जगह और कौन सी दिली इच्छा हमारे पास आई है। महाराष्ट्र से रुपेश संघई, महेश संघई, प्रज्ञेश और प्रीतेश हमारे साथ जुड़े हैं। पूरा संघई परिवार इनके साथ हमारा शो सुन रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। खेल बाजार पानीपत से हमारे साथ हैं नरेश मल्होत्रा, नीटू लक्ष्य मल्होत्रा, लाडो कोयल मल्होत्रा, पापा जी नायक चंद्र मल्होत्रा। शिवाजी कॉलोनी रोहतक से हमारे साथ हैं पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का और डुग्गू भाविक सिक्का। दिल्ली रेडियो श्रोता संघ हमारे साथ हैं, इनके साथ हैं नवाब अहमद भारती, बबलू कश्यप, शबाना भारती, अरहान अहमद और सूफिया नवाब। बली मारन से ये भी हमें सुन रहे हैं। एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट, निखिल कांगड़ा और तन्वी। उमरखेड़ महाराष्ट्र से हमारे साथ हैं अभिजीत गवाणकर, राही श्रीमती सरिता इनके साथ हैं, प्रिंस एकांश गवाणकर और अर्जुन। सतप्रकाश सनोठिया जी सुन रहे हैं हमें रोहिणी दिल्ली से। व्हाइटफील्ड बेंगलुरु से भरत भूषण, अंजू श्रीवास्तव, दिव्येंदु भूषण, संस्कृति और पौरुष हमारे साथ हैं। मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक प्रतीक, अनिल, जयवीर सिंह और डॉक्टर अमनदीप हमें सुन रहे हैं। और कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल और बिट्टा। आइए श्रोताओं सुनते हैं अब इनकी फरमाइश पर ये गीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम को विराम देने का समय आ रहा है, पर उससे पहले कुछ और संदेश आपके हम पढ़ लें। वंडिंग खेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली और आरती हमारे साथ हैं। सुशीला देवी मंदूरकर, सदानंद कुमार, गौरव, आरव और अर्पिता हमारे साथ हैं, सुन रहे हैं डाब की रोड अकोला से। संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति और ओजस्वी हमारे साथ हैं। दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल, सोनू सुरेश, राजपाल पंकज, काजल सीमा, मानवी तन्वी, लक्ष्य सोनी, मोहिनी ऋतिक, बलवीर जी हमारे साथ हैं। झारखंड से हमारे साथ जुड़े हैं मोहम्मद यासीन अनजान, साइमा नवाज, हसन नवाज, बाबू अहद, मिफ्रा, बेबी चाहत और सादिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। पंजाब से हमारे साथ जुड़े हैं राज शर्मा, मीना, योगेश, मैंडी, सौरभ, साइना और निवान। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। छत्तीसगढ़ से कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी। पश्चिम सिंहभूम झारखंड से हमारे साथ हैं शिवा गोप, प्रेम, कपिल, शिवांश, संगीता, लिपि और दीपाली। तो आइए श्रोताओं, कार्यक्रम का अंत इन्हीं की फरमाइश के गीत से करें। आपके संदेश, आपके अनुरोध और आपकी संवेदनाएं ही तो इस कार्यक्रम की रूह हैं। अपना प्रेम और प्रोत्साहन हमें ऐसे ही भेजते रहिए, हमें अत्यंत प्रसन्नता होती है। आपके हर संदेश में जो स्नेह, विश्वास और अपनेपन की एक अलग ही छवि है, इसी आत्मीयता से हमारा कार्यक्रम भी सफल होता है। समय की सीमा के कारण कुछ संदेश आज शेष रह गए, लेकिन हमारे मेलबॉक्स में वो बिल्कुल सुरक्षित हैं और आने वाले कार्यक्रमों में उन्हें भी आपके बीच लाने का पूरा प्रयास रहेगा हमारा। तो हाथ छुड़ाए जाते हैं अक्सर, रिश्ते नहीं छुड़ाए जाते। मिलते हैं समाचार के पश्चात। जुड़े रहिए आकाशवाणी दिल्ली एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ के साथ। प्रियांशी भटनागर का आपको नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और पुदुचेरी की 5 विधानसभा सीटों तथा असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। तमिलनाडु की मदुरांतकम और दारापुरम विधानसभा सीटों, पुदुचेरी की तट्टान सावड़ी तथा पश्चिम बंगाल की रेजीनगर और नंदीग्राम सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। असम की नागांव लोकसभा सीट पर भी मतदान हो रहा है। मतगणना शुक्रवार को होगी। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए 8 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। पार्टी ने धर्मपाल सिंह, राधाकांत ओझा, प्रकाश पाल, विद्यासागर सोनकर, गोपी कृष्ण पांडे, प्रियंका सिंह रावत, राम प्रताप सिंह चौहान और श्रुति गंगवार को उम्मीदवार बनाया है। राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का आज अंतिम दिन है। इन चुनावों में उत्तर प्रदेश की 10 और उत्तराखंड की 1 राज्यसभा सीट के साथ पश्चिम बंगाल की 1 राज्यसभा सीट पर उपचुनाव भी शामिल है। मतदान 16 अक्टूबर को होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज विशाखापट्टनम में हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में फ्लीट सपोर्ट शिप FSS-1 का जलावतरण किया और फ्लीट सपोर्ट शिप FSS-5 के निर्माण की आधारशिला रखी। इस अवसर पर श्री सिंह ने हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के कार्यों की सराहना की।
1: हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड भारत की नेशनल मैरिटाइम कैपेबिलिटी का कस्टोडियन है। पिछले 8 डिकेड्स से भी अधिक समय से HSL ने देश की मैरिटाइम और डिफेंस रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है।
0: रक्षा मंत्री ने उन्नत स्लीपवे 4 और 300 टन क्षमता वाली गोलियन क्रेन का भी उद्घाटन किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज ओडिशा के कोरापुट में हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के कोरापुट डिवीजन से निर्मित 2000वें एयर इंजन हस्तांतरण कार्यक्रम में भी मौजूद रहेंगे। रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि इस दौरान हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड कोरापुट के करीब 6 दशकों के योगदान को उजागर किया जाएगा। देश की एयरोस्पेस और रक्षा विनिर्माण क्षमता तथा सशस्त्र बलों की परिचालन तैयारियों को मजबूत करने में इसके योगदान को भी सामने रखा जाएगा। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज से घाना, कोटे डीआईवर और इथोपिया की 5 दिन की यात्रा पर रहेंगे। यात्रा के दौरान डॉ जयशंकर अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। श्री जयशंकर तीनों देशों के शीर्ष नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने आज कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाया कि विपक्षी पार्टियां, खासकर कांग्रेस, देश में अराजकता का माहौल बनाने की सुनियोजित कोशिश कर रही है। नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि इसके लिए विपक्षी पार्टियां देश की संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ सुनियोजित तरीके से अपमानजनक बातें कह रही है। उन्होंने कहा कि विपक्षी पार्टियां समय समय पर सेना, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड और ईवीएम को निशाना बनाती रही हैं। श्री पात्रा ने आगे कहा कि पिछले कई हफ्तों और महीनों से विपक्ष अराजकता का माहौल बनाने

के लिए चुनाव आयोग को निशाना बना रहा है। भारत ने अफगानिस्तान की संप्रभुता, एकता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति अपना समर्थन दोहराया है, साथ ही अफगानिस्तान के लोगों के कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता भी व्यक्त की है। भारत ने ये बात रूस के मॉस्को में आयोजित 8वें मॉस्को फॉर्मेट कंसल्टेशन ऑन अफगानिस्तान में कही। नाइजीरिया में बेनिन सिटी से लागोस जा रहा सैन्य विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। विमान में सवार सभी 32 लोगों की मौत हो गई है। इनमें 25 यात्री और चालक दल के 7 सदस्य शामिल हैं। राष्ट्रपति बोला टिनुबु ने हादसे की पुष्टि करते हुए नाइजीरियाई वायुसेना को दुर्घटना के कारणों की तत्काल और विस्तृत जांच के निर्देश दिए हैं। और अब कुछ खेल खबरें। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला का पहला क्रिकेट मैच आज लखनऊ में खेला जाएगा। ये मुकाबला शाम 7 बजे से शुरू होगा। इसके अलावा फीफा अंतर्राष्ट्रीय मैत्री फुटबॉल मैच में आज भारत और उरुग्वे आमने सामने होंगे। मैच सॉल्ट लेक के युवा भारतीय क्रीड़ांगण में खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज केरलम, माहे, दक्षिण आंध्री कर्नाटका, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारेकाल के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, बिहार में आज बिजली चमकने और तेज हवाएं चलने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

राजपुताना वैभव की पहचान उसकी भव्यता उस स्थापत्य बोध में भी है जिसमें दुर्ग, पहाड़ और प्रकृति एक ही संरचना का अंग बन जाते हैं। नीमराना का दुर्ग इसी स्थापत्य परंपरा का एक विलक्षण उदाहरण है। अरावली की ढलान में इस तरह ढला हुआ कि पत्थर की प्राचीरें और पहाड़ी की देह एक दूसरे से अलग दिखाई ही नहीं देती। राजपूत स्थापत्य की गरिमा में मुगल प्रभावों की कुछ छवियां भी यहां दिखाई देती हैं और सदियों पुराना ये वैभव आज भी जीवंत है। नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और मैं प्रियांशी भटनागर आपके प्रिय यात्रा वृतांत तस्वीर में आज आपको लेकर चल रही हूं राजस्थान के नीमराना की ओर, जहां एक ऐतिहासिक दुर्ग को केवल संरक्षित नहीं किया गया बल्कि उसके स्थापत्य, राजसी आतिथ्य, पारंपरिक भोजन और जीवन शैली के साथ उसकी सांस्कृतिक विरासत को फिर से जीवित किया गया है। दिल्ली से जयपुर की ओर जाती सड़क से जैसे जैसे अरावली के निकट आप आएंगे, नीमराना की पहाड़ी पर उठती उस पथरीली संरचना की परतें दिखाई देने लगेंगी। 15वीं शताब्दी में आरंभ हुई इसकी कहानी 1947 के बाद एक लंबे विराम से गुजरी, फिर 1980 के दशक में संरक्षण और पुनरुद्धार ने इस विरासत को नया जीवन दिया और आज यही दुर्ग एक जीवित हेरिटेज अनुभव का रूप ले चुका है। तो आइए उस पहाड़ी की ओर बढ़ते हैं जहां इतिहास पत्थरों में भी सुरक्षित है और वर्तमान में अपनी पूरी शान के साथ जीवित भी है।

तो आइए श्रोताओं, अब पहाड़ी की ओर बढ़ें। सामने धीरे धीरे उभरता है नीमराणा का दुर्ग। 15वीं शताब्दी में चौहान वंश से जुड़ा ये दुर्ग 1464 से अपने इतिहास की पहचान रखता है और इस नाम के पीछे एक लोक कथा भी है। कहा जाता है कि यहाँ निमोला मेव नाम के एक पराक्रमी स्थानीय सरदार का प्रभाव था। चौहानों से संघर्ष में पराजित होने के बाद उन्होंने इच्छा जताई कि उनकी स्मृति इस भूमि के नाम में बनी रहे और लोक परंपरा नीमराणा नाम को इसी कथा से जोड़ती है। तो आइए अब जरा किले की ओर भी चलें। 14 स्तरों में ऊपर उठता ये दुर्ग पहाड़ी पर स्थित नहीं लगता, बल्कि पहाड़ी के साथ ही ऊपर उठता दिखाई देता है। पत्थर की प्राचीरें एक के ऊपर एक खुलते आंगन और छतें, झरोखे और अरावली की ओर खुलते दृश्य। ऊंचाई बदलते ही किले की छवि भी बदलती जाती है। 1947 के बाद ये दुर्ग लंबे समय तक वीरान रहा। फिर 1986 में इसका पुनरुद्धार आरंभ हुआ और 1991 में ये हेरिटेज होटल के रूप में फिर खुला। आज यहाँ इतिहास को दूर खड़े होकर देखने की आवश्यकता नहीं, उसके भीतर ठहर कर उसे जिया भी जा सकता है। और एक पल उन पत्थरों की ओर फिर देख लीजिए। कभी सत्ता का घर रहे ये कक्ष आज यात्रियों की मेजबानी कर रहे हैं।

श्रोताओं, आइए अब किले के भीतर चलें। कभी जहां राज परिवार का जीवन बीतता था, आज वहीं आंगन, छतें और कक्ष हेरिटेज प्रवास का अनुभव देते हैं। चाहे तो आप यहां ठहर सकते हैं या फिर पूर्व निर्धारित डे विजिट के लिए भी आ सकते हैं। श्रोताओं, इस अनुभव में भोजन की अपनी बड़ी भूमिका है। राजस्थानी रसोई की पारंपरिक थाली में दाल बाटी चूरमा, गट्टे और तरह तरह के राजसी व्यंजन परोसे जाते हैं। मिठास में अलवर का मिल्केक और घेवर भी अपनी जगह बनाते हैं। तो शाम ढले तो दुर्ग के खुले परिसर में शास्त्रीय और पारंपरिक संगीत नृत्य की प्रस्तुतियां इस राजसी वातावरण में सुर जोड़ती हैं। और यदि इस अनुभव में आपको थोड़ी शाही सवारी जोड़नी हो तो यहाँ विंटेज कार से आप नीमराना गांव की सैर भी कर सकते हैं। हाँ, एक बात ध्यान रखने की है, 14 स्तरों में फैले इस दुर्ग में सीढ़ियां और ढलाने बहुत हैं। कुछ हिस्सों तक पहुंचने के लिए लिफ्ट की सुविधा है और सुगम्य पालकी सेवा के माध्यम से गतिशीलता में कठिनाई वाले अतिथियों के लिए ऊपर तक पहुंचना संभव बनाया जाता है। फिर भी पूरे परिसर में सहज व्हीलचेयर आवागमन हर जगह संभव नहीं है, इसलिए पहले से अपनी आवश्यकता बताना उचित रहेगा। और अगर पालकी या लिफ्ट के बजाय आप अपने दो पैरों के भरोसे किले की चढ़ाई करने वाले हैं तो पानी की बोतल, धूप से बचने के लिए चश्मा और टोपी और सबसे बढ़कर आरामदेह जूते साथ रखिएगा। यहाँ इतिहास देखने के साथ थोड़ी सी कसरत भी हो जाएगी। नीमराना में राजसी जीवन केवल सजावट में नहीं मिलता, वो वास्तुकला की भव्यता में है, वो दृश्यों में है, वो स्वाद में है, सुरों में है, सवारी में है और उन पत्थरों के बीच आज भी चलती फिरती एक जीवंत परंपरा में भी है।

श्रोताओं, अब समय हो चला है एक अल्प विराम का। लौट कर किले की ऊंचाई से उतरकर नीमराना के उस हिस्से की ओर चलते हैं जहां पानी, कारीगरी और रोजमर्रा का जीवन इस पुराने नगर की एक और तस्वीर सामने लाता है।

0: जीवन में हमें रक्षा करना आना चाहिए, रक्षा अपने आत्मविश्वास की, रक्षा अपने समाज की, रक्षा अपने देश की और रक्षा देश के तटों की। ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड, यांत्रिक, नाविक, जनरल ड्यूटी, नाविक, डोमेस्टिक ब्रांच एवं हाइजीनिस्ट की ऑनलाइन एप्लीकेशन की जानकारी के लिए विजिट करें www.ssc.gov.in।
1: कैसे चुने सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और तस्वीर कार्यक्रम में मैं प्रियांशी आपको नीमराना की इस अनुपम यात्रा पर लिए चल रही हूं। तो किले से कुछ ही दूरी पर नीमराना बावड़ी आपका इंतजार करती है। 18वीं शताब्दी की ये भूमिगत बावड़ी धरती के भीतर उतरती जल वास्तुकला का सुंदर उदाहरण है। सीढ़ियां नीचे जाती हैं और उनके साथ बदलती हुई रोशनी और पत्थर की परतें बावड़ी को एक अलग ही संसार बना देती हैं। और फिर जरा चलते हैं ऊपर गांव की ओर। यहां हेरिटेज वॉक में पुराने घरों और हवेलियों के साथ स्थानीय कारीगरों की दुनिया से परिचय होता है। कहीं मिट्टी को आकार देता कुम्हार है, कहीं लाख की चूड़ियां संवारता शिल्पकार, तो कहीं पीढ़ियों से सोने चांदी और लोहे का काम करते परिवार हैं। स्थानीय बाजार और हस्तशिल्प में राजस्थानी आभूषण, मिट्टी की वस्तुएं, वस्त्र और पारंपरिक परिधान इस लोक जीवन को अपनी रंगत से सजोए हैं। बावड़ी की गहराई से गांव की गलियों तक आते आते नीमराना का एक और रूप सामने आता है। किले में जो वैभव आप देखेंगे वो यहाँ हाथों के हुनर में और रोजमर्रा की जीवित परंपराओं में उतर आता है। और इस लोक जीवन की इन गलियों से संगीत की राहों पर चलते हैं। फिर शब्दों की ये सरिता अब सुरों से मिलने चली है, तो आइए सुनते हैं एक और मधुर गीत

श्रोताओं, नीमराणा में एक दो दिन तो ठहरना ही चाहिए। नीमराणा फोर्ट पैलेस या आसपास के किसी होटल को अपना आधार आप बना सकते हैं और फिर एक दिन में आसपास की विरासत भी थोड़ी सी टटोली जा सकती है। तिजारा की ओर निकलें तो पहाड़ी पर स्थित तिजारा फोर्ट पैलेस के खुले आंगन हैं। रानी और मर्दाना महल की स्थापत्य छवियां देखिए और पास ही चंद्रप्रभु जैन मंदिर में कुछ पल ठहरिए। आगे अलवर पहुंचकर सिटी पैलेस के राजपूत और मुगल स्थापत्य संयोजन, मूसी महारानी की छतरी की नक्काशी और राजकीय संग्रहालय के लघु चित्रों, शस्त्रों और पुरानी पांडुलिपियों को देख सकते हैं। और फिर शाम ढलने से पहले नीमराणा लौट आइए, महल की ऊंचाइयों से जगमगाता नगर देखिए, अपने शानदार हेरिटेज प्रवास की शाम का आनंद लीजिए और दिन का समापन इसी राजसी वातावरण में रात्रि भोज के साथ कीजिए। सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और राजसी रात्रि भोज के बीच अनुभव कीजिए श्रोताओं किसी फिल्मी राजमहल की रंगीन दुनिया में पहुंच जाने का ये अनोखा आनंद है।

श्रोताओं, नीम राणा में एक दिन और हो तो अब किले की ऊंचाइयों से निकलकर आप सिलीसेड झील की ओर भी जा सकते हैं। रास्ता बदलता जाता है, राजमार्ग की चहल पहल पीछे छूटती है और अरावली की पहाड़ियां, ग्रामीण बस्तियां और खुला भूदृश्य सामने आने लगता है। झील पर पहुंचते ही 1845 में महाराजा विनय सिंह द्वारा बनवाया गया सिलीसेड लेक पैलेस आपको दिखाई देगा। झील के किनारे बनी इसकी मेहराबें, जालीदार खिड़कियां और छतरियां पानी में अपनी छवि उतारती हैं। नाव से झील का विस्तार कीजिए, किनारों पर पक्षियों की हलचल सुनिए और महल की छत से अरावली को एक नए कोण से निहारिए। और सच कहें तो सिलीसेड की झील और लेक पैलेस में समय कहां ही बीत जाता है पता ही नहीं चलता।

नया सिलीसेर लेक पैलेस आपको दिखाई देगा। झील के किनारे बनी इसकी मेहराबें, जालीदार खिड़कियां और छतरियां पानी में अपनी छवि उतारती हैं। नाव से झील का विस्तार कीजिए, किनारों पर पक्षियों की हलचल सुनिए और महल की छत से अरावली को एक नए कोण से निहारिए। और सच कहें तो सिलीसेर की झील और लेक पैलेस में समय कहां ही बीत जाता है पता ही नहीं चलता। इसीलिए जब शाम हो और नीमराना लौटने की राह पकड़ें तो रास्ते के लिए थोड़ा समय बचाकर रखिएगा। अलवर का प्रसिद्ध मिल्क केक, घेवर, स्थानीय नमकीन और आसपास के हस्तशिल्प, मिट्टी की वस्तुएं, पारंपरिक सजावटी सामान या राजस्थानी शिल्प, ये भी मिले तो इन्हें साथ लेते चलिएगा। खिड़की के बाहर बदलती अरावली, ढलती रोशनी और गांवों की राह के बीच ये वापसी भी यात्रा का अपना एक पड़ाव बन जाएगी। और फिर शाम तक ऐसे ही लौट आइए नीमराना की उसी शाही आभा में

श्रोताओं, यदि आपकी रुचि हो तो एक दिन और लेकर आप सुबह ही सरिस्का टाइगर रिजर्व की ओर भी निकल सकते हैं। पास ही है वो भी। अरावली की पहाड़ियों के बीच जाती सड़क धीरे धीरे जंगल में उतरती है और सफारी में वहां आपको बाघ, तेंदुआ, सांबर और अनेक पक्षियों को देखने का अवसर भी मिलेगा। नीमराना घूमने के लिए अक्टूबर से मार्च का समय सबसे सुहावना रहता है। मौसम खुला हो तो किले की ऊंचाइयां, बावड़ी और आसपास की सैर का आनंद भी और अधिक मिलता है। दिल्ली से सड़क द्वारा पहुंचना सबसे सहज विकल्पों में है। दिल्ली जयपुर मार्ग और एक्सप्रेसवे की बेहतर कनेक्टिविटी है। रास्ते में मिलने वाले पर्याप्त रेस्ट स्टॉप्स और सुविधाओं के कारण ये रोड ट्रिप अब पहले से कहीं अधिक सहज और तीव्र भी हो गया है। रेल से आने वाले यात्री नीमराना के निकटवर्ती रेलवे स्टेशन तक पहुंचकर आगे सड़क मार्ग ले सकते हैं, जबकि हवाई यात्रा के लिए दिल्ली या जयपुर प्रमुख विकल्प हैं। और किले की सीढ़ियों, ढलानों और आसपास की गलियों के लिए आरामदेह जूते, पानी और सनग्लासेस अवश्य साथ रखिए। नीमराना में इतिहास तो देखने आए ही हैं, पर किले के बहुत रास्ते पैदल ही तय करने होंगे।

और अब नीमराना की इस यात्रा से विदा लेने का समय है। पीछे मुड़कर देखें तो एक ही यात्रा में कितनी ही छवियां हमारे साथ चली। आज अरावली की ढलान पर उतरता दुर्ग, धरती के भीतर उतरती बावड़ी, गांव की गलियों में अद्वितीय शिल्प, राजपुताना रसोई की सुगंध, सिली सेड़ का शांत जल और सरिस्का का वन। नीमराना की यही तस्वीर अपने साथ रखिए, जहां इतिहास केवल पत्थरों में नहीं, रहने खाने घूमने और जीने के अनुभव में आज भी जीवित है। इसी तस्वीर के साथ आज की यात्रा यहीं पूर्ण होती है। फिर मिलेंगे किसी नए नगर, नई संस्कृति और नई कहानी के साथ। तब तक इस गीत के साथ मुझे अनुमति दीजिए, सुनते रहिए आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। प्रियांशी भटनागर का आप सभी को सस्नेह नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स बिलासपुर के दीक्षांत समारोह को संबोधित किया और प्रशिक्षु चिकित्सकों को डिग्री प्रदान की। इस अवसर पर श्रीमती मुर्मू ने कहा कि चिकित्सा क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य मानवता की सेवा होना चाहिए। राष्ट्रपति हिमाचल प्रदेश के 3 दिन के दौरे पर हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज नई दिल्ली में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के दूसरे दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर मुरली मनोहर पाठक ने बताया कि समारोह में 1,300 से अधिक विद्यार्थी भाग लेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज विशाखापट्टनम में हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में फ्लीट सपोर्ट शिप FSS-1 का जलावतरण किया और फ्लीट सपोर्ट शिप FSS-5 के निर्माण की आधारशिला रखी। इस अवसर पर श्री सिंह ने हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के कार्यों की सराहना की।
1: हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड भारत की नेशनल मैरिटाइम कैपेबिलिटी का कस्टोडियन है। पिछले 8 डिकेड्स से भी अधिक समय से HSL ने देश की मैरिटाइम और डिफेंस रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है।
0: रक्षा मंत्री ने उन्नत स्लीपवे 4 और 300 टन क्षमता वाली गोलियन क्रेन का भी उद्घाटन किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज ओडिशा के कोरापुट में हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के कोरापुट डिवीजन से निर्मित 2000वें एयर इंजन हस्तांतरण कार्यक्रम में भी उपस्थित रहेंगे। रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि इस दौरान हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड कोरापुट के करीब 6 दशकों के योगदान को उजागर किया जाएगा। देश के एयरोस्पेस और रक्षा विनिर्माण क्षमता तथा सशस्त्र बलों की परिचालन तैयारियों को मजबूत करने में इसके योगदान को भी सामने रखा जाएगा। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज से घाना, कोटे डी आइवर और इथोपिया की 5 दिन की यात्रा पर रहेंगे। यात्रा के दौरान डॉ जयशंकर अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। श्री जयशंकर तीनों देशों के शीर्ष नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। वे अदीस अबाबा में विदेश मंत्री क्षेत्रीय मिशन प्रमुखों के सम्मेलन की अध्यक्षता भी करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष खासकर कांग्रेस पर देश में अराजकता का माहौल बनाने की सुनियोजित कोशिश करने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में आज मीडिया से बातचीत में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि पिछले कई हफ्तों और महीनों से विपक्ष अराजकता का माहौल बनाने के लिए निर्वाचन आयोग को निशाना बना रहा है।
2: कुछ हफ्तों से इलेक्शन कमीशन के ऊपर हमला चल रहा है। इलेक्शन कमीशन का इस्तेमाल करते हुए देश में एक एनार्की और अराजक माहौल बनाने का प्रयास आज भी कांग्रेस पार्टी करने वाली है, जो तथाकथित रैली और मार्च के विषय में हम सुन रहे हैं। हमारा ये दायित्व है कि बहुत सटीक रूप से विषय को देश के जनता के सामने रखना और उन्हें समझाना कि आखिर इलेक्शन कमीशन में क्या हो रहा है।
0: श्री पात्रा ने कहा कि विपक्षी पार्टियां समय समय पर सेना, सर्वोच्च न्यायालय और ईवीएम को निशाना बनाती रही हैं। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा है कि पश्चिम एशिया का संकट एक बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि इसने एविएशन टर्बाइन फ्यूल ATF की कीमतों में बढ़ोतरी का भारी बोझ डाला है। श्री नायडू ने नई दिल्ली में मीडिया से कहा कि मंत्रालय सभी संबंधित पक्षों के साथ बैठक करेगा और फिर कोई फैसला लेगा। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और पुदुच्चेरी की 5 विधानसभा सीटों तथा असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। तमिलनाडु की मदुरांतकम और दारापुरम विधानसभा सीटों, पुदुच्चेरी की तट्टान सावड़ी तथा पश्चिम बंगाल की रेजीनगर और नंदीग्राम सीटों पर

0: 당근.
1: कार्यक्रम घर आंगन में आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम में आज मैं हूं आपके साथ रेनू। तो कीजिए स्वीकार मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल पर यानी 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, और साथ ही साथ आप हमें सुन सकते हैं आकाशवाणी के इंद्रप्रस्थ चैनल पर भी यानी 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज पर। तो शुरू करते हैं अपनी बातों मुलाकातों का सिलसिला। तुम मृद मानस के भाव और मैं मनोरंजनी भाषा, तुम नंदन वन घन विटप और मैं सुख शीतल तल शाखा, तुम प्राण हो मैं काया, तुम शुद्ध सच्चिदानंद ब्रह्म और मैं मनमोहिनी माया, और मैं मनमोहिनी माया।

आई मिलन की बेला, इस फिल्म से अभी आपने ये गीत सुना लता मंगेशकर की आवाज में। और दोस्तों, रोज रात में जब हम आसमान में टिमटिमाते तारों को देखते हैं तो दिल में अक्सर एक सवाल आता है कि आखिर ये तारे बने किस चीज से हैं, इनका तापमान क्या होगा। आज से करीब 100 साल पहले इस रहस्य से पर्दा उठाने वाला और कोई नहीं बल्कि हमारे देश के वैज्ञानिक थे मेघनाथ साहा। जी हाँ, 6 अक्टूबर 1893 को ढाका के एक छोटे से गांव में जन्मे मेघनाथ साहा दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिकों की कतार में खड़े होने वाले पहले भारतीय थे, जिन्होंने 1920 में एक ऐसा फॉर्मूला दुनिया को दिया जिसे दुनिया साहा आयनीकरण समीकरण के नाम से जानती है। इस समीकरण ने वैज्ञानिकों को ये बताया कि करोड़ों मील दूर चमकते सूरज और तारों का तापमान क्या है और वे किन गैसों से बने हैं। इससे खगोलविदों को तारों के प्रकाश और स्पेक्ट्रम को का अध्ययन करने और उसके वास्तविक तापमान, दबाव और रासायनिक संरचना का सटीक पता लगाने में मदद मिली। मेघनाथ साहा ने कोलकाता में साहा नाभिकीय भौतिकी संस्थान, इंडियन फिजिकल सोसाइटी और साइंस एंड कल्चर पत्रिका की शुरुआत भी की। इसके साथ ही राष्ट्रीय योगदान की अगर इनके बात करें तो वे भारत के राष्ट्रीय शक पंचांग यानी नेशनल कैलेंडर में सुधार करने के लिए गठित समिति के अध्यक्ष भी रहे। विज्ञान के साथ साथ वे देश के सामाजिक और आर्थिक विकास के प्रति भी समर्पित रहे। वर्ष 1952 के लोकसभा चुनाव में वे निर्दलीय सांसद चुने गए और संसद में देश की औद्योगिक और वैज्ञानिक नीतियों पर खुलकर इन्होंने अपने विचार रखे। तो आज उनकी जयंती पर हम सब उन्हें और उनके कार्यों को याद कर रहे हैं जिन्होंने हमें तारों को देखने का एक अलग ही नजरिया दिया।

तुमसे अच्छा कौन है, इस फिल्म से अभी आप ये गीत सुन रहे थे लता और रफी की आवाज में। दोस्तों, हर सुबह जब हम अपनी उंगलियों से चाय का कप थामते हैं या बिना सोचे, ज्यादा कुछ बिना सोचे सीधे कदमों से सड़क पर चल पड़ते हैं, तो हमें ये सब कुछ समाने लगता है। लेकिन इसी दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके लिए सिर्फ एक उंगली को हिलाना या एक कदम आगे बढ़ाना किसी पर्वत को लांघने जैसा होता है, क्योंकि वो पीड़ित होते हैं मानसिक पक्षाघात यानी सेरेब्रल पाल्सी से। ये कोई संक्रामक रोग नहीं बल्कि न्यूरोलॉजिकल यानी तंत्रिका संबंधी विकार है, जो मुख्य रूप से बच्चों के शारीरिक संतुलन, मांसपेशियों के समन्वय और चलने फिरने की क्षमता को प्रभावित करता है। ये समस्या मस्तिष्क के उस हिस्से में चोट या असामान्य विकास के कारण होती है जो शरीर की गतिविधियों को नियंत्रित करता है। इस स्थिति की सबसे बड़ी बात यह है कि शरीर भले साथ ना दे रहा हो, लेकिन भीतर जो मन है, जो सपने हैं, इनकी मासूम मुस्कान वो वैसी की वैसी होती है। ये बच्चे कमजोर नहीं है, ये वो योद्धा हैं जो हर पल अपनी ही मांसपेशियों से एक खामोश जंग लड़ रहे होते हैं। लेकिन सही समय पर मिली फिजियोथेरेपी, असिस्टिव डिवाइसेस और सबसे बढ़कर अपनों के साथ से ये बच्चे आत्मनिर्भर बन सकते हैं। लेकिन दवा और थेरेपी से भी ज्यादा बड़ी दवा ये है जो कि समाज को देनी है, और वो है स्वीकारिता। इन्हें हमारी दया की बैसाखियां नहीं चाहिए, बल्कि इन्हें चाहिए हमारा साथ। इन्हें एक ऐसा समाज चाहिए जहां इनके लड़खड़ाते कदमों को देखकर कोई हंसे नहीं बल्कि इनका हाथ थाम ले। तो आज 6 अक्टूबर को विश्व मानसिक पक्षाघात दिवस के रूप में हम मना तो रहे हैं, लेकिन हम अपने नजरिए में एक बदलाव करना, मतलब हमें चाहिए कि इन बच्चों को एक बेहतर समाज देने का संकल्प हमें करना है।

अनजाना फिल्म से अभी आप सुन रहे थे लता और मुकेश को। आप हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी के एफएम गोल्ड और इंद्रप्रस्थ चैनल पर। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लग रहा है हमें जरूर लिखिएगा, और लिखने के लिए हमारा मेल आईडी वही fmgoldga@gmail.com। तो हमें आपके प्यारे प्यारे संदेशों का इंतजार है, जो आपके मन में हो हमें जरूर लिखिए। और अब बात हमारे देश के गौरव की, हजारों वर्षों के संघर्ष और हमारी जीवटता के एक प्रतीक की। ये कहानी है गुजरात के मोढेरा गांव में स्थित ऐतिहासिक सूर्य मंदिर की, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार मन की बात कार्यक्रम में किया है, क्योंकि इस साल मनाया जा रहा है इस मंदिर के 1000 वर्ष पूरा होने पर इसका सहस्राब्दी वर्ष। इसका निर्माण 1025 ईस्वी में राजा भीमदेव ने कराया था, और फिर आज से ठीक 1000 साल पहले यानी 1026 में जब विदेशी आक्रांताओं ने सोमनाथ को लूटा, तब उन्होंने मोढेरा के इस अद्भुत सूर्य मंदिर को भी तहस नहस कर दिया था। फिर राजा भीमदेव प्रथम ने न सिर्फ दुश्मनों को खदेड़ा, बल्कि बहुत कम समय में इस मंदिर का पुनर्निर्माण कराया। हमारे पूर्वजों के हार न मानने वाले इसी जज्बे के कारण आज ये मंदिर उसी भव्य रूप में खड़ा है। यानी ये केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि हमारी जीवटता और कभी न टूटने वाले हौसले का भी प्रतीक है। इसकी विजयोड़ वास्तुकला की अगर बात करें, तो सावन भादों में सूर्य की पहली किरणें सीधे मंदिर के गर्भगृह में पड़ती हैं। इसके ठीक सामने एक विशाल सीढ़ीनुमा कुंड है, जिसे सूर्य कुंड कहा जाता है। इसमें पानी तक उतरने के लिए अलंकृत सीढ़ियां और लगभग 108 छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं। इसके खंभों पर बहुत बारीक नक्काशी की गई है, जिन पर 12 महीने के अनुसार सूर्य के 12 रूपों और पौराणिक कथाओं के दृश्य उकेरे गए हैं। और सबसे खास बात यह है कि ये ऐतिहासिक सूर्य मंदिर आज मोढेरा गांव के सौर्य परियोजना का वैचारिक प्रेरणा स्रोत होने के साथ साथ तकनीकी रूप से भी इसका एक अभिन्न अंग बन चुका है, जिससे ये गांव आज देश का पहला 24/7 सौर्य ऊर्जा संचालित गांव बन चुका है। यानी जहां कभी पत्थरों पर सूर्य की पहली किरण देश को चमकाती थी, आज उन्हीं की रश्मियों से पूरा गांव रोशन हो रहा है। इतिहास की विरासत और आधुनिक विज्ञान का ऐसा सस्टेनेबल तालमेल पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है। तो आज इस मंदिर के बारे में जानने के बाद हमें जब भी अवसर मिले इस ऊर्जावान विरासत को देखने जरूर जाना चाहिए, और अपने जीवंत इतिहास और इसके प्रतीक को, ताकि हम स्वयं अनुभव कर सकें।

अभी आपने ये गीत सुना, फिल्म थी अप्रैल फूल और आवाजें थी रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की। दोस्तों, प्रतिभा कभी बेकार नहीं जाती, किसी न किसी रूप में वो काम जरूर आती है। यूपीएससी प्रतिभा सेतु संघ लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित एक ऐसा ही डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे यूपीएससी ने अंतिम मेरिट सूची में जगह बनाने से चूक जाने वाले उम्मीदवारों को हित में रखकर इसे शुरू किया है। इसके माध्यम से आयोग ऐसे उम्मीदवारों को नौकरी दिलाने में मदद करता है जो यूपीएससी की परीक्षा के सभी पड़ावों में शामिल होते हैं, लेकिन सभी चरण पूरे करने के बाद थोड़े से अंतर से चूक जाते हैं और अंतिम मेरिट सूची में जगह नहीं बना पाते। इस योजना के तहत सरकार द्वारा उन प्रतिभावान उम्मीदवारों का डाटा निजी कंपनियों के साथ शेयर किया जाता है और इसके लिए पहले उम्मीदवारों की सहमति ली जाती है, फिर उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यता, संपर्क विवरण समेत उनका बायोडाटा निजी कंपनियों को उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना का उद्देश्य यही है कि प्रतिभा बेकार नहीं जानी चाहिए। तो अगर आप में प्रतिभा है तो रास्ते और भी हैं। एक रास्ता बंद हुआ तो दूसरा अवश्य खुलेगा। बस जो भी कीजिए दिल से कीजिए और सफलता जरूर मिलेगी।

अभी आपने ये गीत सुना रफी और आशा भोसले की आवाज में, फिल्म थी गहरा दाग। और त्योहारों का मौसम आते ही हमारे घरों में रौनक आ जाती है, साफ सफाई, नए कपड़े और पकवान, शॉपिंग की लिस्ट। इन त्योहारों में अपने अपने अपने घर के लिए हम कुछ ना कुछ जरूर खरीदते हैं और ये वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत के मंत्र को हकीकत में बदलने का अवसर भी है। देश की मिट्टी में रचे बसे प्रकृति के अनुकूल और अपनापन लिए हुए स्वदेशी सामान हमारा मन मोह लेते हैं, क्योंकि ये हमारी प्रकृति और हमारी संस्कृति और परंपरा के मूर्त रूप होते हैं। इसमें हमारा प्राचीन कौशल छुपा होता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होता रहता है और अपने समुदाय, अपने देश, अपने क्षेत्र विशेष की कहानी कहता है। स्वदेशी यानी आत्मनिर्भरता, आत्मसम्मान, पर्यावरण सुरक्षा और अपनी पहचान। जब हम स्वदेशी सामान खरीदते हैं तो हम सिर्फ एक वस्तु घर नहीं लाते, बल्कि देश की किसी दूसरी माँ या बहन की रसोई की खुशियों में शामिल होते हैं और उनका चूल्हा जलाने में ये सहायक होते हैं। यानी स्वदेशी सामानों की बिक्री जितनी ज्यादा से ज्यादा होगी, स्थानीय बुनकरों कामगारों को रोजगार मिलेगा, उनकी आमदनी बढ़ेगी, जिससे उन्हें अपने काम को करने में और भी उत्साह और खुशी आती है। इसी से हमारे देश की विरासत, संस्कृति और परंपरा को फलने फूलने का अवसर भी मिलता है। तो इस बार अपने लिए, अपने घर के लिए जो भी खरीदें, स्वदेशी ही खरीदें। यानी इस बार जब हम करवा चौथ की चूड़ियां या दिवाली के दिए खरीदने निकले तो मॉल की महंगी चमचमाती लाइटों के बजाय हमारी गली के नुक्कड़ पर बैठे उस कुम्हार के मिट्टी के दिए खरीदें जो साल भर इसकी प्रतीक्षा में रहते हैं। और इसी तरह घर सजाने के लिए वंदनवार या तोरण लें तो किसी स्वदेशी प्लास्टिक के सामान को ना लें। और हमारी जो बहन है या कोई स्वयं सहायता समूह द्वारा जो हाथ से सुंदर सुंदर चीजें बनाती हैं, उन्हें इस अवसर पर जरूर खरीदें और अपनी परंपरा और इस स्वदेशी सामान को चुनें। तो इस बार घर का कोना कोना स्वदेशी की खुशबू से महकेगा, ऐसा हम संकल्प लेते हैं।

अभी आपने ये गीत सुना सुहाना सफर फिल्म से आशा भोसले और रफी की आवाज में, और कुछ मेल हमारे पास आ चुके हैं आप लोगों के, आप लोग प्रोग्राम बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। और जो ये पहला मेल मेरे सामने है ये है चरण दास जी का, ये कह रहे हैं रेणु जी नमस्कार, और एफएम गोल्ड के प्रस्तुत कर जो प्रोग्राम है ये बहुत ही अच्छा लग रहा है और रोजाना सुनते हैं, और भाई सभी लोग स्वस्थ रहें, सभी फनकार स्वस्थ रहें। तो ये आपने लिखा है बिल्कुल सभी लोगों को स्वस्थ रहना चाहिए और आपको हमारा कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है, तो ये बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और कार्यक्रम इसी तरह सुनते रहिए। इसके अलावा जो हमारे पास दूसरा मेल है ये है उमेश कुमार का, और ये लिखते हैं कि घर आंगन प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है, और साथ ही साथ जो जानकारी दी जा रही है वो भी बहुत अच्छी है, और जो है ये प्रोग्राम ये नियमित ये भी श्रोता हैं और लिख रहे हैं कि इन्हें अच्छा लग रहा है। इसके अलावा गौरी शंकर लिख रहे हैं, ये भी हमारे नियमित श्रोता हैं, ये भी लिख रहे हैं कि बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है और गाने भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका, और इसी तरह सुनते रहिए और लिखते रहिए हमें। इसी तरह से एक और मेल है हमारे पास सुदर्शन मुखी का, ये भी हमारे नियमित श्रोता हैं, और इनके साथ अनीता मुखी, सिमरन मुखी, शांति नगर सोनीपत से ये लिख रहे हैं, इन्हें भी कार्यक्रम पसंद आ रहा है, गीत भी अच्छे लग रहे हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और उमेश कुमार का ये दूसरा एक और मेल है, ये भी लिख रहे हैं कि अप्रैल फूल का गाना जो आपने सुनवाया था अभी कि, तो ये इन्हें बहुत अच्छा लगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग इतने ध्यान से प्रोग्राम सुनते हैं, जानकारियां और गीत आपको पसंद आते हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह हमारे प्रोग्राम के साथ जुड़े रहिए और हमें लिखते रहिए, क्योंकि यकीन मानिए आपके लिखने से हमारी बहुत हौसला अफजाई होती है, हम प्रोग्राम को और अच्छा और बेहतर बना पाते हैं। तो अब प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं घर की साफ सफाई की, जो कि आजकल कई घरों में शुरू हो गई होगी या होने वाली होगी। तो साफ सफाई जरूरी है, लेकिन साथ ही साथ अपनी सेहत का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है, इसलिए इस बार करें स्मार्ट और सेफ सफाई। सबसे पहला और जरूरी टिप ये है कि अकेले पूरे घर की सफाई की जिम्मेदारी ना उठाएं, खासकर से ये बात हम महिलाओं के लिए कहना चाहते हैं जो कि समझती हैं कि सारा काम बस उन्हीं की जिम्मेदारी है और वो शुरू हो जाती हैं। घर के सभी सदस्यों को, बच्चों से लेकर बड़ों तक,

छोटे छोटे काम बांट दीजिए ताकि साफ सफाई का बोझ नहीं लगे बल्कि एक मजेदार पारिवारिक गतिविधि की तरह आप उसे आनंद उसका उठा सकें। दूसरा पॉइंट है कि कमरे दर कमरे चलिए, एक साथ पूरा घर फैलाने से तनाव बढ़ता है, इसलिए इसको चरणबद्ध तरीके से कीजिए, आज किचन तो कल लिविंग रूम। और हाँ, कबाड़ या पुराना सामान जो एक साल से इस्तेमाल नहीं हुआ है उसे या तो दान कर दीजिए या फिर बाहर का रास्ता दिखाइए। घर जितना हल्का होगा मन उतना ही साफ होगा, लेकिन ध्यान रखिए कि इस चक्कर में कोई जरूरी सामान ना फेंक जाए। तीसरा और सबसे अहम पहलू है कि आपकी सेहत, हार्श केमिकल या तेज एसिड को अवॉइड करें, फिर इसे इस्तेमाल करते वक्त हाथों में दस्ताने पहन लें और धूल मिट्टी से बचने के लिए मुंह पर मास्क और सूती कपड़ा बांधना भी बिल्कुल ना भूलें। साफ सफाई के दौरान बीच बीच में पानी पीते रहें ताकि थकान ना हो। और चौथा और सबसे जरूरी चीज ये है कि इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस और झालरों की जाँच भी जरूर करवा लें और पर्दे और जालों को हटाते समय तारों का खास ख्याल रखें। तो इस बार दिवाली पर सिर्फ घर के कोने कोने को ही नहीं बल्कि अपने काम के तरीकों को स्मार्ट बनाइए और ज्यादा थकिए नहीं बल्कि मुस्कुराइए।

धूल का फूल अभी इस फिल्म से आप सुन रहे थे आशा भोसले और महेंद्र कपूर की आवाज़ में ये गीत। और इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय अब समाप्त होने को है, तो मुझे यानी रेनू को दीजिए अनुमति, लेकिन आप सुनते रहिए कार्यक्रम का ये अंतिम गीत। फिल्म है दिल तेरा दीवाना और आवाज़ है रफ़ी और लता की। तो मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज विशाखापट्टनम स्थित हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में फ्लीट सपोर्ट शिप 1 का जलावतरण किया। उन्होंने फ्लीट सपोर्ट शिप 5 की कील रखी और उन्नत स्लिपवे 4 तथा 300 टन क्षमता वाली गोलियात क्रेन का भी उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री सिंह ने हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के कार्यों की सराहना की।
1: हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड भारत की नेशनल मैरिटाइम कैपेबिलिटी का कस्टोडियन है। पिछले 8 डिकेड्स से भी अधिक समय से HSL ने देश की मैरिटाइम और डिफेंस रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है।
0: उन्नत स्लिपवे 4 नई क्रेन के साथ शिपयार्ड को 45,000 डेडवेट टन तक के जहाजों के निर्माण और जलावतरण में सक्षम बनाएगा। इससे बड़े जहाजों के निर्माण की उसकी क्षमता में वृद्धि होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज ओडिशा के कोरापुट में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के कोरापुट डिवीजन से निर्मित 2000वें एयर इंजन हस्तांतरण कार्यक्रम में भी उपस्थित रहेंगे। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस दौरान हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कोरापुट के करीब 6 दशकों के योगदान को उजागर किया जाएगा। देश की एयरोस्पेस और रक्षा विनिर्माण क्षमता तथा सशस्त्र बलों की परिचालन तैयारियों को मजबूत करने में इसके योगदान को भी सामने रखा जाएगा। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज से घाना, कोटे डी आइवर और इथोपिया की 5 दिन की यात्रा पर रहेंगे। यात्रा के दौरान डॉ जयशंकर अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। श्री जयशंकर तीनों देशों के शीर्ष नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। वे अदीस अबाबा में विदेश मंत्री क्षेत्रीय मिशन प्रमुखों के सम्मेलन की अध्यक्षता भी करेंगे। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा है कि पश्चिम एशिया संकट चिंता का विषय है, क्योंकि इससे विमानन ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी का भारी बोझ पड़ा है। श्री नायडू ने आज नई दिल्ली में कहा कि सरकार स्थिति का आकलन करने के लिए विमानन और तेल विपणन कंपनियों के साथ कीमतों पर बातचीत कर रही है। उन्होंने कहा कि मंत्रालय सभी संबंधित पक्षों के साथ बैठक करेगा और फिर कोई फैसला करेगा। भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष, खासकर कांग्रेस पर देश में अराजकता का माहौल बनाने की सुनियोजित कोशिश करने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में आज मीडिया से बातचीत में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि पिछले कई हफ्तों तथा महीनों से विपक्ष अराजकता का माहौल बनाने के लिए निर्वाचन आयोग को निशाना बना रहा है।
2: कुछ हफ्तों से इलेक्शन कमीशन के ऊपर हमला चल रहा है। इलेक्शन कमीशन का इस्तेमाल करते हुए देश में एक एनार्की और अराजक माहौल बनाने का प्रयास आज भी कांग्रेस पार्टी करने वाली है, जो तथाकथित रैली और मार्च के विषय में हम सुन रहे हैं। हमारा ये दायित्व है कि बहुत सटीक रूप से विषय को देश के जनता के सामने रखना और उन्हें समझाना कि आखिर इलेक्शन कमीशन में क्या हो रहा है।
0: श्री पात्रा ने कहा कि विपक्षी पार्टियां समय समय पर सेना, सर्वोच्च न्यायालय और ईवीएम को निशाना बनाती रही हैं। विपक्षी दलों ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं और मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग को लेकर संसद भवन से निर्वाचन आयोग के मुख्यालय निर्वाचन सदन तक विरोध मार्च निकाला। कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और अन्य दलों के विपक्षी सांसदों ने संसद मार्ग पर धरना दिया। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और पुदुच्चेरी की 5 विधानसभा सीटों तथा असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। तमिलनाडु की मधुरांतकम और दारापुरम विधानसभा सीटों, पुदुच्चेरी की तट्टान सावड़ी तथा पश्चिम बंगाल की रेजीनगर और नंदीग्राम सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। असम की नगांव लोकसभा सीट पर भी मतदान हो रहा है। मतगणना शुक्रवार को होगी। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के शुरुआती कारोबार में आज बढ़त देखी गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 476 अंक बढ़कर 72,859, जबकि निफ्टी 132 अंक की वृद्धि के साथ 22,688 पर था। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला का पहला क्रिकेट मैच आज लखनऊ में खेला जाएगा। यह मुकाबला शाम 7 बजे से शुरू होगा। जापान एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम के सदस्यों का आज सुबह अमृतसर हवाई अड्डे पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

हिंदी सिनेमा के सबसे हैंडसम हीरोज में से एक और उच्च कोटि के अभिनेता विनोद खन्ना है हमारे आज के कलाकार बेमिसाल। 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आपके साथ है रजनी। विनोद खन्ना की अभिनय यात्रा के कुछ रोचक पड़ाव और उनके लोकप्रिय गीत लेकर, पहला जो गीत है वो हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म कुर्बानी से।

आज ही के दिन 6 अक्टूबर 1946 को पाकिस्तान के पेशावर में विनोद खन्ना का जन्म हुआ। उनके जन्म के अगले ही साल उनका परिवार मुंबई में आके बस गया। स्कूली दिनों में ही विनोद खन्ना 16वां साल और मुगले आजम जैसी फिल्में देखकर फिल्मों के दीवाने हो गए। लेकिन उनका पहला प्यार फिल्में नहीं, क्रिकेट था। वो स्कूल और कॉलेज की ओर से क्रिकेट खेला करते थे। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि उन्हें जब इस बात का एहसास हो गया कि वो क्रिकेट में विश्वनाथ नहीं बन सकते, तो उन्होंने फिल्मों को करियर के रूप में चुन लिया। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म जुर्म से, आवाजें हैं कुमार सानू और साधना सरगम की।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: कलाकार बेमिसाल आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर और आज बात हो रही है विनोद खन्ना की। विनोद खन्ना की पहली फिल्म मन का मीत थी जो कि 1968 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे सुनील दत्त और खन्ना के ऑपोजिट थी लीना चंदावरकर। उनकी भी ये पहली फिल्म थी मगर ये फिल्म कोई बड़ा कमाल नहीं कर पाई। इसके बाद विनोद खन्ना ने सच्चा झूठा, आन मिलो सजना, पूरब और पश्चिम, रेशमा और शेरा, जाने अनजाने और रखवाला जैसी बड़ी फिल्मों में सहनायक की भूमिका निभाई। 1971 में आई फिल्म मेरे अपने में विनोद खन्ना को मुख्य भूमिका निभाने का मौका मिला जिसे दर्शकों के साथ समीक्षकों की भी बहुत सराहना मिली।

मेरे अपने फिल्म से एक गीत आपने सुना किशोर कुमार की आवाज में। मेरे अपने की कामयाबी के बावजूद विनोद खन्ना को किसी बड़ी फिल्म में मुख्य भूमिका नहीं मिल सकी। मेरा गांव मेरा देश, कच्चे धागे, हाथ की सफाई, प्रेम कहानी जैसी लोकप्रिय फिल्मों में उन्होंने सहनायक या फिर खलनायक के किरदार निभाए। हालांकि इस दौरान उन्होंने मेम साहब, अचानक, आरोप, इम्तिहान और हम तुम और वो और शक जैसी फिल्मों में मुख्य नायक की भूमिका भी निभाई। 1974 में आई फिल्म हाथ की सफाई के लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेता का फिल्म फेयर अवार्ड जीता। इसी फिल्म से आपको सुनवाते हैं मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में ये लोकप्रिय गीत।

70 के दशक के आखिरी वर्षों में और 80s की शुरुआत में महाबदमाश चोर सिपाही आधा दिन आधी रात आपकी खातिर इनकार मैं तुलसी तेरे आंगन की लहू के दुरंग और कुर्बानी जैसी सफल फिल्मों में विनोद खन्ना मुख्य अभिनेता के तौर पर दिखाई दिए लेकिन साथ ही द बर्निंग ट्रेन कुदरत डाकू और जवान राजपूत राजमहल जैसी फिल्मों में उन्होंने सहनायक की भूमिका भी निभाई अमिताभ बच्चन के साथ उनकी जोड़ी बहुत लोकप्रिय रही 70 के दशक में इन दोनों ने परवरिश खून पसीना अमर अकबर एंथनी मुकद्दर का सिकंदर जमीर और हेरा फेरी जैसी फिल्मों ने बड़े पर्दे पर धूम मचा दी हेरा फेरी का टाइटल सॉन्ग आपको सुनवाते हैं किशोर कुमार और महेंद्र कपूर की आवाजों में

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: जीवन में हमें रक्षा करना आना चाहिए, रक्षा अपने आत्मविश्वास की, रक्षा अपने समाज की, रक्षा अपने देश की और रक्षा देश के तटों की। ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड, यांत्रिक, नाविक, जनरल ड्यूटी, नाविक, डोमेस्टिक ब्रांच एवं हाइजीनिस्ट की ऑनलाइन एप्लीकेशन की जानकारी के लिए विजिट करें www.ssc.gov.in।
2: एफएम गोल्ड पर आप सुन रहे हैं कलाकार बेमिसाल और आज की हमारी शख्सियत हैं विनोद खन्ना। 1982 में विनोद खन्ना ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सबको चौंका दिया। अपने करियर के चरम पर उन्होंने फिल्मों

से संन्यास ले लिया और अमेरिका चले गए। 5 बरस के ब्रेक के बाद वो फिल्मों में वापस आए, लेकिन तब तक बहुत कुछ बदल चुका था। मगर अपनी दूसरी पारी में भी उन्होंने इंसाफ, जुर्म, दयावान, चांदनी, क्षत्रिय परंपरा, सत्यमेव जयते, बंटवारा और लेकिन जैसी सफल फिल्में दी। 90 के दशक के अंत में उन्होंने सीनियर और कैरेक्टर रोल करने शुरू कर दिए। इस दौरान उन्होंने हिमालय पुत्र, लीला, वांटेड, दबंग, दबंग 2 और दिलवाले जैसी फिल्मों में काम किया। फिलहाल अगला गीत आपको सुनवाते हैं फिल्म इम्तिहान से।

2017 की शुरुआत में विनोद खन्ना कई बीमारियों का शिकार हो गए। 27 अप्रैल 2017 को कैंसर के कारण उनका देहांत हो गया। मरणोपरांत उन्हें फिल्मी दुनिया के सबसे बड़े सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अलावा फिल्म फेयर लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड, स्टारडस्ट अवार्ड और जी सिने लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए उन्हें चुना गया। आज भी विनोद खन्ना को हम उनकी अभिनय शैली, उनके स्टाइल और उनकी दिलकश मुस्कान के लिए याद करते हैं। आज का

मीडियम एफ 197.2 मीटर यानी 1521 किलोहर्ट्ज और साथ ही एफएम फ्रीक्वेंसी 104 मेगाहर्ट्ज पर आपकी सेवा में यह आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। आसन 2026 अक्टूबर माह की दिनांक 6 और दिवस है मंगलवार। चौथा आकाशवाणी के तवांग केंद्र से हमारा आज का प्रसारण आरंभ होता है। अब से लेकर प्रसारण के अंत तक यानी रात्रि 9:16 तक प्रसारित किए जाने वाले तमाम कार्यक्रमों को आप श्रोताओं तक पहुंचाने के लिए ड्यूटी कक्ष में उपस्थित कार्यक्रम सहायक श्रीमती संकेत सुमो, नियंत्रण कक्ष में उपस्थित तकनीकी अभियंता श्री लाम सिंह और श्री तानिंग ताको, ट्रांसमीटर में उपस्थित तकनीकी अभियंता श्री अच्युत बर्मन और श्री न्यूतन बोरा, मोनपा में उद्घोषक श्री थुतन ताशी तथा अन्य कर्मचारियों के साथ मैं हूं आज की हिंदी उद्घोषिका यशिवमु। कार्यक्रम सुन रहे आप सभी श्रोताओं का हमारे आज के इस प्रसारण में हार्दिक अभिनंदन करते हैं।

मीडियम वेव के मीटर बैंड पर आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। श्रोताओं, आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित अब से कुछ ही पलों में यानी दोपहर 2 बजे आप सुन सकेंगे मीडिया न्यूज के अंतर्गत अंग्रेजी में समाचार। तत्पश्चात दोपहर 2:15 पर आप सुन सकेंगे दोपहर समाचार के तहत हिंदी में समाचार। कृपया कुछ पलों की प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाखापट्टनम के हिंदुस्तान शिपयार्ड में फ्लीट सपोर्ट शिप 1 का जलावतरण किया और फ्लीट सपोर्ट शिप 5 की कील बिछाई। तमिलनाडु, पुदुच्चेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों और असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी। ई संजीवनी ने 50 करोड़ टेली कंसल्टेशन का आंकड़ा पार किया। भारत की डिजिटल स्वास्थ्य सेवा पहल में महत्वपूर्ण उपलब्धि। विश्व बैंक ने

0: मौजूदा वित्त वर्ष के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर अनुमान 0.5% बढ़ाकर 7.1% किया। और भारत वेस्ट इंडीज के बीच पहला 2020 मैच आज शाम लखनऊ में। अब समाचार विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत को अपनी समुद्री शक्ति को और बढ़ाने तथा देश की रक्षा क्षमताओं को सुदृढ़ करने के लिए एक मजबूत और एकीकृत समुद्री इकोसिस्टम की आवश्यकता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज विशाखापट्टनम स्थित हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में फ्लीट सपोर्ट शिप 1 का जलावतरण किया। उन्होंने फ्लीट सपोर्ट शिप 5 की कील रखी और उन्नत स्लिप वे 4 तथा 300 टन क्षमता वाली गोलियाथ क्रेन का भी उद्घाटन किया। सभा को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि फ्लीट सपोर्ट शिप 1 का शुभारंभ, फ्लीट सपोर्ट शिप 5 की नींव रखना और एचएसएल में उन्नत बुनियादी ढांचे का उद्घाटन भारत की समुद्री क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
1: शिप बिल्डर्स जानते हैं कि कील केवल जहाज का एक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट नहीं है, कील उस जहाज की फाउंडेशन है, कील उस जहाज की बैकबोन है। आज जो कील रखी गई है वह भारत की मैरिटाइम फ्यूचर की एक और मजबूत यह फाउंडेशन है, ऐसा मैं मानता हूं।
0: श्री सिंह ने हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के कार्यों की सराहना की।
1: हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड भारत की नेशनल मैरिटाइम कैपेबिलिटी का कस्टोडियन है। पिछले 8 डिकेड्स से भी अधिक समय से एचएसएल ने देश की मैरिटाइम और डिफेंस रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है।
0: श्री सिंह ने कहा कि सूर्य नामक फ्लीट सपोर्ट शिप 1 भारतीय नौसेना की मारक क्षमता, सहन शक्ति और परिचालन प्रभावशीलता को बढ़ाएगा। श्री सिंह ने कहा कि हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने भारत की समुद्री और रक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
1: वर्ष 2025 में हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को मिनी रत्ना कैटेगरी 1 का दर्जा प्राप्त होना इसके ट्रांसफॉर्मेशन और पिछले वर्षों में किए गए उल्लेखनीय प्रयासों का ही परिणाम है। इसके लिए भी आप सब बधाई के पात्र हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड इस उपलब्धि से इंस्पायर होकर मैरिटाइम के क्षेत्र में अपने प्रयासों को और तेजी से एग्जीक्यूट करेगा।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज ओडिशा के कोरापुट में हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के कोरापुट डिवीजन से निर्मित 2000वें एयरो इंजन हस्तांतरण कार्यक्रम में भी उपस्थित रहेंगे। रक्षा मंत्रालय ने नौसेना के जहाजों के लिए ब्रह्मोस फायर कंट्रोल सिस्टम और लॉन्चर की खरीद के वास्ते ब्रह्मोस एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ 660 करोड़ रुपए से अधिक का अनुबंध किया है। मंत्रालय ने कहा कि ये परियोजना 3 वर्ष की अवधि में रोजगार सृजित करेगी। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और पुदुचेरी की 5 विधानसभा सीटों तथा असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। तमिलनाडु की मदुरांतकम और धारापुरम विधानसभा सीटों, पुदुचेरी की तट्टान चावड़ी तथा पश्चिम बंगाल की रेजीनगर और नंदीग्राम सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। असम की नगांव लोकसभा सीट पर भी मतदान हो रहा है। मतगणना शुक्रवार को होगी। तमिलनाडु में आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों नारापुरम और मदुरांतकम में उपचुनाव के लिए मतदान शांतिपूर्वक चल रहा है। ताजा जानकारी के अनुसार मदुरांतकम में वोटिंग प्रतिशत 35.55 और नारापुरम में 37.28% है। चुनावों को देखते हुए सुरक्षा कड़ी है। मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। मतगणना 9 अक्टूबर को होगी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से प्रेरित है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन में परिवर्तन भी ला रहा है। आज हमारी विशेष श्रृंखला में बात गुजरात के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी परियोजना के बारे में।
2: नर्मदा नदी में साधु पेड़ पर 182 मीटर की भव्य ऊंचाई के साथ स्थापित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित इस विशाल प्रतिमा का उद्घाटन 31 अक्टूबर 2018 को किया गया था। गुजरात विधानसभा की 182 सीटों का प्रतिनिधित्व करती यह प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से लगभग 2 गुनी ऊंची है। जनभागीदारी की अनूठी मिसाल पेश करते हुए देश भर के लाखों किसानों ने अपने पुराने कृषि औजारों का लोहा इस प्रतिमा के निर्माण के लिए दान दिया था। राष्ट्रीय गौरव के इस प्रतीक के निर्माण और इससे आए क्रांतिकारी बदलाव को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री

0: श्री नरेंद्र मोदी ने कहा,
1: दुनिया की ये सबसे ऊंची प्रतिमा पूरी दुनिया को, हमारी भावी पीढ़ियों को उस व्यक्ति के साहस, सामर्थ्य और संकल्प की याद दिलाती रहे जिसने मां भारती को खंड खंड टुकड़ों में करने की जो साजिश को नाकाम करने का पवित्र कार्य किया।
0: इस महत्वाकांक्षी परियोजना ने शांत जनजातीय क्षेत्र को विश्व स्तरीय पर्यटन केंद्र में बदलकर स्थानीय आदिवासी समुदाय के लिए स्थायी रोजगार और समृद्धि के नए द्वार खोल दिए हैं। एकता नगर में पिंक ऑटो चलाकर अपने परिवार का आधार बनी देविकाबेन तड़वी बताती है,
2: स्टेच्यू यूनिटी आने के बाद हमें जॉब भी मिली हुई है, हम यहाँ पे पिंक ऑटो चलाते हैं और बच्चे भी अच्छी तरह पढ़ते हैं और रोजगारी मिली है, उसकी वजह से मेरे को बहुत ही फायदा है।
0: अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
3: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और पर भी उपलब्ध हैं।
4: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए, expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर कृपया से फिर से सुन लें। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय टेली मेडिसिन सेवा ई संजीवनी ने 50 करोड़ टेली परामर्श का आंकड़ा पार कर लिया है। ये देश में डिजिटल तकनीक के जरिए लोगों तक किफायती, सुलभ और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के सरकार के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि देश के सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अब तक 50 करोड़ से अधिक टेली परामर्श किए जा चुके हैं। एक रिपोर्ट।
5: ये प्लेटफॉर्म अब कृत्रिम बुद्धिमता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित क्लिनिकल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम AICDSS के एकीकरण के साथ और अधिक विकसित हुआ है। यह प्रणाली परामर्श के दौरान स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को सहयोग प्रदान करती है तथा नैदानिक निर्णय लेने की गुणवत्ता, एकरूपता और दक्षता को मजबूत करने में सहायता करती है। इस नवाचार को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता भी मिली है और इसे राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 के अंतर्गत स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है। ई संजीवनी को इमरजेंसी रेस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम 112 के साथ भी एकीकृत किया गया है, जिससे आपातकालीन प्रतिक्रिया सेवाओं और दूरस्थ चिकित्सा विशेषज्ञता के बीच बेहतर समन्वय स्थापित हुआ है। इस एकीकरण का उद्देश्य चिकित्सा सहायता तक अधिक समन्वित पहुंच को सुगम बनाना और आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं में डिजिटल तकनीक के उपयोग को और मजबूत करना है। ई संजीवनी अब देश के प्रमुख सरकारी चिकित्सा संस्थानों के माध्यम से विशेषज्ञ OPD परामर्श की सुविधा के विस्तार की दिशा में भी आगे बढ़ रही है। अक्षित के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डॉक्टरों से सेवा और करुणा की भावना के साथ चिकित्सा क्षेत्र में काम करने का आह्वान किया है। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद विज्ञान संस्थान एम्स के प्रथम दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति ने वर्तमान समय में चिकित्सा क्षेत्र में आए व्यापक परिवर्तनों का उल्लेख किया।
6: वर्तमान समय में चिकित्सा पद्धतियों, तकनीकी और स्वास्थ्य सेवाओं के स्वरूप में तेज गति से परिवर्तन आ रहा है। भविष्य में इस परिवर्तन की गति को और भी तीव्र होने की संभावना है। ऐसे परिस्थिति में अपने आप को सक्षम बनाए रखने के लिए आपके लाइफ लॉन्ग लर्नर बने रहना चाहिए। आप अपनी नॉलेज को रिसर्च का रूप दीजिए, रिसर्च के इनोवेशन में बदले और उस इनोवेशन में लोगों के जीवन को बेहतर बनाए।
3: उपराष्ट्रपति CP राधा कृष्णन ने कहा है कि संस्कृत वो स्वर्णिम सूत्र है जो भारत की सभी भाषाओं को जोड़ती है। श्री राधा कृष्णन ने आज नई दिल्ली में श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के दूसरे दीक्षांत समारोह में कहा कि भारत की हर भाषा समृद्ध है और सभी भाषाओं ने देश की संस्कृति को समृद्ध करने में योगदान दिया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। विश्व बैंक ने मौजूदा वित्त वर्ष में भारत के सकल घरेलू उत्पाद GDP वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 7.1% कर दिया है। अप्रैल में यह अनुमान 6.6% था। यह संशोधन उम्मीद से बेहतर आर्थिक वृद्धि के बाद किया गया है। वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में भारत की अर्थव्यवस्था 7.8% की दर से बढ़ी। इसमें मजबूत निजी खपत और निवेश की महत्वपूर्ण भूमिका रही। विश्व बैंक के अनुसार निजी उपभोग आगे भी आर्थिक वृद्धि का मुख्य आधार बना रहेगा।

0: भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष खासकर कांग्रेस पर देश में अराजकता का माहौल बनाने की सुनियोजित कोशिश करने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में आज मीडिया से बातचीत में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि पिछले कई हफ्तों और महीनों से विपक्ष अराजकता का माहौल बनाने के लिए निर्वाचन आयोग को निशाना बना रहा है।
1: कुछ हफ्तों से इलेक्शन कमीशन के ऊपर हमला चल रहा है। इलेक्शन कमीशन का इस्तेमाल करते हुए देश में एक एनार्की और अराजक माहौल बनाने का प्रयास आज भी कांग्रेस पार्टी करने वाली है, जो तथाकथित रैली और मार्च के विषय में हम सुन रहे हैं। हमारा ये दायित्व है कि बहुत सटीक रूप से विषय को देश के जनता के सामने रखना और उन्हें समझाना कि आखिर इलेक्शन कमीशन में क्या हो रहा है।
0: श्री पात्रा ने कहा कि विपक्षी पार्टियां समय समय पर सेना, सर्वोच्च न्यायालय और ईवीएम को निशाना बनाती रही हैं। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने फॉर्म 6 में मॉडिफिकेशन का आदेश नहीं दिया था।
1: सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमने कोई मॉडिफिकेशन फॉर्म 6 में हो इस प्रकार का आदेश नहीं दिया था, और जिस प्रकार राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि फॉर्म 6 इलीगल है, उस प्रकार की कोई स्टेटमेंट CJI द्वारा या सुप्रीम कोर्ट द्वारा कल नहीं किया गया। CJI ने कहा है सुनवाई होगी तो इस पर हम देखेंगे। उससे पहले देश में अराजकता का माहौल और भ्रम का माहौल बनाने की कोशिश राहुल गांधी कर रहे हैं।
0: भारतीय जनता पार्टी ने आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के विरोध और आकाशवाणी भवन में घुसपैठ करने को लेकर हमला बोला है। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए पार्टी प्रवक्ता डॉ सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि कांग्रेस परिवार ने पिछली 4 पीढ़ियों से लोकतंत्र का गला घोटकर राजशाही शासन चलाया है। यमन में आज सऊदी अरब के नेतृत्व वाले गठबंधन की हुती ठिकानों के खिलाफ नई कार्रवाई के बाद संघर्ष तेज हो गया है। गठबंधन ने बताया कि उसने सना में बैलिस्टिक मिसाइल दागने वाले एक प्लेटफॉर्म और सादा में एक भंडारण केंद्र को नष्ट किया। हालांकि हुती समर्थित मीडिया ने दावा किया है कि उनके लड़ाकों ने धुबाब और बाब अल मंदब में सऊदी समर्थित बलों की बढ़त को रोक दिया है। दोनों पक्षों के बीच ताजा संघर्ष यमन की सरकार के ऑपरेशन डॉन ऑफ यमन के बाद हुआ है। एक रिपोर्ट।
2: यमन सरकार की सेना ने सोमवार को हुती विद्रोहियों के खिलाफ ऑपरेशन डॉन ऑफ यमन शुरू किया। इस अभियान को सऊदी अरब की एयर पावर का समर्थन मिल रहा है। सरकार का कहना है कि अभियान का मकसद हुतियों के कब्जे वाले इलाकों को वापस लेना और राजधानी सना पर फिर से नियंत्रण हासिल करना है। आज सऊदी लेड कोएलिशन ने कहा कि उसकी नौसेना ने हुदेदा में कार्रवाई की। गठबंधन के मुताबिक हुतियों के हथियारों के डिपो, विस्फोटकों से लदी नावों के ठिकाने और सी माइंस को नष्ट किया गया। दक्षिणी रेड सी के जलमार्गों पर संभावित हमलों को भी नाकाम किया गया। गठबंधन ने यह भी दावा किया है कि उसे सना में एक बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च प्लेटफॉर्म को नष्ट कर दिया है। मनीष शिवा, आकाशवाणी समाचार, दुबई।
0: भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 मैचों की 2020 श्रृंखला का पहला मैच आज लखनऊ में खेला जाएगा। इकाना स्टेडियम में ये मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। मौसम विभाग ने आज केरला, माहे, दक्षिण आंध्रिक कर्नाटका, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में कुछ स्थानों पर तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाखापट्टनम के हिंदुस्तान शिपयार्ड में फ्लीट सपोर्ट शिप 1 का जलावतरण किया और फ्लीट सपोर्ट शिप 5 की केल बिछाई। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों और असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनावों के लिए मतदान जारी। ई संजीवनी ने 50 करोड़ टेली कंसल्टेशन का आंकड़ा पार किया। भारत की डिजिटल स्वास्थ्य सेवा पहल में महत्वपूर्ण उपलब्धि। विश्व बैंक ने मौजूदा वित्त वर्ष के लिए भारत की GDP वृद्धि दर अनुमान 0.5% से बढ़ाकर 7.1% किया। और भारत वेस्टइंडीज के बीच पहला 2020 क्रिकेट मैच आज शाम लखनऊ में। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: श्रोता, अभी आपने सुना आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित मीटे न्यूज। तत्पश्चात दोपहर समाचार। आपकी सेवा में यह आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। श्रोता, समय दोपहर के 2:30 हुए हैं। लीजिए श्रोता, प्रस्तुत है दैनिक कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम वंदना में आइए सुनते हैं लामा लोबसंग सुरिंग और साथियों से बोध भक्ति भजन। तो लीजिए पेश ये कार्यक्रम वंदना।
4: Dandan dandan dandan dandan dandan dandan dandan dandan dandan dandan dandan dandan dandan dandan dandan dandan dandan dandan dandan dandan dandan dandan dandan dandan dandan dandan dandan dandan dandan dandan dandan dandan dandan dandan dandan dandan dandan dandan dandan dandan dandan dandan dandan dandan dandan dandan dandan dandan dandan dandan dandan dandan dandan dandan dandan dandan dandan dandan dandan dandan dandan dandan dandan dandan dandan dandan dandan dandan dandan dandan dandan dandan dandan dandan dandan dandan dandan dandan dandan dandan dandan dandan dandan dandan dandan dandan dandan dandan dandan dandan dandan dandan dandan dandan dandan dandan dandan dandan dandan dandan dandan dandan dandan dandan dandan dandan dandan dandan dandan dandan dandan dandan dandan dandan dandan dandan dandan dandan dandan dandan dandan dandan dandan dandan dandan dand

श्रोता भी आपने सुना लामालोप संघ सरिंग और साथियों से बोध भक्ति भजन। इन्हीं भक्ति भजनों के साथ ही भक्ति गीतों का कार्यक्रम वंदना भी पर समाप्त हुआ। मीडियम एफ के मीटर बैंड पर आपकी सेवा में यह आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। श्रोता समय दोपहर के 3 बजे हैं और अब प्रस्तुत है विभिन्न प्रांतों के गीतों का कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत। कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत के अंतर्गत आइए आनंद लेते हैं भूपेन हजारिका के आवास में चंद असमिया नगमे।

लीला रोहिला तेलिया खारें ओ लीला रोहिला मासोरे सिकुने माली लीला रोहिला आकु ए दिन आहिला आये जे गोला गोई है दिला तामूल एखनी

0: श्रोताव्या पानल रेडियो थे भूपेन हजारिका के स्वर में चंद असमय आधुनिक नगमे। इन्हीं नगमों के साथ ही विभिन्न प्रांतों के गीतों का कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत अभी पर समाप्त हुआ। आपकी सेवा में यह आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। समय दोपहर के 3:30 हुए है और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम मेरी बात। कार्यक्रम मेरी बात में ये सुनते हैं पीएम श्री जैनवी तवांग के छात्र मिस पेमा चुकी नामो से डिजिटल विचलन और स्क्रीन टाइम कैसे कम करे विषय पर दिए गए संदेश।
1: नमस्कार, आकाशवाणी तवांग से प्रसारित दैनिक कार्यक्रम मेरी बात में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। मैं हूँ पेमा चुकी नामो, पीएम श्री जे एन वी तवांग नौवीं की छात्रा। आज इस कार्यक्रम में मेरी वार्तालाप का विषय डिजिटल डिस्ट्रेक्शन और स्क्रीन टाइम कम कैसे करें, यह विषय हम सभी की जिंदगी से जुड़ा है। साथियों,

0: स्क्रीन पर नहीं सपनों पर ध्यान दो, मोबाइल नहीं अपने मन की पहचान करो, डिजिटल बनो पर इतना भी नहीं कि असली दुनिया भी खो जाए कहीं। आज का युग डिजिटल युग है। मोबाइल फोन, इंटरनेट, सोशल मीडिया, ऑनलाइन गेम्स और OTT प्लेटफॉर्म हमारी जिंदगी का खास हिस्सा बन चुके हैं। डिजिटल तकनीक ने हमारे जीवन को आसान, तेज और सुविधाजनक बनाया है। हम ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं, नई चीजें सीख सकते हैं और दुनिया से जुड़े रह सकते हैं। लेकिन जब यही तकनीक हमारे समय, ध्यान और स्वास्थ्य को चुराने लगे, तब यह सुविधा नहीं बल्कि समस्या बन जाती है। यही समस्या है डिजिटल डिस्ट्रैक्शन। डिजिटल डिस्ट्रैक्शन का अर्थ है जब हम पढ़ाई, काम या अपने लक्ष्य पर ध्यान देने के बजाय बार बार मोबाइल नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया रील्स या गेम्स की ओर आकर्षित हो जाते हैं। हम इंसानों ने बुरी आदत बना ली है, जैसे सुबह उठते ही मोबाइल देखना और रात को सोने से पहले भी मोबाइल चलाना। हमें इन बुरी आदतों को बदलना चाहिए, क्योंकि अत्यधिक स्क्रीन टाइम के कई गंभीर दुष्परिणाम हैं, जैसे पढ़ाई में एकाग्रता की कमी, आंखों में जलन और दर्द, सिर दर्द, रात को सही से नींद नहीं आना, याददाश्त कमजोर हो जाती है, चिड़चिड़ापन और तनाव, परिवार से बातचीत कम हो जाती है, शारीरिक गतिविधि की कमी। मैं अपना अनुभव बताना चाहूंगी। जब मैं पढ़ने बैठती हूँ, कभी कभी बस 5 मिनट के लिए फोन चलाती हूँ, देखते ही देखते 1 घंटा बीत जाता है। समय कैसे बीत जाता पता ही नहीं चलता। मोबाइल देखने के कारण समय की बहुत बर्बादी होती है। लेकिन सवाल यह है, क्या हमें डिजिटल दुनिया से दूर भाग जाना चाहिए? नहीं, हमें डिजिटल साधनों का उपयोग करना है, दुरुपयोग नहीं। अब आइए जानते हैं स्क्रीन टाइम कैसे कम किया जाए। पहला उपाय, समय की सीमा तय करें। अपना मोबाइल और स्क्रीन के लिए रोज एक निश्चित समय तय करें। आजकल मोबाइल में स्क्रीन टाइम ट्रैकर होता है, उसका सही उपयोग करें। दूसरा उपाय, नोटिफिकेशन को नियंत्रित करें। हर ऐप का नोटिफिकेशन जरूरी नहीं होता, अनावश्यक नोटिफिकेशन बंद करें ताकि ध्यान भंग ना हो। तीसरा उपाय, मोबाइल फ्री समय बनाइए। पढ़ाई के समय, खाने के समय और सोने से कम 1 घंटा पहले मोबाइल से दूरी बनाइए। चौथा उपाय, ऑफलाइन गतिविधियों को अपनाइए। खेलकूद, योग, किताबें पढ़ना, संगीत, चित्रकला और परिवार के साथ समय बिताना, ये सभी डिजिटल डिस्ट्रैक्शन का सबसे अच्छा इलाज है। पांचवा उपाय, उद्देश्यपूर्ण उपयोग करें। खुद से पूछें, मैं मोबाइल क्यों उठा रहा हूँ? अगर उत्तर है बिना वजह, तो मोबाइल नीचे रख दीजिए। अगर हम इन उपायों का उपयोग अपनी जिंदगी में करें तो हम स्वस्थ रहेंगे। साथियों, याद रखिए, जब स्क्रीन से दूरी बढ़ेगी तब जीवन में खुशियां बढ़ेंगी। मोबाइल हमारा गुलाम होना चाहिए, हम मोबाइल के गुलाम नहीं। आज के छात्र ही कल का भविष्य है। अगर हमारा ध्यान स्क्रीन पर ही अटका रहेगा तो सपने कभी पूरे नहीं होंगे। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी, डिजिटल तकनीक एक शक्तिशाली साधन है, लेकिन संयम और संतुलन के बिना यह शक्ति कमजोरी बन सकती है। मोबाइल हमारे लिए उपयोगी है, लेकिन उसका ज्यादा इस्तेमाल नुकसानदायक है। अगर हम स्क्रीन टाइम कम करेंगे तो स्वस्थ और खुश रहेंगे। आइए हम सब मिलकर संकल्प लें, स्क्रीन को नहीं लक्ष्य को देखें, रील्स नहीं रियल लाइफ जिए, मोबाइल से नहीं मन से जुड़े। इसी आशा के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद।
1: श्रोताओं, अभी आपने सुना PM श्री JNV स्कूल तवांग की छात्रा मिस पेमा चु के नामों से डिजिटल विचलन और स्क्रीन टाइम कैसे कम करें विषय पर दिए गए चंद शब्द। इसी के साथ ही कार्यक्रम मेरी बात समाप्त हुआ।
2: मिठाई तो हमारे जमाने में होती थी।
3: हाँ, तो जाइए ना अपने जमाने में।
4: रोमांस तो हमारे जमाने में होता था।
3: पेमेंट भी उसी जमाने का है।
5: अरे भैया, डिजिटल पेमेंट करना सीखे नए जमाने में।
3: इजी, सेफ एंड फास्ट है। हमने तो इनको डिजिटल पेमेंट करना सिखा दिया। आपने? ये सेल्फी लेते हैं, ये हमारे जमाने का है। RBI कहता है
6: डिजिटल पेमेंट अपनाओ
7: और उनको भी सिखाओ।
1: आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। श्रोतों, समय दोपहर के 3:36 हुए हैं। लीजिए श्रोतों, प्रस्तुत है महिलाओं पर आधारित कार्यक्रम नारी संगीत। नारी संगीत कार्यक्रम को शुरुआत करते हुए पहला नगमा ये सुनते हैं बिल्लू फिल्म से सोहम चक्रवर्ती आकृति कक्कर और मोनाली की आवाजों में गुलजार के लिखे इस गीत को संगीत दिया है प्रीतम ने।

श्रोताओं, तो अभी आपने सुना मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म कश्मीर के गली से यह खूबसूरत गीत। इस गीत के गीतकार थे SH बिहारी तथा संगीतकार थे OP नायर। श्रोताओं, कार्यक्रम का अंतिम नगमा आइए आनंद लेते हैं कविता सेठ की आवाज में वाकफ सेठ फिल्म से। इस गीत को लिखा है जावेद अख्तर ने तथा संगीत दिया है शंकर एहसान लॉय ने।

श्रोताओं, कविता सेठ के गायब फिल्म वाकफ सेठ की सिनक में के साथ ही महिलाओं पर केंद्रित फिल्म संगीत का कार्यक्रम नारी संगीत अभी पर समाप्त हुआ। मीडियम में 197.2 मीटर यानी 1521 किलोहर्ट्ज और साथ ही एफएम फ्रिक्वेंसी 104 मेगाहर्ट्ज पर आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। श्रोताओं, समय दोपहर के 3:50 हुए हैं और प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मंजरी। गीत मंजरी कार्यक्रम को शुरुआत करते हुए पहला नगमा लीजिए पेश है बवाल फिल्म से लक्ष्य कपूर, आकाशदीप सेन गुप्ता और सर्वना की आवाजों में। इस गीत के गीतकार है कौसर मुनीर तथा संगीतकार है आकाशदीप सेन गुप्ता।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला नगमा ये आनंद लेते हैं जुबैर नौटियाल और तुलसी कुमार की युगल आवाजों में फम श्रीकांत सिंह। शव रचना श्लोक लाल के हैं तथा मौसिकी तनिष बख्शी का।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला नगमा हम आपको सुनवाते हैं वैशाल मिश्रा की आवाज में फिल्म योद्धा से। गीत कौशल किशोर और विशाल मिश्रा के है तथा संगीत विशाल मिश्रा का।

श्रोता भी आपने सुना जुबैर नौटियाल और साथियों की आवाजों में मिस्टर और मिसेस माही फिल्म से ये गीत। इस गीत की गीतकार थे कौसर मुनीर तथा संगीतकार थे तनिष बख्शी। श्रोता इस समय आप आनंद ले रहे हैं चंद हिंदी फिल्मी नगमे कार्यक्रम गीत मंजरी के अंतर्गत आकाशवाणी के तवंग केंद्र से। गीत मंजरी कार्यक्रम को यूं ही जारी रखते हुए अगला नगमा आनंद लेते हैं रीतो रिवा की आवाज में फिल्म रुस्लेन से। गीत राणा सुतोल के है तथा संगीत रजत नागपाल का।

श्रोताओं, कार्यक्रम के अंतिम नगमा ये सुनते हैं अमर प्रेम की प्रेम कहानी फमसी अरिजीत सिंह के स्वर में। इस गीत के गीतकार है कुणाल वर्मा तथा संगीत

श्रोताओं, अरिजीत सिंह के गाये फिल्म अमर प्रेम की प्रेम कहानी किसी नगमे के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मंजरी अभी पर समाप्त हुआ। आपकी सेवा में यह आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। श्रोता, समय संध्या के 4:30 हुए हैं और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम शास्त्र संगीत का कार्यक्रम राग रंग। राग रंग कार्यक्रम में लीजिए पेश है निशात खान से राग चांदनी कल्याण पर सितार वादन तथा तबला पर साथ दे रहे हैं शफत अहमद खान। तो लीजिए पेश है कार्यक्रम राग रंग।

0: यशोदा में आपने सुना राग चांदनी कल्याण पर निषाद खान से सितार वादन तथा तबला पर साथ दे रहे थे शफ़त अहमद खान। श्रोता इसी के साथ ही शास्त्र संगीत का कार्यक्रम राग रंग अभी पर समाप्त होता है। हमारा अगला कार्यक्रम आप सुन सकेंगे आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से अनुप्रसारित अब से कुछ ही पलों में यानी संध्या 4:45 पर आप सुन सकेंगे हिंदी में समाचार। तत्पश्चात 4:55 पर आप सुन सकेंगे अंग्रेजी में
1: से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विलासपुर एम्स के पहले दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाखापट्टनम के हिंदुस्तान शिपयार्ड में फ्लीट सपोर्ट शिप 1 का जलावतरण किया और फ्लीट सपोर्ट शिप 5 की कील बिछाई। तमिलनाडु पुडुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों और असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी। ई संजीवनी ने 50 करोड़ टेली कंसल्टेशन का आंकड़ा पार किया। भारत की डिजिटल स्वास्थ्य सेवा पहल में महत्वपूर्ण उपलब्धि। विश्व बैंक ने मौजूदा वित्त वर्ष के लिए भारत की GDP वृद्धि दर अनुमान 0.5% बढ़ाकर 7.1% किया। भारत वेस्ट इंडीज के बीच पहला 2020 क्रिकेट मैच आज शाम लखनऊ में। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डॉक्टरों के सेवा और करुणा की भावना के साथ चिकित्सा क्षेत्र में काम करने का आह्वान किया है। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद विज्ञान संस्थान एम्स के प्रथम दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि डॉक्टरों को एक ऐसा आचरण करना चाहिए जिससे संस्थान की प्रतिष्ठा बढ़े और आने वाली पीढ़ियां उनके उदाहरण का अनुसरण करने के लिए प्रेरित हो। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना एक बहुआयामी चुनौती है। हालांकि उन्होंने कहा कि डॉक्टरों के प्रयासों और दृढ़ संकल्प से इस चुनौतियों का समाधान किया जा सकता है। राष्ट्रपति ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई आयुष्मान योजना मरीजों के लिए लाभकारी साबित हो रही है। इससे पहले

राष्ट्रपति ने संस्थान के मेधावी छात्रों को पदक और उपाधियां प्रदान की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत को अपनी समुद्री शक्ति को और बढ़ाने तथा देश की रक्षा क्षमताओं को सुदृढ़ करने के लिए एक मजबूत और एकीकृत समुद्री इकोसिस्टम की आवश्यकता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज विशाखापट्टनम स्थित हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में फ्लीट सपोर्ट शिप 1 का जलावतरण किया। उन्होंने फ्लीट सपोर्ट

फ्लीट सपोर्ट शिप 1 का शुभारंभ फ्लीट सपोर्ट शिप 5 की नींव रखना और HSL में उन्नत बुनियादी ढांचों के उद्घाटन भारत की समुद्री क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि सूर्य नामक फ्लीट सपोर्ट शिप 1 भारतीय नौसेना की मारक क्षमता, सहन शक्ति और परिचालन प्रभावशीलता को बढ़ाएगी। उन्होंने कहा कि HSL में नया स्लिप वेक और गोलियात क्रेन शिपयार्ड की बड़े जहाज निर्माण परियोजनाओं को पूरा करने की क्षमता को और बढ़ाएंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर आज एस घाना कोटे की आइवर और इथियोपिया की 5 दिन की यात्रा पर रहेंगे। यात्रा के दौरान डॉक्टर जयशंकर अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे, साथ ही द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करने के लिए तीनों देशों के शीर्ष नेता से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि डॉक्टर जयशंकर की यह यात्रा अफ्रीका के साथ अपनी साझेदार को सुदृढ़ करने के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। श्री जयशंकर की यह यात्रा ग्लोबल साउथ के साथ भारत की एकजुटता को और आगे बढ़ाएगी। विदेश मंत्री अदिस अबाबा में विदेश मंत्री क्षेत्रीय मिशन प्रमुखों के सम्मेलन की अध्यक्षता भी करेंगे। तमिलनाडु, पुंडिचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों तथा असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान शुरू हो गया है। तमिलनाडु की मधुरांतकम और धारापुरम विधानसभा सीटों, पुंडिचेरी की थतांचावरी तथा पश्चिम बंगाल की रेजी नगर और नंदीग्राम सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। असम की नौगांव लोकसभा सीट पर भी मतदान हो रहा है। वोटों की गिनती शुक्रवार को की जाएगी। राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सेवा ई संजीवनी ने 50 करोड़ टेली परामर्श का आंकड़ा पार कर लिया है। यह देश में डिजिटल तकनीक के जरिए लोगों तक किफायती, सुलभ और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के सरकार के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि देश के सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अब तक 50 करोड़ से अधिक टेली परामर्श किए जा चुके हैं। मंत्रालय के अनुसार ये उपलब्धि स्वास्थ्य सेवाओं में टेलीमेडिसिन की बढ़ती भूमिका को दर्शाती है। इससे खास तौर पर ग्रामीण, दूरदराज और स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित क्षेत्रों के लोगों तक इलाज की सुविधाएं पहुंचाने में मदद मिल रही है। ई संजीवनी देश के डिजिटल स्वास्थ्य तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी है। इससे प्राथमिकता स्वास्थ्य सेवाओं में दुनिया की सबसे बड़ी टेलीमेडिसिन व्यवस्था माना जाता है। इसके जरिए लोगों को अस्पताल या स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचे बिना अपने आसपास से ही डॉक्टरों से परामर्श की सुविधा मिल जा रही है। भारत ने ग्लोबल साउथ के देशों तक अधिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने और विकासशील देशों को किफायती और पुनर्मिलित वित्त पोषण प्रदान करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों में सुधार की अपनी मांग दोहराई है। संयुक्त राष्ट्र महासभा की दूसरी समिति में भाजपा सांसद CP जोशी ने कहा कि 21वीं सदी की जरूरतों को पूरा करने के लिए वैश्विक वित्तीय संस्थानों का पूर्ण गठन आवश्यक है। श्री जोशी ने भारत संयुक्त राष्ट्र विकास साझेदारी कोष IBSA कोष, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना गठबंधन के माध्यम से ग्लोबल साउथ के देशों के विकास के लिए भारत के समर्थन का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि भारत अन्य विकासशील देशों के साथ डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, वित्तीय समावेशन और घरेलू संसाधन जुटाने में अपनी विशेषज्ञता की साझा कर रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण विकास मंत्रालय अधिनियम 2025 के अंतर्गत अनुमत कार्य की अनुसूची अधिसूचित की है, जिसमें नए ग्रामीण कार्य ढांचे के अंतर्गत 375 अनुमत कार्य का प्रावधान है। यह नई अधिसूची पिछले ढांचे के अंतर्गत 266 कार्यों की

0: भूगोल में 41% अधिक है। कार्यों को 4 मुख्य स्तंभों जल सुरक्षा, मूलभूत ग्रामीण अवसंरचना, आजीविका संबंधी अवसंरचना और मौसम की जटिल घटनाओं एवं आपदा तैयारियों के लिए विशेष कार्य के आधार पर पुनर्गठित किया गया है। प्रत्येक कार्य की शुरुआत ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित विकसित ग्राम पंचायत योजना के अंतर्गत एक जमीनी स्तर की विकेंद्रीकृत योजना प्रक्रिया के माध्यम से होगी और विकसित भारत राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना स्टैक के माध्यम से इसकी निगरानी की जाएगी। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के जहाजों के लिए ब्रह्मोस फायर कंट्रोल सिस्टम और लॉन्चर की खरीद के लिए ब्रह्मोस एयरफोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ 660 करोड़ रुपए से अधिक का अनुबंधन किया। स्वदेशी निर्मित विकास और निर्माण श्रेणी के अंतर्गत यह अनुबंधन नई दिल्ली में रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की उपस्थिति में हस्तांतरित किया गया। मंत्रालय ने कहा कि यह परियोजना 3 वर्ष की अवधि में रोजगार सृजित करेगी। विश्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में भारत की सकल घरेलू उत्पाद GDP वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 7.1% कर दिया है। अप्रैल में यह अनुमान 6.6% का था। यह संशोधन उम्मीद से बेहतर आर्थिक वृद्धि के बाद किया गया है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय प्रेम शर्मा। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैज सेड इंडिया नीड्स अ स्ट्रॉन्ग एंड इंटीग्रेटेड मैरीटाइम इकोसिस्टम टू फर्दर एनहांस इट्स मैरीटाइम पावर एंड स्ट्रेंथन द कंट्रीज डिफेंस कैपेबिलिटीज। द डिफेंस मिनिस्टर टुडे लॉन्च्ड फ्लीट सपोर्ट शिप 1 लेड कील for Fleet Support Ship 5 and inaugurated the upgraded Ship 4 and a 300-ton Goliath crane at Hindustan Shipyard Limited in Visakhapatnam. Addressing the gathering, Mr. Singh said that this has upgraded infrastructure at HSL mark important steps in strengthening India's maritime capabilities. He said Fleet Support Ship 1, named Surya, will strengthen the Indian Navy's reach, endurance and operational effectiveness, and the new slipway and Goliath crane at HSL will further enhance the shipyard's capacity to undertake large shipbuilding projects. Mr. Singh said Hindustan Shipyard Limited has played an important role in meeting India's maritime and defense requirements for more than 8 decades. Polling is underway for by-elections to 5 assembly constituencies in Tamil Nadu, Puducherry and West Bengal and 1 Lok Sabha seat in Assam. Voting is taking place for Madurantakam and Dharapuram assembly seats in Tamil Nadu, Thattanchavadi in Puducherry and Rajinagar and Nandigram in West Bengal. The lone Lok Sabha seat where voting is taking place is Nogaon in Assam. The counting of votes will be taken up on Friday. The 8 candidates fielded by the BJP for the upcoming Rajya Sabha elections from Uttar Pradesh filed their nomination papers at the Vidhan Bhavan in Lucknow. UP Chief Minister Yogi Adityanath, BJP State President Pankaj Chaudhary, Deputy CM Keshav Prasad Maurya and alongside senior party leaders were also present during the filling of the nomination. MLC candidates also filled their nominations. Today is the last day for filling nominations for the biennial elections. Polling for the 10 Rajya Sabha seats from the state will be held on 16th of this month. India's National Telemedicine Service, eSanjeevani, has crossed 50 crore teleconsultations, marking a significant milestone in the government's efforts to leverage digital technology to make quality healthcare more accessible, affordable and equitable for citizens across the country. The platform recorded over 50 crore daily consultations cumulatively across all 36 states and union territories. The Ministry of Health and Family Welfare said that the achievement reflects the growing role of telemedicine in complementing the country's existing healthcare delivery system and in overcoming barriers of distance, geography and access

बहनों, आकाशवाणी के किसान वाणी कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। खेती किसानों के साथ साथ पशुपालन भी आज लाखों किसानों और ग्रामीण परिवारों की आय का एक महत्वपूर्ण आधार है, लेकिन पशुओं के साथ बीमारी, दुर्घटना या मृत्यु जैसे अचानक आने वाली परिस्थितियां किसान के लिए बड़ी आर्थिक चिंता बन सकती है। ऐसे में पशुधन बीमा यानी लिवस्टॉक इंश्योरेंस किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच साबित हो सकता है। इसी महत्वपूर्ण विषय को आज हम समझेंगे और जानेंगे कि पशुधन बीमा के बारे में किसानों को किन किन बातों की जानकारी होनी चाहिए। आज का विषय है लिवस्टॉक इंश्योरेंस, व्हाट फार्मर्स नीड्स टू नो।

0: नमस्कार, आकाशवाणी ईटानगर सुनने वाले सभी श्रोताओं को फार्म इन होम कार्यक्रम के इस अंक में हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं आपके रेडियो साथी गईरत। श्रोताओ, फार्म इन होम के इस अंक में आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे। आज हम बात करेंगे घरेलू पशुओं की बीमा, यानी डोमेस्टिक एनिमल्स के जो इंश्योरेंस है उस पर हम बात करेंगे। हमने मनुष्य का इंश्योरेंस सुना है, करवाते भी है, लेकिन पशुओं का जो इंश्योरेंस है बहुत कम लोगों को इसकी जानकारी है। खासकर हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र के किसानों की बात करें तो उन लोगों को बहुत कम जानकारी रहती है, और इसी दृष्टि से आज का ये कार्यक्रम बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज पशु बीमा पर जानकारी हासिल करने के लिए हमारे स्टूडियो में आमंत्रित है डॉक्टर बामंग राजा, सीनियर वेटनरी ऑफिसर, डायरेक्टरेट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटनरी, अरुणाचल प्रदेश। सर, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू, नमस्कार।
0: तो सबसे पहले तो हम बहुत ही संक्षिप्त में जानना चाहेंगे कि ये जो पशु बीमा है ये क्या है, क्योंकि मेरे लिए भी ये बहुत ही एक नया विषय है। तो जानना चाहेंगे कि ये डोमेस्टिक एनिमल का जो इंश्योरेंस है ये क्या है।
1: सभी को स्पेशली हम ऑल इंडिया रेडियो को थैंक्स करते हैं हमको यहाँ बुलाने के लिए, डिपार्टमेंट का हिसाब से, गवर्नमेंट का या जो भी हो, जो इंश्योरेंस का, जो एनिमल, जो फार्मर्स लोग को, लाइफ स्टॉक फार्मर्स लोग का बेनिफिट के लिए जो इतना अच्छा कार्यक्रम शुरू किया है, जो उसी को ये स्पेशली ये जो हम लोग का लाइफ स्टॉक इंश्योरेंस, ये जो एक बहुत अच्छा मतलब टॉपिक्स भी है और फ्यूचर में जो हमारे फार्मर्स के लिए भी फायदा होगा। इसी में क्या होगा कि हम लोग का फार्मर अभी तक जानकारी नहीं है, जो स्पेशली जो ग्रामीण क्षेत्र। इसी में क्या होता है कि जब भी एनिमल बस्ती में या विलेज में या ब्लॉक लेवल में जब भी कोई कुछ ये होता है, मर जाता है,

0: गया कई इवेंचुअली जैसे कि लैंडस्लाइड में, फ्लड में, ये हो जाए, ये में आग में जल जाते या कई डिजीज आउटब्रेक हो जाते, मर जाते हैं, तो हम लोग का वहां में क्लेम कटा, रिलीफ डिपार्टमेंट में क्लेम कटा हुआ, जैसे रिलीफ ना, उसमें कुछ भी हम लोग का सहायता नहीं मिलता है उसी से। पर अभी जो हम लोग इसमें लाइफ स्टॉक इंश्योरेंस है बोल के हम लोग इंश्योरेंस कंपनी में, जैसे अभी मैडम जी बोला है, हम लोग का आर्मी में इंश्योरेंस करता है, हम लोग का हेल्थ पॉलिसी होता है, लाइफ टर्म पॉलिसी होता है, इसी तरह हम लोग का भी इंश्योरेंस कंपनी में आप इंश्योरेंस करा सकता है, जो इंटरेस्टेड वाला, जो फार्मर से जानकारी वाला, हम लोग बहुत सा इंश्योरेंस कंपनी है, जैसे ओरिएंटल इंश्योरेंस है, हम लोग का जो बजाज इंश्योरेंस है और न्यू इंडिया अश्योरेंस, ऐसे ऐसे कंपनीज लोग है जो हम लोग को इंश्योरेंस कराता है एनिमल्स, तो उन लोग वो प्राइवेटली कराता है, पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का थ्रू से हम लोग का भी एक स्कीम, गवर्नमेंट जो सब्सिडी दिया गया है इंश्योरेंस प्रीमियम कॉस्ट में, इसी में हम लोग का लाइफ स्टॉक इंश्योरेंस है बोल के एक प्रीमियम कॉस्ट दिया गया है, इसी विशेष में ऑल इंडिया में तो चल रहा है, पर हम लोग का अरुणाचल में बहुत, मतलब बहुत लेट सा जानकारी दे पा रहा है या शुरू नहीं कर पा रहा है। एक्चुअली ये प्रोग्राम जो है 2010-11-12 में किया था अरुणाचल में, पर हम लोग का
1: डिपार्टमेंट
0: इंश्योरेंस स्कीम जो, पर हम लोग का जो फार्मर से पब्लिक से रेस्पॉन्स बहुत कम
1: कम,
0: या आइडा जानकारी नहीं था, या जो इंश्योरेंस जो कर रहा है वो वहां तक पहुंच नहीं पाया, इससे भी हो सकता है डिपार्टमेंट उन लोगों को कन्विंस नहीं कर पाया, वो भी हो सकता है। तो इसी का वजह से एक्चुअली इंश्योरेंस उसी है, वो है हम लोग प्रोटेक्शन देना है, जब कभी भी एनिमल्स कहीं मर जाएगा अचानक, एक फार्मर्स को प्रोटेक्शन देना है, उसका इनकम प्रोटेक्शन देना है, लाइवलीहुड प्रोटेक्शन देना है, कोई मर जाएगा या कुछ भी अनफॉर्चुनेट में कुछ हैपन हो गया, बेचारा एक दो मिथुन पालने वाला या गाय पालने वाला, भेड़ा पालने, उसका पूरा मर जाने से उसका तो लाइफ सस्टेन करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए खत्म हो जाता है, तो उसी को जस्ट रिप्लेस करने के लिए, अपना सिक्योर कराने के लिए इंश्योरेंस करा सकता है
1: जी। ये जो ग्रामीण, जो गांव के जो हमारे किसान हैं, उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद होंगे, क्योंकि जो बड़ा फार्म करते हैं उन लोगों को शायद कुछ जानकारी रहती है, लेकिन जो हमारे गांव के लोग हैं, जिसका पास एक दो होता है, चाहे वो मिथुन हो या गाय हो जो भी, तो उन लोगों को एक दो के लिए, उन लोगों को उतना ये सब के बारे में अवेयर नहीं रहता है, तो अगर ये अगर उन लोगों के पास पहुंच गई ये जानकारी तो बहुत फायदेमंद होंगे। तो हम स्कीम्स के बारे में जरूर आगे विस्तार से जानना चाहेंगे, लेकिन पहले ये जानना चाहेंगे कि कौन कौन से जो पशु है, जो एनिमल है, उसका हम इंश्योरेंस करा सकते हैं।
0: हम आज पर हम लोग का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का गाइडलाइंस, जो इंश्योरेंस गाइडलाइन दिया हुआ है, उसी में हम लोग का एनिमल्स में डिवाइड किया गया है, जैसे कि मिल्च एनिमल बोलता है, जो कैटल जो दूध देने वाला होता है, और हम लोग का जो ये होता है पैक एनिमल्स, जो सामान वगैरह उठाता है वो, जो जैसे कि कैमल हो गया, पोनी हो गया, डोंकी हो गया, ये लोग को होता है। उसके बाद में जो अदर्स एनिमल्स, हम लोग का दो एक कैटेगरी आया गया है, और अरुणाचल के लिए मिथुन एंड याक में भी कर सकता है, और हम लोग का पिक्स है, गोट्स में भी, और स्मॉल एनिमल्स जो रैबिट सुगरा, जो जो मतलब जो मार्केट में जो वैल्यू आता है, जो कमर्शियल में होता है, ये सबको कर सकता है।
1: जो पेट है उसमें सर पॉसिबल है, जैसे बिल्ली हो गया, कुत्ता हो गया?
0: नहीं, उसमें तो नहीं है, क्योंकि उसमें कमर्शियलाइज नहीं है, ये सिर्फ फैंसी एनिमल है ना, कमर्शियल
1: नहीं है। ठीक है, तो पेट्स में नहीं है, तो हमारा जो सुअर जो पीक्स है उसमें कर सकता है, बकरी में कर सकता है, मिथुन
0: मिथुन
1: गाय में कर सकता है।
0: गाय में दो कैटेगरी से, जैसे कि मिल्क एनिमल, मिल्क जो दूध देने वाले, तो दूध का हिसाब में उसको इंश्योरेंस करा सकता है, उसका दूध मतलब कितना दूध दे रहा है उसके हिसाब में उसका वैल्यू होगा। उसके बाद में आपका जो कैटल होकर भी, जैसे कि ड्रॉट एनिमल्स, जो हल चलाने वाला, उसको पैक एनिमल, ड्रॉट एनिमल, दो कैटेगरी।
1: तो अगर कोई कराना चाहे तो आपके सरकार के पास, मतलब आपके जो डिपार्टमेंट है, उसके स्कीम के हिसाब से किस तरह से कर सकते हैं, क्या क्या स्कीम्स है, और हमारे जो किसान है वो किस तरह उसका बेनिफिट ले सकते हैं
0: इसको। ये जो इंश्योरेंस जो, जैसे कि जो बड़ा फार्मर्स लोग, ज्यादा एनिमल्स पालने वाला या एंटरप्रेन्योर्स लोग, ये लोग तो कंपनी, जो कंपनी से इंश्योरेंस कंपनी से डायरेक्टली कांटेक्ट करके वो अपना से कर सकते हैं,
1: प्राइवेटली
0: कर सकते हैं। उसके बाद में जो हम लोग स्मॉल फार्मर्स के लिए, एक दो एनिमल्स रखने वाला लोग के लिए, या ये लोग के लिए, तो गवर्नमेंट जो एक सब्सिडी दिया गया इंश्योरेंस प्रीमियम कॉस्ट में, तो उसी को हम लोग अभी डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर्स को, जहां में डिस्ट्रिक्ट होता है, या वेटरनरी ऑफिसर्स को, उन लोग को कांटेक्ट करने से, उन लोग के पास जानकारी है,
1: जो कंसर्न डिस्ट्रिक्ट है उसका,
0: जो कंसर्न ब्लॉक में जो ऑफिसर्स बैठा हुआ है, जो वेटरनरी डिस्पेंसरी होता है, या डिस्ट्रिक्ट लेवल में डिस्ट्रिक्ट वेटरनरी ऑफिसर होता है, उसी थ्रू से आप वो फार्मर्स आइए करके
1: जानकारी ले सकता है।

0: उसी टूर से भी करा सकते हैं उन लोगों का इंश्योरेंस। तो स्पेशली ये साल 2023 से हम लोग का गवर्नमेंट स्कीम्स, जो भी गवर्नमेंट स्कीम आता है उसी में इंश्योरेंस कवरेज होता है, इंश्योरेंस करना कंपलसरी। इवन द बैंक लोन लेता है तो बैंक भी तो इंश्योरेंस बिना लोन नहीं देता।
1: हाँ।
0: आगे हम लोग इंश्योरेंस कंपनी, कौन सा इंश्योरेंस कंपनी आपको आपको इंश्योर करने जा रहा है उसी हाँ। को मांग ये करता है, पूछताछ करता है।
1: बिल्कुल।
0: तो वही है, जो लोन लेने से भी आपको इंश्योरेंस होना पड़ेगा। और बिना मतलब जो भी गवर्नमेंट स्कीम, अभी जो स्टेट में हम लोग का आत्मनिर्भर पशुपालन योजना स्कीम चल रहा है उसी में वो एक हम लोग का चीफ मिनिस्टर का एक फ्लैगशिप स्कीम है, स्टेट का स्टेट ओन फंडेड स्कीम है, उसी में भी हम लोग का जो इंश्योरेंस होना बहुत जरूरी है।
1: ओके, कोई भी स्कीम अवेल करने के लिए आपके पास इंश्योरेंस होना पड़ेगा,
0: जरूरी है। इसके लिए हम लोग जो स्टेट गवर्नमेंट जो है, हम लोग एक इंश्योरेंस कंपनी को एमओयू साइन किया हुआ है, जैसे एक हिंदुस्तान इंश्योरेंस ब्रोकर लिमिटेड एक कंपनी है, वो एक ब्रोकर है बीच में हम लोग का जो इंश्योरेंस और हम लोग का साथ में टाई अप करके उसका ओरिएंटल इंश्योरेंस का साथ में हम लोग ये हुआ एमओयू साइन किया हुआ है 2026 का ये तक मई तक हम लोग का वैलिड है। तो ये जितना भी गवर्नमेंट स्कीम इंश्योरेंस गवर्नमेंट स्कीम जो ये है उसी इंश्योरेंस कंपनी से आप इंश्योरेंस करा सकता है हम लोग का जो बेनिफिशियरी लोग। और उसके बाद में हम लोग का जो एक स्कीम अलग सा स्कीम है, लाइफ स्टॉक इंश्योरेंस स्कीम है, बोलते उसी में एक हम लोग का फार्मास जो है, एक फार्मास जो है आप 5 एनिमल मीन्स एक लार्ज एनिमल का एक 5 यूनिट तक हम लोग का सब्सिडी प्रीमियम कोस्ट में सब्सिडी देता है।
1: जिस एक एनिमल के लिए नहीं कर सकते हैं,
0: एक एनिमल भी कर सकता है, मतलब एक एनिमल में हम लोग का एक ये में आज पर हम लोग का लाइफ स्टॉक इंश्योरेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का गाइडलाइन का हिसाब में एक कैटल यूनिट बोलता है, एक कैटल यूनिट एक लार्ज एनिमल जो वो एक यूनिट होता है। जो स्मॉल एनिमल्स में जैसे कि हम लोग का ये हो गया गावड़ी हो गया पिक्स हो गया, पिक्स जो एक 10 एनिमल्स जो एक यूनिट होता है, 10 एनिमल या बकरी हो गया 10 एनिमल जो एक यूनिट,
1: 10 पिक जो
0: एक यूनिट एक यूनिट कंसिडर करता है। तो उसी हिसाब में हम लोग का आप 1 ईयर में एक आप जैसे हम लोग जो गाड़ी लेता है बाइक लेता है तो बाइक में भी तो हम लोग गाड़ी में भी तो हम इंश्योरेंस देते हैं।
1: हाँ,
0: तो
1: हाँ।
0: इसी तरह का इसमें भी यही कैलकुलेशन होता है।
1: अच्छा,
0: तो आपको जैसे कि 1 ईयर के लिए और 2 ईयर्स के लिए 3 ईयर्स के लिए
1: से जैसे कि अगर मेरे पास 10 सुअर है 10 पिग्स है तो वो 10 पिग्स के लिए वो एक यूनिट बन जाता है। 10 पिग मिलके एक यूनिट बनता है और वो एक यूनिट में होने से ही गवर्नमेंट आपको सब्सिडी देगा
0: एक यूनिट कॉस्ट में।
1: अगर एक यूनिट नहीं हुआ तो आप सब्सिडी
0: नहीं, उसमें भी मिलेगा। प्राइस क्या इसका एनिमल कॉस्ट को डिवाइड करना पड़ेगा, एक एक एनिमल
1: एनिमल कॉस्ट का हिसाब से आपका प्रीमियम होता
0: होगा।
1: थोड़ा सा आप सर बता सकते हैं कि कितने कितने का प्रीमियम होता है, कितने सालों तक देना होता है, जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे, और उसका जो सर बेनिफिट्स है वो उसको भी।
0: गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो हम लोग को स्पेशल नोटिस के लिए हम लोग को सब्सिडी जो प्रीमियम में सब्सिडी देता है जो फॉर एनिमल, जैसे कि हम लोग का एक ये हो गया आपका मिल्च एनिमल हो गया, तो मिल्च एनिमल को उसका कॉस्ट को कैसे हिसाब करेगा, उसको मतलब कैलकुलेट करेगा, एक एनिमल हो गया दूध दे रहा है उसका एनिमल का कॉस्ट कितना होगा, उसी को दूध का कितना दूध देता है, 1 लीटर दूध देने से उसको 3,000, तो 10 लीटर देने से 30,000
1: पर डे का
0: हिसाब में। तो आप दिन में आपके कितना 10 लीटर देता है 8 लीटर उसी हिसाब में, तो 1 लीटर में 3,000 करके वो होता है। तो उसके बाद में हम लोग आते हैं हम लोग का यहाँ में जो स्पेशली जो मिथुन इसमें गवर्नमेंट का एक गाइडलाइन दिया है कि आप हम लोग का जो कंपनी है इंश्योरेंस कंपनी और जो फार्मर्स है जो फार्मर्स ओनर है और उसका साथ में वेटरनरी ऑफिसर होगा, ये लोग मिलके एक रेट फिक्स करना है। तो रेट फिक्स करना है और यह सीखने से हम लोग का ब्लॉक लेवल में, क्योंकि विलेज लेवल में जो टचिंग होता है वीडियो होता है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होता है पंचायत लेवल, तो ये लोग मिलके एक रेट फिक्स करना है, उसी रेट को लेके हम लोग एनिमल का बेस प्राइस ये करना है फिक्स बनाना है। तो नहीं तो हम लोग उन लोग जो एक ये जो सीलिंग लिमिट और मिनिमम लिमिट एक फिक्स किया है गवर्नमेंट जो मिनिमम कॉस्ट जो है नॉट लेस देन 10,000 10,000 से कम नहीं होना है एनिमल कॉस्ट है छोटा होने से भी।
1: अच्छा।
0: तो उसका बाद में नॉट मोर देन 60,000 हम लोग को ज्यादा 2 लाख 1 लाख नहीं बना सकते या 60,000 तक हम लोग का फिक्स कर, उसी अंदर में आप रेट फिक्स करना है। तो फॉर एग्जांपल आप एक मिथुन को पकड़ो हम लोग 50,000 का आप जो एनिमल का वैल्यू को एनिमल वैल्यू 50,000 का इंश्योरेंस कॉस्ट 50,000 तो 50,000 होने से हम लोग जो 3 कैटेगरी है प्रीमियम के लिए फर्स्ट ईयर के लिए 5.5% प्रीमियम जो एनिमल कॉस्ट का 5.5 होगा। तो उसको बाद में सेकंड ईयर के लिए हम लोग का 9%

0: थर्ड ईयर के लिए 3 ईयर्स आप इंश्योरेंस करते हैं तो 11.5%। तो हम जस्ट एग्जांपल हम फर्स्ट 1 ईयर का हम बोल देगा, तो 1 ईयर में हम लोग 50,000 का, एक जैसे मिथुन, एक मिथुन को हम इंश्योरेंस करना, मेरे मिथुन का वैल्यू 50,000, अचानक ये मर जाने से हम 50,000 इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम कर सकते हैं। तो उसी में हम क्या करेंगे कि 5.5% 1 ईयर के कैलकुलेशन कैलकुलेट करने से अराउंड 2,750 रुपीज आता है, 750 रुपीज। तो उसी वो 750 रुपीज जो प्रीमियम जो आप देना है इंश्योरेंस में, हाँ, कंपनी को प्रीमियम पे करना है, तो उसी को हम लोग जो गवर्नमेंट जो सब्सिडी देता है 85% सब्सिडी है। That means, आप 15% आप बेनिफिशियरी फार्मर्स जो आप देना है कंट्रीब्यूट करना है, तो 15% में हम कैलकुलेट करने से अराउंड 412 रुपीज आते हैं, 412 रुपया। तो 412 रुपीज आप इंश्योरेंस कंपनी को देना है और रिमेनिंग प्रीमियम में, और रिमेनिंग अमाउंट जो है 2,338 रुपीज, ये हम लोग गवर्नमेंट सब्सिडी दे देगा, तो मिला के 2,750 रुपीज। तो आप इतना कम अमाउंट में आप 50 रुपीज का एक ये और 1 ईयर के लिए आप मिथुन को इंश्योर करके रखा है, आप 412 रुपीज में आप एक 50 रुपीज का आपका सिक्योर करके रखा है, तो इनकेस कुछ हैपन होता है तो आपको 50,000 मिल जाएगा। ये बहुत अच्छा स्कीम है, ये अवेल करना है हम लोग का। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इतना पैसा देने के लिए रेडी है जितना जितना ये, पर इसमें एक लिमिट है, एक आदमी का 5 एनिमल से ये करना है। गवर्नमेंट जो ये दिया सीलिंग लिमिट है, 5 एनिमल आप ये करते बेनिफिट ले सकते, 5 एनिमल का,
1: 5 एनिमल चाहे 5 मिथुन हो या मिथुन हो, गाय सुअर
0: सुअर तो 5 होने से 50 होगा, 10 एनिमल आता है, तो उसी से ज्यादा होने से भी आप उससे 100% आप पेमेंट करके ये कर सकते हैं, इंश्योरेंस कर सकते हैं, जो प्रीमियम को सब्सिडी नहीं मिलेगा।
1: अच्छा, जैसे अभी आप लोग 60,000 जो आप ऊपरी लिमिट जो 60,000 है, तो हम लोग के यहाँ तो मिथुन को बहुत महंगा, मतलब बहुत दाम में बेचते हैं, जैसे कि अभी तो मिथुन का सबसे छोटा शायद 80,000 समथिंग हो गया होगा, तो ऐसे में क्या फार्मर्स आते हैं क्या, सिर्फ 50,000 का 60,000 का उसका वैल्यू में मान जाते हैं क्या?
0: एक्चुअली ऐसे होता है, यहाँ अभी फिलहाल डिस्ट्रिक्ट लेवल में जो फील्ड लेवल में ऑफिसर्स लोग, ये एक प्रॉब्लम आता है। अभी ये साल ही हम लोग इंश्योरेंस शुरू कर रहे हैं स्कीम जो है, तो ये एक्चुअली ऐसे है, आपका जो जितना कॉस्ट बढ़ेगा उसका प्रीमियम भी कॉस्ट बढ़ रहा है ना, तो आप ज्यादा देना पड़ेगा, वो भी फार्मर्स के लिए भी ज्यादा बर्डन हो रहा है ना। तो हम लोग देखने से, तो क्योंकि एनिमल उसी साल में ये साल में मरेगा वो कैसी भी बात नहीं है, तो उसमें प्रीमियम, ये जो आपका जो रिस्क कवरेज कब होता है कि आप अननेचुरल डेथ हो गया, कोई बीमार हो, आप खुद मार्केट खाएगा तो मिलेगा नहीं ना, तो उसी हिसाब में तो आप ज्यादा एनिमल को आप प्रीमियम को उसको बढ़ाने से तो आपका जेब से ज्यादा
1: प्रीमियम ज्यादा जाएगा,
0: इसलिए हम लोग का हिसाब से ये तो बहुत एवरेज है। मतलब
1: इसमें सर एक ऐसे डाउट है मेरा, क्योंकि मिथुन को लेके, क्योंकि मिथुन जो है हम लोग ऐसे खुला जंगल, बहुत दूर दूर जंगल पहाड़ों में छोड़ के रखते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि आपका मिथुन जिंदा है, मर गया पता ही नहीं चलता है, काफी दिन बाद तब जाके ढूंढते हैं, मतलब मिथुन को रोज ढूंढना भी नहीं होता है। तो जैसे मान लीजिए कोई किसान है जिसका मिथुन गायब हो गया, मिल नहीं रहा है, तो ऐसे कुछ है कि वो कितना दिन में ऐसे रिपोर्ट कर सकता है या किस तरह से करेंगे?
0: ये जो, क्योंकि इसी में हम लोग का एविडेंस नहीं होता कि मिथुन मर गया नहीं मर गया, आदमी में भी हुए ना, इसमें तो गुमशुदा हो, पुलिस थाना में जाना पड़ेगा, रिपोर्ट करना पड़ेगा,
1: तो
0: रिपोर्ट हो तो ये मिसिंग रिपोर्ट देना पड़ेगा, वो ऑलमोस्ट जो नॉर्मल जो हम लोग का इंश्योरेंस में भी, जैसे बाइक गायब हो गया और तो पुलिस रिपोर्ट लाना,
1: क्लेम करने के लिए आपको उसका मतलब बॉडी दिखाना पड़ेगा ना।
0: एक्चुअली मैडम ऐसे है, उसको इंश्योरेंस करने के लिए क्या होता है कि अभी फिलहाल अभी जो हम लोग का जो साथ में MOU किया हुआ है, उन लोग का साथ एक एप्स है,
1: अच्छा
0: एप्स मोबाइल से ये कर रहा है, तो आपका हम लोग का मोबाइल से ही आपका इंश्योरेंस करा रहा है, तो विद द हेल्प ऑफ द वेटरनरी ऑफिसर्स ना, जो वेटरनरी ऑफिसर्स है उसी का थ्रू से, तो वेटरनरी ऑफिसर्स एक हेल्थ सर्टिफिकेट देना पड़ता है, उसका बाद एविडेंस के लिए आप किस मिथुन किस एनिमल्स को आप इंश्योरेंस करा, उसका ईयर टैग बोलता है, कान में कानपुल डालता है, ईयर टैग जो एक यूनिक आईडी नंबर है, 12 डिजिट होता है, उसी को क्या होता है कि ये ऑल इंडिया में कहीं में भी ये नहीं, जैसे हम लोग का आधार कार्ड होता है, एनिमल का भी आधार कार्ड, यूजली क्या हो रहा है कि अभी हम लोग नॉर्मल डिपार्टमेंट में है एनिमल ये के लिए आइडेंटिफिकेशन के लिए पूरा एनिमल में कंपल्सरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डालने के लिए बोल रहा है, बिना ये जो UID वो जो ईयर टैग, बिना ईयर टैग का हम लोग एक्चुअली डिपार्टमेंट ट्रीटमेंट भी नहीं देता है, नहीं देना चाहिए, और गवर्नमेंट कंपल्सरी कर रहा है कि

0: आप इसको लगाना इसी बेसिस में. इसमें क्या होता है कि इसमें ये होता है कि एनिमल हेल्थ कवरेज में ये जो हम लोग एयर टैग होता है इसी में हम लोग का एक नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम है, हम लोग का एक पोर्टल है उसी में ये नंबर को हम लोग अपलोड करते हैं. तो अपलोड करने से क्या होता है कि वो एनिमल का वहां में पूरा ऑनलाइन में अपलोड, मालिक का कॉन्टेक्ट डिटेल, ओनर्स का डिटेल, उसका इवन द आधार कार्ड भी मांग लेता है, फोन नंबर, पूरा डिटेल, एड्रेस और एनिमल का जो डिटेल एज हो गया वो पूरा वो आइडेंटिफिकेशन पूरा वो अपलोड हो जाता है. तो वंस अपलोड होने से वो कहीं पे भी कहीं भी कोनर से आप वो ये देख के पासवर्ड निकाल के ऑनलाइन में सर्च करने से वो ये जो एयर टैग का नंबर को डालने से आप देख सकते हैं. ये एक चीज है. तो इसी में क्या होता है कि ये एनिमल को कब वैक्सीन किया है, कब डिवॉर्मिंग मेडिसिन किया, क्या ट्रीटमेंट किया, उसी में रिकॉर्ड हो जाता है. तो ये नंबर को ये होता है कि उन लोग जो इंश्योरेंस कंपनी जो एक रेफरेंस लेता है, तो जब इंश्योरेंस जब आप इंश्योरेंस कर रहे हैं एनिमल तो आप ये नंबर का साथ में एयर टैग क्लियरली वो दिखाना है कि वो फोटो ले लेता है वो ऐप से, उसके बाद में मालिक का साथ में फोटो ले. तो ड्यूरिंग जब आप क्लेम करते हैं तो ये एयर टैग को लाना पड़ेगा, उसके बाद में वेटरनरी ऑफिसर से एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट कैसे मरा है वो रिपोर्ट, उसके बाद में एक वही है कि एक बहुत सिंपल सा चीज है, आप सिर्फ एयर टैग को लाना है और एनिमल से एनिमल का फोटो जो मरा हुआ फोटो, नहीं तो जो एयर टैग जो जैसे कि जंगल में मर के सर गया तो उसका तो बदन बोन उभरा होगा तो एयर टैग तो आ बैठेगा, उसको फोटो खींचने से हो गया. उसके बाद में आपका जो वेटरनरी ऑफिसर का एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट कैसे करके मरा है वो तो कंपलसरी है. तो उसके बाद में उससे पहले आप एक इंटीमेशन लेते हैं मेरा एनिमल मर गया बोल के, ये तीन डॉक्यूमेंट्स जरूरी हो रहा है अभी का
1: क्लेम करने. ओके, तो ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में पॉसिबल है, ऑनलाइन भी कर सकते हैं ऑफलाइन भी. ऑफलाइन करने के लिए आप अपना डिस्ट्रिक्ट का वेटरनरी ऑफिसर से मिलने से हो जाएगा. तो हम लोग के यहाँ पे कितने लोग अवेयर है सर, मतलब जैसे आप लोगों का जो भी डेटा है उस हिसाब से हमारे लोग इस एनिमल जो इंश्योरेंस है डोमेस्टिक एनिमल्स का कितने अवेयर है?
0: हम लोग एक्चुअली अभी तक फिलहाल कुछ ये साल तक ये कुछ ये हम लोग अभी ऑलमोस्ट 86 नंबर्स ऑफ फार्मर्स का एनिमल का ये इंश्योरेंस अभी तक हम लोग का डायरेक्टर में रिपोर्ट आया 86. इतना तक का इंश्योरेंस हो चुका है, मतलब ये स्कीम थ्रू से
1: तो अलग अलग जानवर के साथ ना.
0: वो एक्चुअली दूसरा गवर्नमेंट स्कीम जैसे आत्मनिर्भर पशुपालन योजना उसी में तो कर रहा है, उसी में तो बहुत सा नंबर्स ऑफ फार्मर्स का कवरेज हो रहा है, एनिमल जितना है उसका तो हो रहा है. पर ये स्कीम में लाइफ स्टॉक इंश्योरेंस अभी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सब्सिडी दे रहा है उसी में 86 का कवरेज हुआ है. फिलहाल अभी हम लोग लार्ज स्केल में शुरू नहीं कर पाए तो गवर्नमेंट हम लोग का प्रॉब्लम हुआ है कि गवर्नमेंट से अभी तक असिस्टेंट जो अवेयरनेस कैंपेन के लिए असिस्टेंट नहीं मिल रहा है. और हम लोग डिपार्टमेंट को हम लोग का फील्ड लेवल में हम लोग का जो ऑफिसर्स है बहुत से कम ऑफिसर्स है, इसका वजह से वर्कलोड भी बढ़ के काम नहीं कर पाए. उन लोग का डेली वैक्सीनेशन होता है, दो बार साल में वैक्सीनेशन कराता है. इसके बाद में उन लोग जो अभी जो डाटा कलेक्शन जो अभी हम बोला डाटा कलेक्शन का ऑनलाइन अपलोड करना पड़ता है उसी में एक ये है, मतलब आदमी का जो मेन पावर कम है ये एक चीज है. तो इसी माध्यम से आपका थ्रू से ऑल इंडिया रेडियो थ्रू से हम वही कहते हैं कि हम लोग का एक बहुत बड़ा अच्छा वाला स्कीम है लाइफ स्टॉक इंश्योरेंस स्कीम है, बहुत अच्छा स्कीम है. इसी थ्रू से भी हम लोग को आप हेल्प कर रहे हैं ये स्कीम को आइडिया फैलाने के लिए. जो भी सुन रहा है ये स्कीम को अवेल कीजिए आपको नियरेस्ट डिस्ट्रिक्ट या वेटरनरी ऑफिसर को कीजिए. अच्छा ही है.
1: जरूर जरूर. थोड़ा सा ये इंश्योरेंस से थोड़ा सा हटके जैसे जो मिथुन है इसको पहले में वाइल्ड एनिमल में काउंट किया जाता था, इस बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए कि पहले मिथुन तो हमारे डोमेस्टिक एनिमल में इसको काउंट नहीं किया जाता था, तो अभी ये कैसे हमारे डोमेस्टिक एनिमल में कब से इसको माना जाता है?
0: एक्चुअली ये जो हम लोग का ये मिथुन जो है हम लोग पहले जमाने से पाल के हम लोग का ये पूरा हम लोग का कल्चर इकोनॉमिकली पूरा इनरूटेड है हम लोग का ट्राइबल्स में ना, स्पेशली आबूटानी एरिया में इनरूटेड है, तो सीक्रेट एनिमल भी मानते हैं. तो ये एनिमल जो हम लोग पाल के सदियों से जमाने से हम लोग आबूटानी से पाल के आए साथ में आबूटानी का साथ से आए, तो होने पर भी हम लोग इसका ये इंटरनेशनल लेवल में इसको डोमेस्टिक एनिमल रिकॉग्नाइज किया ही नहीं है. तो उसी का वजह से आप लोग देखा होगा कुछ साल पहले आप ईटानगर जूम जाने से मिथुन देख करता था, तो उसके बाद में गुवाहाटी में भी मिथुन और कई कई चिराकाना में वहां मिथुन दिखाई देता था. कि जू में किसको रखता है, जब वाइल्ड एनिमल को रखता है तो मिथुन जो हम लोग क्या बोलते हैं दूसरा जो साइंटिस्ट लोग जो नहीं जानने वाला लोग गोर गोर बोल के ये होता है ये ऐसे वो लोग का बैसन बोल के उसी कैटेगरी में हिसाब रखता था हम लोग मिंडक बोल

0: सकता है ये लोकल लैंग्वेज में, ऐसे करके उन लोग रखता था। तो लास्ट में हम लोग 2003 में हम लोग का विद द हेल्प ऑफ साइंटिस्ट फ्रॉम आईसीआर एनआरसी नेशनल रिसर्च सेंटर मिटून मेजी पेमा में हम लोग का वहां का डायरेक्टर मतलब वहां का जो साइंटिस्ट लोग पूरा गवर्नमेंट ऑफ मतलब इंटरनेशनल लेवल में गवर्नमेंट लेवल से का ये करके कन्विंस करके मिथुन को एक ये बना दिया मतलब ये डोमेस्टिक एनिमल ये फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन से इंटरनेशनल लेवल से फूड एंड इसको ये डोमेस्टिक एनिमल रिकॉग्नाइज करवाए कंट्री से। तो उसका बाद में नेक्स्ट में हम लोग का ये फूड सेफ्टी सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया से FSSAI से तो 2003 में उसको फूड एनिमल डिक्लेयर हो गया, फूड एनिमल जो खाने का चीज एनिमल डिक्लेयर हो गया। तब से हम लोग का एक फूड मिटून मिटून मीट जो ऐसे नॉर्मल ऐसे मटन या चिकन ऐसे हो गया पोर्क जैसे इट्स मीट एनिमल। तो इसी हिसाब से हम लोग के लिए एक बहुत अच्छा ये है मिटून से हम लोग बहुत इकोनॉमिकली आगे बढ़ सकते हैं। तो इंटरनेशनल लेवल से अभी हम लोग को रिकॉग्नाइज सिंपल एक मीट एनिमल मिटून जैसे कि नागा में उन लोग का वो जो रिसर्च सेंटर बैठा हुआ है तो इसलिए वहां में मिटून एनिमल का जो वैल्यू एडिशन हो रहा है बहुत अभी आ रहा है।
1: अच्छा।
0: तो उसका जो साइंटिस्ट लोग कैसे करेगा वो काम कर रहा है आगे। तो इसलिए हम लोग का यहाँ में मिथुन डे उसी दिन को हम लोग सितंबर का एक तारीख को हम लोग मिथुन डे मनाता है। तो उसी का उसको ये करके उसी को याद करके जो नोटिफिकेशन का दिन को तो फर्स्ट मिथुन डे हम लोग जो नागालैंड में मनाया है 2003 में 2004 में हम लोग का ईटानगर में यहाँ डीके हॉल में हम लोग का ऑनरेबल गवर्नर यहाँ में आया था चीफ गेस्ट। तो ये ईयर ये में मिजोरम में मनाया है उनका चीफ मिनिस्टर ऑफ मिजोरम जो चीफ गेस्ट था वहां में। तो ऐसे करके हम लोग मिथुन को हम लोग अवेयरनेस दे रहे हैं मिथुन पालने के लिए मिथुन को कैसे प्रोलिफरेट करना है मिथुन जो उसको कैसे कंजर्व करके आगे बढ़ाना है मिथुन का पॉपुलेशन को कैसे बढ़ाना है मिथुन थ्रू से कैसे हम लोग लाइवलीहुड ये करना है बढ़ाना है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है इनकम जनरेट करना है वो सब हम लोग अवेयरनेस दे रहे हैं।
1: वही वही ये तो बहुत मतलब अच्छा हो गया, नहीं तो हमारे लोग अपने अंदर बहुत उसको इम्पोर्टेंस देते हैं लेकिन पता ही नहीं कि बाहर हमारा मिथुन अभी तक डोमेस्टिक एनिमल्स के कैटेगरी में आया ही नहीं। इस बात से भी हम लोग अवेयर हम लोग ना कि अच्छा हो गया जो भी डोमेस्टिक एनिमल में आ गया तो हम लोग कुछ कुछ बेनिफिट्स ले सकते।
0: और एक अच्छा चीज है हम लोग का एक अच्छा मतलब अच्छा खबर है हम लोग का ये लर्नेड चीफ सेक्रेटरी का एडवाइस थ्रू से हम लोग को मिथुन पॉलिसी भी लाएगा। जब तक पॉलिसी नहीं होगा कुछ भी आपका ये विजन नहीं होगा वो आप ये डेवलपमेंट या उसका लिए कुछ कर ही नहीं सकता है। इसीलिए हम लोग का पॉलिसी होना जरूरी है। पहले जो मिथुन जो वाइल्ड एनिमल था इसलिए गवर्नमेंट भी इतना इम्पोर्टेंस नहीं देता था, वो तो फॉरेस्ट में चला गया। तो इसीलिए अभी जो हम लोग का एक मिथुन पॉलिसी आने से या लाइफ स्टॉक पॉलिसी आने से बहुत एक अच्छा एक रोड मैप तैयार होगा हम लोग मिथुन के लिए क्या करेगा। तो वो बहुत मतलब बहुत जरूरी भी और अभी करने भी जा रहा है हम लोग डिपार्टमेंटली थ्रू हम लोग का लैंड सेक्रेटरी और या चीफ सेक्रेटरी थ्रू से चीफ सेक्रेटरी का एडवाइस से टारगेट भी रखा हुआ है। तो शॉर्टली ये साल में आना चाहिए हम लोग का मिथुन पॉलिसी। तो मिथुन पॉलिसी वहां से आ जाएगा हम लोग का गवर्नमेंट लेवल से हम लोग का जो गवर्नमेंट लेवल में क्या पॉलिसी बनाएगा क्या प्रोग्राम बनाएगा वो बना लेगा।
1: बिल्कुल ये तो और भी अच्छी बात है। तो अपने श्रोताओं को मैं यही बताना चाहूंगी कि अभी हमारे पास 30 मिनट का समय में हम आपको पूरा जो स्कीम्स है उसके डिटेल्स या फिर प्रीमियम उसके बाद क्लेम्स बेनिफिट्स इसका पूरा जो डिटेल्स है वो तो हम ऑब्वियसली नहीं बता पाएंगे लेकिन इतनी जानकारी आपको मिल गई होगी कि हमारे जो डोमेस्टिक एनिमल्स है उसका हम इंश्योरेंस करा सकते हैं जो बीमारी में मर गए या फिर किसी एक्सीडेंट में मर गए उसका हम इंश्योरेंस करा के उसका बेनिफिट ले सकते हैं। उसका जो हमारे डोमेस्टिक एनिमल का उसकी जो कीमत है वो हम गवर्नमेंट से ले सकते हैं। और ये किस तरह से करना है ये आप अपने जो कंसर्न वेटनरी ऑफिस है अपना डिस्ट्रिक्ट के वहां जाके जरूर जानकारी हासिल कीजिए और ये जो डोमेस्टिक एनिमल्स का जो इंश्योरेंस है ये जरूर करवाइए। सर तो आज आप हमारे स्टूडियो में आए हैं तो जाते जाते हमारे जो श्रोता है खास करके जो किसान भाई है जो हमारे पशुपालन कर रहे हैं उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे?
0: उन लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि ये जरूर आप लोग डिस्ट्रिक्ट वेटनरी ऑफिसर या कोई भी वेटनरी ऑफिसर से आप लोग ये जानकारी लीजिए। ये इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इतना फंड दे भी चुका है, देके रखा है डिस्ट्रिक्ट लेवल में पैसा प्रीमियम सब्सिडी देके रखा है। उसका बाद में गवर्नमेंट भी पैसा देने के लिए राजी है। आपका सब एनिमल को पूरा इंश्योरेंस करने से आपका लिए लाभदायक होगा, आपका लिए सिक्योर होगा। सबको हम अपील है डिपार्टमेंट थ्रू से हम सबको इंश्योरेंस को लाभ उठाए ये इंश्योरेंस स्कीम को और

0: एनिमल को इंश्योरेंस कीजिए और रजिस्टर कीजिए।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज आप हमारे
0: थैंक यू।
1: स्टूडियो में आए और एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर हमारे जो किसान भाई है जो पशुपालन कर रहे हैं खास करके उन लोगों को एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने श्रोताओं को फिर से बता दूं, आज हमारे स्टूडियो में पशु बीमा पर जानकारी दे रहे थे डॉक्टर बामंग राजा, सीनियर वेटनरी ऑफिसर, डायरेक्टरेट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटनरी अरुणाचल प्रदेश। तो हम आशा करते हैं कि आज का ये कार्यक्रम हमारे श्रोताओं के लिए लाभदायक होंगे, बहुत सारी जानकारी हासिल कर ली होगी और इस जानकारी को लेकर के अपने अपने जो कंसर्न वेटनरी ऑफिस है वहां जाके आप अपने पशुओं का इंश्योरेंस जरूर करवाएंगे। तो इसी आशा के साथ आप सभी श्रोताओं से लेती हूँ विदा, सुनते रहिए आकाशवाणी ईटानगर, नमस्कार।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
3: दत्ता मिक्सेट लेरिम किसान वानी का अरुणाचल प्रदेश गदेजुंग गेसा इटनवर का डायरेक्टोरेट ऑफ एनिमल हस्बेंडरी निंग वेटनरी लेखुंग सीनियर वेटनरी ऑफिसर डॉक्टर बमंग राजा देवखा लाइफ स्टॉक इंश्योरेंस गेना समझन दुंडो नाथपुशमया शिशु इम्बोर इदमेनोक गरिसी चिप्या इदमेना प्रागामुर तेरिया शिशु लासोबा इम्बोर इद बाशल शुंग शोकक इंश्योरेंस रोनम चेबेना जिजी यामेतों नुएनम इजुकुर कमेरा सुधी आकाशवाणी इटनकर रिले या शिशु सनाम्बुर बिनाशल कंडन जुवन चे चम गैर एते यिम्बुर लंगिना उद्देबका मिक्से क्लेरिम किसानवानी चित दोस आगेशवानी तवांग लंगे सोमा नुप्तिक सुजे क्रोकुन कर्मा खलची थी उनी दा लेरिम सेरा गोचुदुर अजोना लंगिना तवांग गदन नमगिल लजे गुनपक छांजे गंक चुर उंगो सेरा खा चंदी सन्नासा तवंग गदन दमगिल लजे कनपगा लो ग्या मांबुक सुरना मन्युम नेंक युक खेमसंग दीगा बुबुन सुम नेना बुसुम बर्मचित तवंग गुनपा द्रबथोया छुया युकनिंग गुनबग लेसन बनंग रिंब थचाया जोयुक लमलुक्से नंबुर शिंद्रे देशिक दुसुतगा युग बुसुम बर्मा तवंगुनबा ड्रप थोंगन मुनुनिंग बुसुम नेकन ये माप्ति मुनुचिगे शुजु न्युपुर तवंग गुनबगा ड्रप खनं शिन गया ड्रसंग सोंगन मुनु नेदं शुमक न्यंगथिम नोलित न्या तवंग लाम ड्रसंग सी थुकुर गेथिम शिया उत नेदंकुर समचर शिपंग गेजिंग गेविया नायक थोगा डासांसी मर दापु बांचिन थोर शब्लु गांसुम निंग चोकसुम निंग युक चोरगन नाक चोरगन जुर्बा मिमांग गोचे निंग लुंबक गोचे बानांग चंगमा नगर तरिक निश्चे नालंग सुजे दुगुले तमांग गुनबा जोरु फिप नासिंगे थिदिशा डोंशो यिगा ये फुंबुर चिनिये चमशा थुदिन सेयुकनिंग देंसो थोगा तवांग लुंदंगं गुया गुनबक छंजे नई यंकेर युग चोरगन चोरगन जुरबा निंग मिमंग गोचे नंग यंजे मिंजे नगर तरिक निश्चे फिप नावे ये शुदुर फिपकन लंगे चमशा रचंसी सोजे निंग ngengung shela dedi judumbur thlangyanang tawang gunbak changzai gang sur ong seda jibdus da uzu juje deshnuptek lerim detuning chuzet gulshusu san nangsa

मीडियम में भी 197.2 मीटर यानी 1521 किलोहर्ट्ज़ पर आपकी सेवा में यह आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय शाम के 6:37 हुए हैं। लीजिए श्रोता, प्रस्तुत है कार्यक्रम जरोखा। कार्यक्रम जरोखा के अंतर्गत आइए हम आपको अवगत करवाते हैं आज के शेष कार्यक्रम तथा कल प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों से। आज के शेष कार्यक्रमों में अब से थोड़ी देर बाद यानी शाम 6:44 पर सुनेगा तवांग मठ के लामा दांगा और साथियों से बोध भक्ति भजन। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित शाम 7:00 सुनेगा हिंदी में समाचार तथा शाम 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार। आज शाम 7:10 पर सुनेगा कार्यक्रम आज की कविता। आज शाम 7:11 पर सुनेगा कार्यक्रम एक ही फिल्म से। इसके अंतर्गत आप आनंद ले सकेंगे कर्ज फिल्म से चंद नगमे। आज शाम 7:25 पर आप सुन सकेंगे साप्ताहिक कार्यक्रम अपने दर्द अपने लोग में तवांग आर्चरी एसोसिएशन के उपाध्यक्ष यानी वाइस प्रेसिडेंट श्री तंजन लुंडुप से। आगामी 10 अक्टूबर से 12 अक्टूबर 2026 तक दूसरी बार यानी 5th राज्य

Chester Archery Association Tournament. ग्यावासियांग ग्याचो हाई एल्टीट्यूड स्टेडियम तवांग में खेले जाने विषय पर हुई भेंटवार्ता, उनसे भेंट करता होंगे चिटिम यांगचिन। आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से प्रसारित आज शाम 7:45 पर सुनिएगा प्रादेशिक समाचार तथा 7:50 पर रीजनल न्यूज। आज शाम 7:55 पर सुनिएगा एक देशभक्ति गीत फिल्म खेले हम जी जान से। रात्रि 8 बजे का समय रहेगा कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत के अंतर्गत आप श्रोताओं द्वारा व्हाट्सएप के जरिए फरमाइश किए गए चंद पुराने हिंदी फिल्मी नगमे। रात्रि 8:30 पर स्पोर्ट्स स्कैन, रात्रि 8:45 पर समाचार संध्या तथा रात्रि 9 बजे आप सुन सकेंगे न्यूज एट 9। आज रात्रि 9:15 पर कल प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की एक बार फिर जानकारी दी जाएगी। आज रात्रि 9:16 पर आज के सभी प्रसारण समाप्त होंगे। तो श्रोतों, ये तो थी आज की शेष कार्यक्रमों की जानकारी। आइए श्रोतों, अब हम आपको कल यानी 7 अक्टूबर 2024 को प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों से रूबरू करवाते हैं। हमेशा की तरह हमारा कल का सवा आरंभ होंगे कल दोपहर 2 बजे मीटी न्यूज के तहत। कल दोपहर 2:15 पर सुनेगा दोपहर समाचार। कल दोपहर 2:30 पर सुनेगा कार्यक्रम वंदना में गुलशा कुमार से चंद हिंदी भक्ति गीत। कल दोपहर 3 बजे आप सुन सकेंगे कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत में भूपेन हजारिका की आवाज में जनासमिया नगमे। कल दोपहर 3:30 पर सुनेगा कार्यक्रम मेरी बात। कल दोपहर 3:33 पर सुनेगा कार्यक्रम नारी संगीत। कल दोपहर 3:50 पर सुनेगा फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मंजरी। इसके अंतर्गत आप आनंद ले सकेंगे फिल्म कबीर सिंह, फिल्म बजरंगी भाईजान, फिल्म मिशन मजनू, तू झूठी मैं मक्कर, फिल्म गुड बाय, फिल्म मोचाई, फिल्म रॉक स्टार, फिल्म हीरोपंती, फिल्म दरक टू और सन और सरदार टू फिल्म से चंद नगमे। कल संध्या 4:30 पर सुनेगा शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रंग। कल शाम 5 बजे सुनेगा रोजाना की तरह मौनपा कार्यक्रम के अंतर्गत नाम दर्द लेरिम। 5:30 पर सुनेगा दैनिक मुख्य सूचना मौनपा में श्री दुप्तन ताशी से। 5:40 पर सुनेगा नंगछु क्लब। 6 बजे लेरिम से 6:10 पर कार्यक्रम जरोखा। कल शाम 6:20 पर सुनेगा तवंग मठ के किन थुप्तन सिंह और अन्य 10 भिक्षुओं से बोध भक्ति भजन। तत्पश्चात डीसी ऑफिस के श्रीमती सिटिम संगमो और साथियों से बोध भक्ति गीत। कल शाम 7 बजे सुनेगा हिंदी में समाचार तथा शाम 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार। कल शाम 7:10 पर आप आनंद ले सकेंगे साप्ताहिक फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी। आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से प्रसारित प्रादेशिक समाचार 7:45 पर तथा 7:50 पर रीजनल न्यूज। कल शाम 7:55 पर सुनिएगा एक देशभक्ति गीत स्वदेश फिल्म से। रात्रि 8 बजे आप आनंद ले सकेंगे कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत के अंतर्गत आप श्रोताओं द्वारा व्हाट्सएप के जरिए फरमाइश चंद पुराने हिंदी फिल्मी नगमे। कल रात्रि 8:30 पर सुनेगा स्पोर्ट्स स्कैन, रात्रि 8:45 पर समाचार संध्या तथा न्यूज एट 9 रात्रि 9 बजे। कल रात्रि 9:16 पर कल के सभी प्रसारण समाप्त होंगे। तो श्रोताओं, ये तो थी आज के शेष कार्यक्रम तथा कल प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। इन्हीं जानकारियों के साथ ही कार्यक्रम जरोखा समाप्त होता है। आपकी सेवा में यह आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। श्रोता, हमारा अगला कार्यक्रम सुनिएगा मौनपा में। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

आकाशवाणी तवांग संगे सोमा नुबदक सुजे ग्रो कुन कर्म खेने ब्ली होनी द शेदन लेरम चित को जोदर देश उद लेरमा लामा दवा शकन से ख्रिस्तनु शेदन सन्नासा

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। मंत्रिमंडल ने एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स प्राधिकरण के गठन को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे परिवहन और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में अनुसंधान, योजना, मूल्यांकन, निगरानी और प्रभाव आकलन को मजबूती मिलेगी। श्री वैष्णव ने कहा कि यह देश में एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स योजना के लिए शीर्ष संस्था के रूप में काम करेगा।
1: देश में जिस तरह से जीडीपी बढ़ रही है 7% 8% के बीच में, लॉजिस्टिक्स की रिक्वायरमेंट लगातार बढ़ रही है। देश में बहुत सारे हाईवे बन रहे हैं, रेलवे लाइंस बन रही है, वाटरवे बने, पोर्ट्स नए बन रहे हैं, एयरपोर्ट्स नए बन रहे हैं। इन सब का एक यूनिफाइड तरह से प्लानिंग हो, उसके लिए पीएम गतिशक्ति पोर्टल प्रधानमंत्री जी ने कुछ वर्षों पहले लागू किया था। अब भविष्य की जरूरतों को देखते हुए जो प्लानिंग बनानी हो, उस सबको स्टडी करने के लिए एक इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स अथॉरिटी का निर्माण किया जाएगा।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने छोटे और मझोले उद्यमों में पूंजी निवेश के लिए 10,000 करोड़ रुपए के स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस ग्रोथ फंड की स्थापना को भी मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सरकार के प्रमुख के रूप में 25 वर्ष पूरे करने पर बधाई देते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। श्री मोदी कल सरकार के प्रमुख के रूप में 25 वर्ष पूरे करेंगे। श्री वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा इतिहास बनाया है जिसकी मिसाल किसी भी लोकतांत्रिक देश में बहुत कम मिलती है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने आज स्वदेशी हाई अल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म फ्लाइट का सफल परीक्षण किया। ये परीक्षण वायुसेना सैन्य विमान योग्यता और प्रमाणन केंद्र, नागर विमानन महानिदेशालय, भारतीय एयरपोर्ट प्राधिकरण और अन्य नागरिक प्राधिकरणों के साथ मिलकर किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस सफल परीक्षण पर टीम को बधाई दी। रक्षा मंत्री ने कहा कि यह आत्मनिर्भर भारत की यात्रा में एक अहम पड़ाव है, जिसका उद्देश्य लंबे समय तक हवा में रहने वाला स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप बनाना है। भारत ने आज ओमान के तट के पास पनामा के झंडे वाले वाणिज्यिक जहाज एमटी ऑन पीस पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। हुरमुज जलडमरू मध्य से गुजरते समय जहाज पर हमला किया गया। विदेश मंत्रालय ने बताया कि जहाज के 19 सदस्यों वाले चालक दल में 17 भारतीय नागरिक हैं। हमले में 11 भारतीय सहित 12 चालक दल के सदस्य घायल हुए हैं। भारत ने कल काला सागर में वाणिज्यिक मालवाहक जहाज एमवी रोयार्ड मामा 2 पर हुए हमले की भी निंदा की है। चालक दल के सदस्यों में भारतीय नागरिक भी शामिल हैं। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के नेता राहुल गांधी की आलोचना करते हुए कहा कि वे बार बार निर्वाचन आयोग और अन्य संवैधानिक संस्थाओं को निशाना बना रहे हैं। नई दिल्ली में श्री रिजिजू ने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं को निशाना बनाना न तो देश के हित में है और न ही कांग्रेस पार्टी के हित में। पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल गांधी के आकाशवाणी भवन में घुसपैठ करने की भी आलोचना की।
2: कांग्रेस के प्रथम परिवार जिसने पिछली 4 पीढ़ियों से लोकतंत्र का गला पकड़कर राजतंत्र का शासन चला रखा है लोकतंत्र के आवरण में, और आज आकाशवाणी में घुसपैठ करने का प्रयास किया।
0: भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए 8 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। नामांकन दाखिल करने का आज अंतिम दिन है। इन चुनावों में उत्तर प्रदेश की 10 और उत्तराखंड की 1 राज्यसभा सीट के साथ पश्चिम बंगाल की 1 राज्यसभा सीट पर उपचुनाव 16 अक्टूबर को होगा। बम्बे शेयर बाजार का सेंसेक्स 685 अंक बढ़कर 73,068 पर बंद हुआ। निफ्टी 220 अंक बढ़कर 22,776 पर दर्ज हुआ। बेल्जियम में जन्मे वैज्ञानिक फ्रांसिस होलजेन को आइस क्यूब न्यूट्रिनो वेधशाला में योगदान और खगोलीय स्रोतों से आने वाले उच्च ऊर्जा वाले न्यूट्रिनो की खोज के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। इससे ब्रह्मांड के अध्ययन में सहायता मिलेगी। लखनऊ में पहले T20 क्रिकेट मैच में भारत ने वेस्टइंडीज के साथ खेलते हुए टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। नमन धीर मैच में डेब्यू कर रहे हैं। 5 मैचों की श्रृंखला का

0: A detector for ghostly particles called neutrinos that reach Earth from outer space. And in men's cricket, West Indies were 4-0 in 0.5 overs against host India in the first match of the 5-match T20 International. And that is the end of this news bulletin.
1: श्रोताओं भी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी तथा अंग्रेजी में समाचार मीडियम में 107.2 मीटर यानी 1521 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 104 मेगाहर्ट्ज़ पर आपकी सेवा में यह आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। श्रोताओं समय शाम के 7:10 हुए हैं और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम आज की कविता। आज की कविता कार्यक्रम में ये सुनते हैं एलडी स्कॉलर्स होम विद्यालय के 7वीं कक्षा के छात्र तंजन लामो से एक कविता। कविता का शीर्षक है डोंट क्विट।
2: Tashi Dile, my name is Tenzin Lamo and I study in class 7 and I am from LD Scholars Home. Today I am here to recite a poem and the name of my poem is Don't Quit. When things go wrong as they sometimes will, when the road you're trudging seems all uphill, when the funds are low and the debts are high, and you want to smile but you have to sigh, when care is pressing you down a bit, rest if you must but don't you quit. Life is curved with its twists and turns as every one of us sometimes learns. And many a failure turns about when he might have won if he'd stuck it out. Don't give up though the pace seems slow. You may succeed with another blow. Often the goal is nearer than it seems to a faint and faltering man. Often the struggler has given up when he might have captured the victor's cup. He learned too late when the night slipped down how close he was to the golden crown. Success is failure turned inside out. The silver tint of the clouds of doubt, and you never can tell how close you are. It may be near when it seems afar. So stick to the fight when you're hardest hit, when things seem worst, that you must not quit. And the name of the poet is Edgar Albert Guest. Thank you.
1: श्रोताओं भी आपने सुना एल डी स्कॉलर्स होम विद्यालय के 7वीं कक्षा के छात्र तंजन लामो से एक कविता। श्रोता के साथ एक कार्यक्रम आज की कविता समाप्त हुआ। आपकी सेवा में यह आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। समय शाम के 7:12 हुए हैं और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही फिल्म से। एक ही फिल्म से कार्यक्रम के अंतर्गत हरियाणा लेते हैं फिल्म कर्ज से चंद नगमे। तो आइए कार्यक्रम का पहला नगमा आइए आनंद लेते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में। गीत आनंद बख्शी के है तथा संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: शिवतोष किशोर कुमार और आशा भोसले के गाए इसी नगमे के साथ ही कार्यक्रम एक ही फिल्म से अभी पर समाप्त होता है। आपकी सेवा में यह आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। श्रोता समय शाम के 7:25 हुए हैं और अब प्रस्तुत है साप्ताहिक कार्यक्रम अपनी धरती अपने लोग। कार्यक्रम अपनी धरती अपने लोग में ये सुनते हैं तवंग आर्चरी एसोसिएशन के उप अध्यक्ष यानी वाइस प्रेसिडेंट श्री तंजिन लुंडुप से आगामी 10 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक 12 अक्टूबर 2026 तक दूसरी बार यानी 5th राज्य स्तर आर्चरी एसोसिएशन टूर्नामेंट ग्यावासियांग गैसो हाई एल्टीट्यूड स्टेडियम तवांग में खेले जाने विषय पर हुई एक भेंटवार्ता उनसे भेंट करता है सिटिम यांगचिन।
1: आकाशवाणी तवंग से प्रसारित हमारा विशेष कार्यक्रम सुन रहे अब तमाम श्रोताओं का हम हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। तो श्रोताओं, आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है एक बार फिर तवंग डिस्ट्रिक्ट आर्चरी एसोसिएशन के उप अध्यक्ष यानी वाइस प्रेसिडेंट श्री तंजिन लुंडुप जी को। तो सबसे पहले मैं तंजिन लुंडुप जी, आपका हमारे आकाशवाणी तवंग के स्टूडियो में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करना चाहूंगी।
2: डायरेक्ट, सबसे पहले मैं आकाशवाणी की स्वर्ण जयंती की जो एक उपलब्धि है उसमें आकाशवाणी तवंग को सारी शुभकामनाएं देना चाहूंगा और हमें यहाँ आपके स्टूडियो में चंद बातें रखने के लिए जो आपने मौका दिया है उसके लिए हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।
1: जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो श्रोताओं, जैसे कि आप सभी को पता है तवंग डिस्ट्रिक्ट आर्चरी एसोसिएशन द्वारा आगामी 10 से 12 अक्टूबर तक तवंग में दूसरी बार यानी 5th राज्य स्तर आर्चरी टूर्नामेंट गैलवात्सायंग ग्याजो हाई एल्टीट्यूड स्टेडियम में आयोजित किया जा रहा है। और तवंग डिस्ट्रिक्ट आर्चरी एसोसिएशन की खास बात यह है कि पिछले कुछ वर्षों से हमारे तवंग के बच्चों को तीरंदाजी यानी आर्चरी का नियमित रूप से प्रशिक्षण भी दे रहे हैं ताकि यहाँ के युवा और प्रतिभाशाली बच्चों को आगे चलकर स्टेट, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर अपनी पहचान बनाने का अवसर मिल सके। और इसी विषय पर हम आज बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं तंजिन लुंडुप जी आपसे जानना चाहूंगी कि तवंग डिस्ट्रिक्ट आर्चरी एसोसिएशन का गठन कब हुआ था और इसके पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है।
2: तो जो हमारा तवंग डिस्ट्रिक्ट आर्चरी एसोसिएशन है इसका गठन 24 अक्टूबर 2024 को हुआ है और इसके गठन करने के पीछे का मकसद यही है कि हम सभी जानते हैं कि हमारे अरुणाचल में जितने भी जनजाति है और खासकर जो हमारे मुंबा जनजाति है उनका बहुत सालों से हमारे पूर्वजों के समय से हमारे तीरंदाजी के साथ एक जुड़ाव रहा है। लेकिन अगर हम ऐसे देखा जाए तो जो लोकल तीरंदाजी का जो एक तरीका है उसे अगर हम खेलते रहे तो उस पे हम राष्ट्रीय, राज्य या अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक नहीं जा पाते हैं। लेकिन अगर हम जो ओलंपिक स्टाइल में अगर एक अच्छी तरह से प्रशिक्षण करें तो चूंकि हमारे खून में ही तीरंदाजी का एक दौर चल रहा है तो हमें ऐसा लगा कि क्यों ना हम एक नया पहल हमारे जिले में शुरू करें जिसमें हम अपने जितने भी इच्छुक लोग हैं। और आर्चरी की एक बहुत ही खूबसूरत बात यह है कि इसमें कोई एज लिमिट नहीं होता है और यहाँ पर टीम स्पिरिट की भी आवश्यकता नहीं है। अगर आप अकेले अच्छी तरह से खेलेंगे तो आप अकेले ही बहुत ही आगे जा सकते हैं और आप अपने साथ साथ हमारे पूरे जिले का नाम भी रोशन कर सकते हैं। तो इस सोच के साथ हमने इस तवंग डिस्ट्रिक्ट आर्चरी एसोसिएशन का गठन किया है और इसको गठन किए हुए अब 2 साल हो चुके हैं।
1: जी, जैसा कि आपने बताया कि हमारा जो तीरंदाजी जो खेल है वो हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है और ये हमारे पूर्वजों से मिली हमारी विरासत है और इसको बचाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी बनती है और तवंग डिस्ट्रिक्ट आर्चरी एसोसिएशन द्वारा इसको बखूबी आगे लेकर जा रहे हैं। और जैसे कि आपने बताया कि हमारे जो पारंपरिक खेल है यानी तीरंदाजी, इसको हम ट्रेडिशनल वे में खेले तो वो कुछ अलग हो जाता है, तो इसके लिए आप ओलंपिक वे में इन्हें सिखाते हैं। तो मैं ये जानना चाहूंगी कि ओलंपिक में खेलना और हमारा जो ट्रेडिशनल वे है खेलने का, इन दोनों में क्या अंतर है।
2: देखिए, अभी हम अपने जो ट्रेडिशनल स्टाइल है उसकी बात करेंगे तो उसमें हमारा जो टारगेट है और जिसे हम अगर अपने ओलंपिक स्टाइल पैटर्न में कहे तो उसे हम बट्रेस कहते हैं और उसमें जो टारगेट लगा रहता है जो आपके अलग अलग कलर का होता है जिसमें पॉइंट लिखा होता है उसे हम फेस कहते हैं। लेकिन अगर हम अपने ट्रेडिशनल स्टाइल में जाए तो आप जस्ट एक छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा वहां पर आपको दिखने को मिलता है और ओलंपिक स्टाइल में ऐसा होता है कि हमारा जो धनुष होता है उसमें कुछ कुछ उपकरण लगे हुए होते हैं और उसमें कुछ टाइमिंग होता है कि आप किस तरह से आपने तीर को उसे छोड़ना है तो कि इतने समय तक आप होल्ड कर सकते हैं और आपको छोड़ना है। तो इस तरह से कुछ कुछ चेंजेस है हमारे ओलंपिक और पारंपरिक स्टाइल में।
1: जी, अब हमारे जो स्टेट लेवल है आर्चरी टूर्नामेंट के, इसके विषय में आना चाहूंगी क्योंकि आगामी 10 अक्टूबर से

0: राज्य स्तर पर जो आर्चरी टूर्नामेंट है इसका पांचवा संस्करण का उद्घाटन किया जाएगा, तो हमारे तवांग जिला मेजबानी कर रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इस प्रतियोगिता की तैयारियां किस स्तर पर चल रही है और तवांग डिस्ट्रिक्ट आर्चरी एसोसिएशन की इसमें क्या भूमिका रहेगी और हमारे जो मुख्य अतिथि है वो कौन होंगे और जो अन्य गेस्ट है इसके बारे में भी आप हमारे श्रोताओं को बताने की कृपा करें।
1: अगर हम इस आगामी फिफ्थ स्टेट लेवल आर्चरी टूर्नामेंट की बात करें तो ये हमारे लिए एक खुशनसीबी की बात है और खासकर हमारे जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर सीख रहे हैं, क्योंकि आप सबको पता है कि पिछले साल भी हमने जो फोर्थ स्टेट लेवल आर्चरी टूर्नामेंट है उसे तवांग में ही उसे हमने मेजबानी किया था और इस बार भी सौभाग्य से हमें जो फिफ्थ स्टेट लेवल आर्चरी टूर्नामेंट है वो भी तवांग में ही होस्ट करने का मौका मिला है। तो इस साल अगर हम बात करें तो अभी चूंकि हमारे पास समय की बहुत ही पाबंदी है, कुछ ही दिन बचे हैं इस स्टेट लेवल को, तो हम कह सकते हैं कि हमारी तैयारी अभी वार फुटिंग में चल रही है। हमारे जितने भी मेंबर्स हैं हम सब रात रात तक बैठकर जो बैनरिंग का काम है और जो भी ऑफिशियल काम है वो सब का अभी कर रहे हैं और कल से हम पूरी तरह मैदान में जुट जाएंगे और लगभग हमारा जो तैयारी है वो हम 8 तारीख के शाम तक उसे कंप्लीट करेंगे और 9 तारीख को हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, जितने भी ऑफिशियल्स हैं, वे तवांग में पहुंच जाएंगे और वे अपने तरफ से भी एक बार जो ग्राउंड का निरीक्षण है उसे करेंगे। मुख्य अतिथि के तौर पर हमारे जो नामपोंग झेरामपुर का जो विधायक है लेसाइम सिमय सर वो यहाँ पर मुख्य अतिथि के तौर पर आ रहे हैं और साथ ही हमारे कई सारे जो आर्चरी एक्सपर्ट्स है और जो हमारे भारतीय सेना के जो उच्च अधिकारी है वे भी यहाँ पर आएंगे और साथ ही हमारे तवांग के जो विधायक है और हमारे जो एचओडीस है और कई सारे ऐसे लोग भी इस उद्घाटन समारोह के समय पर शरीक होना चाहते हैं।
0: जी, तो चूंकि ये जो स्टेट लेवल जो आर्चरी टूर्नामेंट है तो ये राज्य स्तर पर चल रही है, तो जो बाकी के जो जिले हैं वो भी यहाँ पर पार्टिसिपेट करने के लिए आएंगे, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कुल कितने जो प्रतिभागी है जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और जो एज क्राइटेरिया है वो किस प्रकार से रहेगा।
1: तो अगर हम हमारे जो तीरंदाजी की बात करें तो कई सारे हमारे अरुणाचल के जिलों में एक सेंटर होता है जिसे हम खेलो इंडिया सेंटर या तो KIC कहते हैं, तो इस बार अरुणाचल के कई सारे KIC से जो स्टूडेंट्स हैं वो पार्टिसिपेट करने आ रहे हैं, साथ ही कुछ कुछ इंडिविजुअल प्लेयर्स अपने अपने जिले से आ रहे हैं, तो ऐसे करते हुए कुल मिलाकर हमारे पास जो 96 पार्टिसिपेंट्स हैं वो बाहर से आ रहे हैं यहाँ पर भाग लेने के लिए और हमारे तवांग से जो कि हम अपने ही जिले में मेजबानी कर रहे हैं तो हम चाहते हैं कि हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको एक मौका मिले, लेकिन एज कैटेगरी और कुछ कुछ कैटेगरी के कारण हमारे तवांग से 29 बच्चे इस टूर्नामेंट में भाग लेंगे, तो कुल मिलाकर हमारे पास 126 या 130 का जो आंकड़ा है तवांग में इस फिफ्थ स्टेट लेवल आरसी टूर्नामेंट में भाग लेंगे।
0: जी, तो जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले भी जिक्र किया था कि तवांग डिस्ट्रिक्ट आर्चरी एसोसिएशन जो है पिछले कुछ वर्षों से बच्चों को तीरंदाजी का नियमित रूप से प्रशिक्षण दे रहे हैं, तो इस दौरान आपने बच्चों में आर्चरी को लेकर किस तरह का उत्साह देखा है और क्या कोई ऐसा बच्चा है या खिलाड़ी है जिसकी मेहनत और प्रदर्शन से आपको विशेष रूप से प्रभावित किया हो?
1: शुरुआती समय में लगभग 150 लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया था और एक महीना के ट्रेनिंग के बाद ही उनको तीर और धनुष पकड़ने का मौका दिया जाता है, तो कुछ बच्चों में जो पेशेंस है वो पेशेंस खत्म हो जाता है तो वो लोग धीरे धीरे करके फिर वहां से हट जाते हैं, लेकिन 80 स्टूडेंट्स ने हमारे साथ लगभग एक साल तक बहुत ही अच्छी तरह से ट्रेनिंग किया है, लेकिन चूंकि जानते हैं कि हमारा जो मेन फोकस है वो स्टडीज में रहना है, तो उसमें से कई सारे बच्चों ने हायर स्टडीज के लिए अपना जिला को छोड़ के दूसरे जगह चले गए। ऐसे करते हुए अभी फिलहाल हमारे पास 50 स्टूडेंट्स रेगुलर वहां पर ट्रेनिंग ले रहे हैं और मैं आपके आकाशवाणी के माध्यम से ये भी आग्रह करना चाहूंगा हमारे जितने भी माता पिता है, तो आपके बच्चे के अंदर अगर पोटेंशियल है तो आप लोग प्लीज हमारे आर्चरी ऑफिस में विजिट कीजिएगा, हम वहां पर जितने भी बच्चे हैं उनको मुफ्त में ट्रेनिंग देते हैं और साथ ही जो भी आपका उपकरण है वो हम मुफ्त में प्रोवाइड करते हैं, तो आप लोग आइए और इस मौका है इसका फायदा उठाइए। हम वही चाहते हैं कि हमारे जो तवांग के बच्चों के अंदर जो एक पोटेंशियल है उस पोटेंशियल को हम थोड़ी सी पॉलिश करें और हमारे माता पिता का जो सहयोग रहे तो हमारे जो बच्चा है तवांग का वो आगे जाकर इंटरनेशनल लेवल तक अपना नाम रोशन करे। तो ऐसे करते हुए कुछ कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है, अपना जो ट्रेडिशनल स्टाइल है उसको छोड़कर जब ओलंपिक में आता है तो कुछ कुछ दिक्कतें आती है, लेकिन उसको छोड़ के उन्होंने स्टेट लेवल में लास्ट ईयर हमारे कई सारे बच्चों ने गोल्ड सिल्वर और ब्रॉन्ज लिया है और उसके बावजूद हमारे जो जूनियर टीम है उसमें से 6 बच्चों ने नेशनल लेवल 2 जगह में पार्टिसिपेट किया है, एक गुंटूर आंध्र प्रदेश में और दूसरा कोलकाता में, और हमारे जो सीनियर प्लेयर है उन्होंने भी कोलकाता में प्रदर्शन किया है और उन्होंने वहां पर हमारे जिले और हमारे राज्य के लिए एक ब्रॉन्ज मेडल लेके आया है, तो इस तरह से हमारे बच्चों के अंदर पोटेंशियल है लेकिन थोड़ी सी पेशेंस की कमी है।
0: जी बिल्कुल, आपने सही कहा, किसी भी बच्चों को आगे ले जाने के लिए माता पिता का बहुत बड़ा योगदान रहता है, जैसा कि आपने अभी बताया एक अच्छे आर्चर को ट्रेनिंग के अलावा इक्विपमेंट, कोचिंग, प्रैक्टिस फैसिलिटीज और कॉम्पिटिशन की भी जरूरत होती है, तो तवांग में इन सुविधाओं

0: को लेकर अभी क्या स्थिति है? जैसा कि आपने बताया कि आपके जितने भी प्लेयर्स हैं जो वहाँ पर प्रशिक्षण लेने के लिए आते हैं तो उनको आप मुफ्त में उपकरण प्रदान करते हैं, और किन चीजों की और आवश्यकता महसूस होती है आपको?
1: जहाँ तक देखें तो हमारे जितने भी खिलाड़ी यहाँ से जब डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल छोड़ते हुए जब नेशनल लेवल में जाते हैं तो हमें जो सरकार की ओर से जो आने जाने के लिए सिर्फ आपका ट्रेन का टिकट और कुछ बहुत ही मिनिमल सपोर्ट मिलता है, लेकिन चूंकि हमारे जो बच्चे हैं और उनके साथ एक या दो ही कोच रहते हैं तो ये हमारी एक जिम्मेदारी भी बन जाती है कि हमारे जो बच्चे हैं वो अच्छी तरह से जाकर वहां पे अपना प्रदर्शन भी दे और अच्छी तरह सही सलामत वापस घर में भी लौट जाए। अभी तक जितने लोगों ने नेशनल लेवल पर पार्टिसिपेट किया है तो हमने अपने ओर से उनका जो फ्लाइट टिकट है आना जाना, और हमने ये पूरी कोशिश की है कि जब टूर्नामेंट में कहीं जाते हैं तो उनका जो भेजने का जो आवास है उसे भी हम जितनी हो सके एक बेहतर आवास दिला सके। ये हम सबके लिए एक खुशखबरी की बात है कि पूरे भारतवर्ष में हमारा जो तवांग में एक आर्चरी स्टेडियम बन रहा है वो पूरे भारतवर्ष में पहला आर्चरी स्टेडियम होगा, लेकिन अभी फिलहाल हमारा जो आर्चरी स्टेडियम अभी कंप्लीट नहीं हुआ है तो इसी का एक कमी हमें शायद थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन हमें भरोसा है कि आने वाले सालों में जो हमारा आर्चरी स्टेडियम है वो कंप्लीट हो जाए, और एक बार आर्चरी स्टेडियम कंप्लीट हो जाए तो हमें लगता है कि हमारे जो बच्चे हैं वो एक अपने डेडिकेटेड ग्राउंड में अच्छी तरह से सीख पाएंगे और आगे जाकर अच्छा नाम कर पाएंगे।
0: जी, तो मैं आपसे और एक बात ये जानना चाहती थी कि आपके पास प्रशिक्षण के लिए बहुत से बच्चे आते हैं, तो किस उम्र में प्रशिक्षण देना आप शुरू करते हैं और ट्रेनिंग के दौरान किन किन चीजों का आप विशेष ध्यान रखते हैं?
1: तो हमारे पास 7 साल से जो बच्चे हैं वो आना शुरू हो जाते हैं और उससे छोटे जो बच्चे होते हैं, क्योंकि आर्चरी आप देखें तो आगे का जो उनका जो तीर होता है वो नुकीला होता है तो थोड़ा कुछ रिस्क भी रहता है, तो बहुत छोटे बच्चों को तो प्रशिक्षण देना भी संभव नहीं है, लेकिन 7 साल से जो बच्चे हैं वो आके जिनके पास रुचि है उनके माता पिता उनको ठीक ट्रेनिंग टाइम में आगे पहुंचाते हैं, फिर जैसे ही ट्रेनिंग खत्म होते लेके चले जाते हैं। हमारे पास अभी एक बच्ची है जिसका नाम तंजिन डासल है, वो अभी 8 साल की है लेकिन उन्होंने नेशनल लेवल तक जो प्रदर्शन है वो दिया है और इस साल भी वे हमारे स्टेट लेवल को रिप्रेजेंट करेंगे।
0: जी जी, तो इसके लिए मैं आप सभी तवांग डिस्ट्रिक्ट आर्चरी एसोसिएशन को बधाई देना चाहूंगी कि आपके अंदर जिसने प्रशिक्षण लिया है वो इतने आगे तक पहुंच पाया है, तो ये हम सबके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और जैसा कि आपने बताया कि बच्चे आते हैं प्रशिक्षण देते हैं तो प्रशिक्षण देने वाले एक कोच की भी जरूरत होती है उनकी, तो जितने भी एज कैटेगरी के लोग हैं क्या उन सभी के लिए अलग अलग कोच है आपके वहाँ पे फिलहाल जो प्रशिक्षण दे रहे हैं?
1: हमारे पास सरकार की ओर से खेलो इंडिया सेंटर के तहत एक कोच मैडम है जो पिछले 2 साल से हमारे साथ है जिनका नाम मिस मोहिनी क्री है, और वो हमारे इंडियन राउंड पो के एक एक्सपर्ट कोच है और वह खुद भी एक नेशनल प्लेयर रह चुकी है। लेकिन जिस तरह से अभी कॉम्पिटिशन पूरे विश्व में चल रहा है तो हमें लगा कि जो एक कॉम्पिटिशन होता है उसमें रिकर्व बो और कंपाउंड बो से ही लोग आगे जा सकते हैं, तो इस चीज को देखते हुए हमने हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी है सर को हमने रिक्वेस्ट किया है कि हमारे तवांग के बच्चों में पोटेंशियल है और एक इंडियन रॉनबो कोच से काम नहीं चलने वाला है, हमें और एक कोच चाहिए, तो इस तरह करते हुए अभी हमारे पास और एक कोच आए हैं जिसका नाम मिस्टर सनी वंगपन है और वो हमारे रिकर्व और कंपाउंड बो के एक्सपर्ट है। हमारे पास दो कोच है तो अभी दोनों कोच अपने ओर से बहुत ही अच्छा मेहनत कर रहे हैं और साथ ही हमारे जो बच्चे हैं वो भी अपना बेस्ट देने की अभी कोशिश कर रहे हैं। इस तरह के टूर्नामेंट में किस तरह का एक फिजिकल प्रेशर या एक मेंटल प्रेशर रहता है तो हमने ये खास अपने जो कोच है उनको एडवाइस दिया हुआ है कि हमारे जितने भी बच्चे भाग ले रहे हैं आप अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक आप उनको थोड़ा सा ट्रेन करें कि किस तरह से मेंटल और फिजिकल स्ट्रेस को दूर किया जाए ताकि वे एक अच्छा प्रदर्शन दे पाए।
0: जी, तो एक अच्छे आर्चर के लिए केवल निशाना लगाना ही जरूरी है या डिसिप्लिन और कंसंट्रेशन भी उतनी ही महत्वपूर्ण है?
1: आर्चरी एक ऐसा गेम है जिसमें आपको डिसिप्लिन होना बहुत ही जरूरी है और मैन जैसे आपने कहा है कंसंट्रेशन, बिना कंसंट्रेशन के आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे और कंसंट्रेशन ही आपका एक अच्छे आर्चर के लिए एक बहुत ही अहम भूमिका निभाती है, तो ये सब चीजें हैं जो हम अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको हमेशा अपने कोच के थ्रू बताते रहे हैं।
0: तो जैसे कि आज के युवा में हम अक्सर देखते हैं कि वो पढ़ाई और करियर के बीच स्पोर्ट्स को लेकर असमंजस में रहते हैं, तो आप उन बच्चों को क्या कहना चाहेंगे जो आर्चरी को अपना करियर बनाना चाहते हैं?
1: हमारे सरकार के मुताबिक ऐसे कई सारे स्पोर्ट्स कोटा में कुछ कुछ स्पोर्ट्स को सिलेक्ट किया गया है जिसमें अगर आप अच्छे करें स्पोर्ट्स कोटा में एक जॉब मिलना तय हो जाता है और आर्चरी उस स्पोर्ट्स में से एक स्पोर्ट्स है, और हम अपने बच्चों को यही सलाह देते हैं कि आप अपना पढ़ाई जो है उसे अच्छी तरह से करते रहे लेकिन जब भी समय मिलता है तो आजकल तो एक आधुनिक युग है जिसमें बहुत सारे बच्चे मोबाइल में ही रह जाते हैं, लेकिन आप मोबाइल से बाहर निकल के अगर आप आर्चरी में अपने दिन का 1 घंटा भी देता है तो हमें लगता है कि आप स्टेट लेवल या नेशनल लेवल में अच्छा कर पाते हैं, और अगर आप नेशनल लेवल में अच्छे कर पाएंगे तो इतना तो आपके लिए एक शॉर्ट टर्म

0: जाता है कि स्पोर्ट्स कोटा में अगर आपने क्लास 12 ग्रेजुएशन या मास्टर्स किया है तो आपको स्पोर्ट्स कोटा में एक नौकरी मिलना तो तय हो जाता है। तो जो भी हमारे नए बच्चे आते हैं, हम सबसे पहले उनके दिमाग में यही डालने की कोशिश करते हैं कि ये आर्चरी सिर्फ आपका एक खेल नहीं है, लेकिन आपको अपना जिंदगी संवारने का भी एक अवसर देगा, तो आप इस लाइन में जरूर काम कीजिएगा।
1: जैसे कि आपने पिछली बार जब हमारे आकाशवाणी टाउन में आए थे तो आपने बताया था कि हमारे जो ब्लॉक लेवल में भी आपके जो सदस्यगण है जॉइंट सेक्रेटरी के रूप में वहाँ पर भी
0: जी जी
1: नियुक्त है, तो वहाँ से भी जैसे कि आपने ब्लॉक में बताया था दुदुंगर चिमिथांग, इन सब से भी बच्चे यहाँ पर प्रशिक्षण लेने के लिए आते हैं।
0: हमने शुरुआत से ही एक इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है और जो कि हमारा एसोसिएशन का नाम है वो तवांग डिस्ट्रिक्ट आर्ची एसोसिएशन है, तो हम हमेशा से ये चाहते हैं कि तवांग का कोई भी ऐसा कोना ना छूटे जहाँ पर हमारे जो बच्चे हैं जिसमें टैलेंट है उनको प्रशिक्षण की कमी हो। तो इसी को लेते हुए हमने हर ब्लॉक में एक एक जॉइंट सेक्रेटरी रखा है और हमने उनको इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि आपके नजर में, क्योंकि अभी ओलंपिक में देखना तो थोड़ा सा मुश्किल है ब्लॉक लेवल में, लेकिन कोई भी बच्चा हमारे ट्रेडिशनल स्टाइल में बहुत ही अच्छा तीरंदाजी कर रहे हैं और उनको इच्छुक है कि वो एक हमारे ओलंपिक स्टाइल में सीखे, तो आप उनको हमारे पास लेके आइए, तो हम देखेंगे कि किस तरह से हम उनको तवांग में ही एकोमोडेट करके उनको ट्रेनिंग दे पाए या बीच बीच में महीने में दो बार हमारे कोच को लेके हम वहां जाके उनको कुछ ट्रेनिंग दे पाए। तो इस तरह से हम हमेशा से ही कोशिश करते आ रहे हैं और अभी जो हमारा तवांग चूंकि मेन सेंटर है तो इधर ही पूरा ट्रेनिंग हो रहा है और बहुत सारे ब्लॉक के जो बच्चे हैं वो तवांग में हमारे यहाँ हाई एल्टीट्यूड स्टेडियम में आके शाम के 3 बजे से लेके 5 बजे तक हर रोज प्रैक्टिस कर रहे हैं।
1: जी, तो फिर हम वापस आते हैं हमारे 5th जो स्टेट लेवल आर्चरी टूर्नामेंट है इसके विषय पर। स्टेट लेवल आर्चरी टूर्नामेंट है ये आगामी 10 अक्टूबर को हम आरंभ करेंगे, तो इसका जो समय जो है वो किस प्रकार से रहेगा और जो पार्टिसिपेंट्स है जो विजेता है उनको किस तरह का प्राइस डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, इसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी हम आपसे लेना चाहेंगे।
0: तो हमारा जो उद्घाटन समारोह है वो 10 तारीख को शुरू होगा और सुबह 9 बजे से जो हमारा इनॉग्रल सेरेमनी का जो भी प्रोग्राम्स है वो शुरू होगा और ऐसे करते हुए आपका जो नेक्स्ट दिन है जो कंपटीशन है वो भी 9 बजे से शुरू हो जाएगा और 13 का भी ऐसा ही चलेगा। और जहां तक बात करें प्राइजेस की, तो आपको पता है कि हमारे ओलंपिक स्टाइल में कैश प्राइजेस वगैरह नहीं रहता है, जो भी अच्छा प्रदर्शन देता है उन्हें हम गोल्ड सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल के साथ जो सर्टिफिकेट्स है वो देते हैं।
1: जी, तो अंत में आप हमारे जो आगामी 5th स्टेट लेवल आर्चरी टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों उनके पेरेंट्स और हमारे सभी लिसनर्स के लिए आपकी ओर से क्या संदेश आप देना चाहेंगे?
0: तो सबसे पहले तो मैं आकाशवाणी के माध्यम से इस 5th स्टेट लेवल आर्चरी टूर्नामेंट में जितने भी स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूंगा और खासकर हमारे तवांग के जितने भी बच्चे हैं आपको ये एक सूचना मैं आकाशवाणी के माध्यम से देना चाहूंगा कि इस टूर्नामेंट के दौरान चूंकि हमारा जो ओलंपिक है और जो हमारा जितना भी नेशनल और इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन है उसमें आपका जो इंडियन राउंड वो है उससे आप बहुत आगे तक नहीं जा पाएंगे, तो इस बार हम अपने भारतीय सेना के मदद से हमने काफी सारा जो कल्प और कंपाउंड वो है उसे प्रोक्योर किया हुआ है और इस टूर्नामेंट में हमारे जो बच्चे अच्छा प्रदर्शन देंगे उसे हम रिकर्व और कंपाउंड बो में अपग्रेड करेंगे और जो रिकर्व बो है उसका जो कॉस्ट है एक रिकर्व बो का हमें 4 लाख रुपया पड़ा है और एक कंपाउंड बो का प्राइस हमें 4 लाख रुपया पड़ा है और जो हमारा रिकर्व बो है वो लगभग 3.5 लाख का है, लेकिन हम अपने बच्चों को और आगे बढ़ाने के लिए और उनको अपग्रेड करने के लिए हम अपने भारतीय सेना और जितने भी वेल विशर्स ने हमें जो मदद किया है उनके माध्यम से हम अपने जो बच्चे जो तवांग के बच्चे जो अच्छे खेलेंगे उसे हम रिकर्व बो और कंपाउंड बो देंगे और आपको अपग्रेड करेंगे। और साथ ही जितने भी हमारे तवांग के लोग हैं हम आपसे विनती करेंगे कि आप सभी हमारे बच्चों का प्रोत्साहन करने के लिए कृपया ग्राउंड में जरूर आइएगा। हमारा जो आर्चरी है वो फुटबॉल की तरह एक इंटरेस्टिंग खेल नहीं होता है। पिछले साल हमने जो 4th स्टेट लेवल आर्चरी टूर्नामेंट किया था उसमें भी जो ऑडियंस है उसकी बहुत ही कमी है, लेकिन हमें लगता है कि अगर हमारे जो ऑडियंस है जो पेरेंट्स है वो हमारे बच्चों का प्रोत्साहन के लिए आएंगे तो वो और अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे और इस टूर्नामेंट में पूरे अरुणाचल से काफी सारे आर्चर्स आ रहे हैं, तो हम आशा करेंगे कि आप भी बढ़ चढ़ कर इस टूर्नामेंट को देखने आएंगे और हमारे जो खिलाड़ी है उनका प्रोत्साहन करेंगे। धन्यवाद।
1: जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतनी अच्छी जानकारी हमारे सभी सुनने वाले श्रोताओं को दी है।
0: धन्यवाद।
2: श्रोताओं, अभी आपने सुना तवांग आर्चरी एसोसिएशन के उपाध्यक्ष यानी वाइस प्रेसिडेंट श्री तेंजिन लुंडुप से। आगामी 10 अक्टूबर से 12 अक्टूबर 2026 तक दूसरी बार यानी 5th राज्य स्तर आर्चरी एसोसिएशन टूर्नामेंट ग्यावासेंग ग्यासो हाई एल्टीट्यूड स्टेडियम तवांग में खेले जाने विषय पर हुई भेंटवार्ता, उनसे भेंट करता थे सिटिम यांगचिन। श्रोता, इसी के साथ ही कार्यक्रम अपने दर्दी अपने लोक यहीं पर समाप्त होता है।

अगला कार्यक्रम आप सुन सकेंगे। आपसे कुछ ही पलों में यानी शाम 7:45 पर सुनिएगा प्रादेशिक समाचार तथा 7:50 पर सुनिएगा रीजनल न्यूज़।

0: आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं जया भारती। मुख्य समाचार। 6,000 से अधिक आशा कार्यकर्ताओं का मासिक प्रोत्साहन भत्ता 3,000 रुपए से बढ़ाकर 6,000 रुपए हुआ। माल की ढुलाई के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम और एक निजी भारतीय लॉजिस्टिक्स कंपनी के बीच समझौता। केराड़ी विधानसभा क्षेत्र स्थित रेलवे लाइन के साथ करीब 4.5 किलोमीटर लंबे पानी निकासी के निर्माण को मंजूरी। रेलवे ने लंबी दूरी की रेलगाड़ियों में साफ सफाई और यात्री सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए निगरानी बढ़ा दी है और ई संजीवनी ने 50 करोड़ टेली कंसल्टेशन को आंकड़ा पार किया। भारत की डिजिटल स्वास्थ्य सेवा पहल में महत्वपूर्ण उपलब्धि। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत त्यागराज स्टेडियम में आयोजित आशा सम्मेलन 2026 और आशा सम्मान समारोह में कई महत्वपूर्ण जन कल्याणकारी योजनाओं का शुभारंभ किया। उपराज्यपाल ने बताया कि 6,000 से अधिक आशा कार्यकर्ताओं का मासिक प्रोत्साहन भत्ता 3,000 रुपए से बढ़ाकर 6,000 रुपए किया गया है।
1: इस अवसर पर उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने कहा कि सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत शुरू की गई स्वास्थ्य योजनाओं का उद्देश्य आधुनिक तकनीक प्रभावी सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालियों और मानवीय दृष्टिकोण के समन्वय से दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करना है। उन्होंने कहा कि नर्सिंग होम प्रबंधन प्रणाली पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण और नवीनीकरण जैसी प्रक्रियाओं को ऑनलाइन और पारदर्शी बनाया गया है। कार्यक्रम के दौरान जीबी पंत अस्पताल में राज्य अंग और ऊतक प्रत्यारोपण के भवन का उद्घाटन भी किया गया, जिससे अंगदान और प्रत्यारोपण की पूरी प्रक्रिया में बेहतर समन्वय होगा। इसके अलावा कार्यक्रम के दौरान मिशन अनमोल के विस्तार का भी शुभारंभ किया गया। इसके तहत नवजात शिशुओं के जन्म के 24 से 72 घंटे के भीतर 63 जन्मजात बीमारियों की जांच की जाएगी, जिससे स्वास्थ्य समस्याओं की शुरुआती अवस्था में पहचान कर उनके प्रभाव को कम करने में मदद मिलेगी। श्रीमती गुप्ता ने बताया कि यह जांच दिल्ली सरकार मुफ्त उपलब्ध कराएगी।
2: अनमोल योजना के अंतर्गत हम नवजात शिशु का टेस्ट कराएंगे, जो कि एक महंगा टेस्ट होता है, परंतु सरकार उसको पूरी तरीके से निशुल्क कराएगी।
1: इस अवसर पर मौजूद दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने कहा कि दिल्ली सरकार का संकल्प है कि स्वास्थ्य सेवाएं दिल्ली के लोगों के लिए सुलभ हों। प्रादेशिक समाचार के लिए सीमांग मिश्रा के साथ अनुराग नामदेव।
0: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम NCRTC ने आज एक निजी भारतीय लॉजिस्टिक्स कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इसके तहत दिल्ली मेरठ नमो भारत कॉरिडोर की सेवाओं को निजी लॉजिस्टिक्स कंपनी के पिकअप और डिलीवरी नेटवर्क से जोड़कर पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में एक्सप्रेस पार्सल की आवाजाही की संभावनाएं तलाश की जाएंगी। NCRTC ने बताया कि इस पहल के तहत दोनों संगठन प्रस्तावित सेवा की व्यवहारिकता का आकलन करेंगे। इसके लिए परिचालन संबंधी जरूरतों, संभावित पार्सल की संख्या, स्टेशनों पर उपलब्ध सुविधाओं और अन्य जरूरी पहलुओं का अध्ययन किया जाएगा। इस अवसर पर NCRTC के प्रबंध निदेशक शलभ गोयल ने कहा कि ये पहल पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में क्षेत्रीय कनेक्टिविटी बेहतर करने, सड़कों पर वाहनों का दबाव कम करने और वायु प्रदूषण नियंत्रित करने की दिशा में एक रणनीतिक कदम है। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि वरिष्ठ नागरिक समाज की अमूल्य नींव है और उनके स्वास्थ्य, सम्मान और प्रसन्नता को सुनिश्चित करना सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। ये बात श्री गुप्ता ने आज प्रशांत विहार स्थित अग्रवाल धर्मशाला में आयोजित कैंसर स्क्रीनिंग शिविर और वरिष्ठ सांस्कृतिक उत्सव का उद्घाटन करते हुए कही। श्री गुप्ता ने कहा कि विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों के जीवन में की रक्षा में निवारक स्वास्थ्य देखभाल और समय पर स्वास्थ्य जांच की महत्वपूर्ण भूमिका।

है। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों का अनुभव, ज्ञान और परिवार तथा समाज के प्रति योगदान युवा पीढ़ी के लिए एक अमूल्य विरासत है। मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता ने केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 10,000 करोड़ रुपए के एमएसएमई ग्रोथ फंड को मंजूरी दिए जाने के फैसले का स्वागत किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में लिया गया यह निर्णय देश के छोटे और मध्यम उद्यमों को नई शक्ति देने वाला महत्वपूर्ण कदम है। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने आज जनकपुरी के

0: विद्यालय के कुल 581 छात्राओं को साइकिलें प्रदान की गई। श्री सूद ने कहा कि यह योजना छात्राओं के स्कूल तक दैनिक आवागमन को अधिक सुगम, सुरक्षित और सुविधाजनक बनाने के साथ साथ उनमें आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता की भावना को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। श्री सूद ने बताया कि अब तक दिल्ली में लगभग 18,000 छात्राओं को साइकिलें वितरित की जा चुकी हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं।
1: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए @AIRNews हिंदी को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़े।
0: प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली सरकार ने किराड़ी विधानसभा क्षेत्र स्थित रेलवे लाइन के साथ करीब 4.5 किलोमीटर लंबे पानी निकासी के निर्माण को स्वीकृति दे दी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यह निर्णय आज मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में आयोजित व्यय वित्त समिति की बैठक में लिया गया।
2: मुख्यमंत्री ने बताया कि इस परियोजना से किराड़ी, मुंडका, बवाना और नांगलोई जाट विधानसभा क्षेत्रों को सीधे लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि किराड़ी क्षेत्र की करीब 70 अनाधिकृत कॉलोनियों को प्रस्तावित ड्रेन से जल निकासी की सुविधा मिलेगी। वहीं मुंडका क्षेत्र में रानीखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र, वेडू एनक्लेव सहित विभिन्न अनाधिकृत कॉलोनियों को लाभ मिलेगा। श्रीमती गुप्ता ने बताया कि इस परियोजना पर 260 से अधिक करोड़ रुपए की लागत आएगी। दिल्ली के सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण मंत्री परवेश साहिब सिंह ने कहा कि सरकार का लक्ष्य ऐसी परियोजनाओं को प्राथमिकता देना है जिसका सीधा लाभ आम नागरिकों को मिले और लंबे समय से चली आ रही समस्याओं का समाधान हो। उन्होंने बताया कि प्रस्तावित ड्रेन रेलवे लाइन के साथ बनाई जाएगी और इसका डिस्चार्ज 760 क्यूसेक रखा गया है। श्री सिंह ने बताया कि लगभग 4.5 किलोमीटर लंबी ये ड्रेन मुंडका हॉल्ट स्टेशन से शुरू होकर पूरक ड्रेन में जाकर मिलेगी। उन्होंने बताया कि इस परियोजना को दिसंबर 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। शिवांग की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए शक्ति सिंह।
0: भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने निर्वाचन आयोग और अन्य संवैधानिक संस्थाओं को बार बार निशाना बनाने के लिए कांग्रेस और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की आलोचना की है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री रिजिजू ने कांग्रेस पर जनता का समर्थन हासिल करने में विफल रहने के बाद संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाने का आरोप लगाया है।
3: ये रोज रोज कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी जो ड्रामा करते रहते हैं, इलेक्शन कमीशन को लेकर के, सुप्रीम कोर्ट को लेकर के जो हमला करते रहते हैं, अब बंद करने का समय आ गया है। लोकतंत्र में लोगों का सेवा करो तो आपको जनादेश मिलेगा। अब जनादेश प्राप्त नहीं कर पाता है और इलेक्शन कमीशन को गाली देंगे, और जब सुप्रीम कोर्ट ने माफी मांगने के लिए कहते हैं, बाद में सुप्रीम कोर्ट को भी फिर अटैक करते हैं और बोलते हैं कि कोर्ट के ऊपर में भरोसा नहीं है, तो इससे ना लोकतंत्र ठीक होगा ना कांग्रेस पार्टी का फिर से उदय होगा।
0: भाजपा प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने भी कांग्रेस पर AI से बनाए गए वीडियो के जरिए झूठी बातें फैलाने का आरोप लगाया। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने आज नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि राहुल गांधी निराधार, असंगत और झूठे बयानों के जरिए देश को गुमराह कर रहे हैं। इससे पहले आज विपक्षी दलों ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR में कथित अनियमितताओं और मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के त्यागपत्र की मांग को लेकर संसद भवन से निर्वाचन आयोग के मुख्यालय निर्वाचन सदन तक विरोध मार्च निकाला। हालांकि निर्वाचन आयोग की ओर बढ़ रहे विपक्षी नेताओं और कार्यकर्ताओं को सुरक्षाकर्मियों ने आकाशवाणी भवन के पास रोक दिया। बाद में लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पार्टी नेताओं और समर्थकों के साथ आकाशवाणी भवन में प्रवेश कर गए। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं।
1: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी @AIRNews हिंदी और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। रेलवे ने लंबी दूरी की रेलगाड़ियों में साफ सफाई और यात्री सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए निगरानी बढ़ा दी है। इसके अंतर्गत 40 घंटे से अधिक की यात्रा वाली 11 लंबी दूरी की रेलगाड़ियों की पहचान की गई है। इन रेलगाड़ियों में पूरे सफर के दौरान साफ सफाई और यात्री सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। रेलवे बोर्ड ने इस संबंध में सभी जोनल रेलवे को पत्र भेजा है। बोर्ड ने कहा है कि इन रेलगाड़ियों में सफाई, शौचालय, कचरा प्रबंधन और रेल डिब्बों की छोटी मोटी सुविधाओं से जुड़ी कमियों को सफर के दौरान ही

0: तुरंत दूर किया जाए। इसका उद्देश्य रेलगाड़ियों के शुरुआती स्टेशन से लेकर गंतव्य तक लगातार साफ सफाई और सुविधाओं को बनाए रखना है। उत्तर रेलवे ने आज फिरोजपुर और अंबाला मंडलों में सुरक्षा और गुणवत्ता सुधार शिविर आयोजित किए। इन शिविरों का मुख्य उद्देश्य केवी उन्नयन कार्यों के निष्पादन के दौरान सुरक्षित कार्य पद्धतियों को बढ़ावा देना और गुणवत्ता मानकों का पालन सुनिश्चित करना था। दिल्ली नगर निगम एमसीडी द्वारा आज चलाए गए गहन प्रवर्तन अभियान के अंतर्गत सभी 12 जोनों में 29 ध्वस्तीकरण कार्रवाई की गई। निगम ने बताया कि कार्रवाई के दौरान 7 संपत्तियों को सील किया गया और भवन मानदंडों के उल्लंघन पर 5 ध्वस्तीकरण आदेश जारी किए गए। ये प्रवर्तन अभियान शालीमार बाग, मयूर कुंज, पटपड़गंज, अम्बेडकर नगर और शादरा सहित राजधानी के विभिन्न क्षेत्रों में चलाया गया। दिल्ली जल बोर्ड ने बताया है कि वजीराबाद जलशोधन संयंत्र में एलम फीडिंग लाइन को डुप्लीकेट मेन लाइन से जोड़ने के कार्य के कारण कल दिल्ली के कई इलाकों में कुछ समय के लिए जलापूर्ति प्रभावित रहेगी। बोर्ड ने बताया कि कल सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक वजीराबाद स्टाफ क्वार्टर्स, सिग्नेचर ब्रिज एरिया, लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल, ग्रेटर कैलाश और उसके आसपास के क्षेत्रों में जलापूर्ति प्रभावित रहेगी। जल बोर्ड ने लोगों से पानी का सावधानीपूर्वक उपयोग करने की अपील की। साथ ही नागरिक आपातकाल स्थिति में हेल्पलाइन नंबर 1916 पर संपर्क कर सकते हैं। राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सेवा ई संजीवनी ने 50 करोड़ टेली परामर्श का आंकड़ा पार कर लिया है। ये देश में डिजिटल तकनीक के जरिए लोगों तक किफायती, सुलभ और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के सरकार के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
1: ये प्लेटफॉर्म अब कृत्रिम बुद्धिमता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित क्लिनिकल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम AICDSS के एकीकरण के साथ और अधिक विकसित हुआ है। यह प्रणाली परामर्श के दौरान स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को सहयोग प्रदान करती है तथा नैदानिक निर्णय लेने की गुणवत्ता, एकरूपता और दक्षता को मजबूत करने में सहायता करती है। इस नवाचार को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता भी मिली है और इसे राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 के अंतर्गत स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है। ई संजीवनी को इमरजेंसी रेस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम 112 के साथ भी एकीकृत किया गया है, जिसे आपातकालीन प्रतिक्रिया सेवाओं और दूरस्थ चिकित्सा विशेषज्ञता के बीच बेहतर समन्वय स्थापित हुआ है। इस एकीकरण का उद्देश्य चिकित्सा सहायता तक अधिक समन्वित पहुंच को सुगम बनाना और आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं में डिजिटल तकनीक के उपयोग को और मजबूत करना है। ई संजीवनी अब देश के प्रमुख सरकारी चिकित्सा संस्थानों के माध्यम से विशेषज्ञ ओपीडी परामर्श की सुविधा के विस्तार की दिशा में भी आगे बढ़ रही है। अक्षित के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार दिल्ली।
0: राजधानी दिल्ली में आज दिन के न्यूनतम तापमान 36.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान 25.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग ने बताया कि कल आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। वहीं कल का अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 से 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 6,000 से अधिक आशा कार्यकर्ताओं का मासिक प्रोत्साहन भत्ता 3,000 रूपये से बढ़ाकर 6,000 रूपये हुआ। माल की ढुलाई के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम और एक निजी भारतीय लॉजिस्टिक्स कंपनी के बीच समझौता। किराड़ी विधानसभा क्षेत्र स्थित रेलवे लाइन के साथ करीब 4.5 किलोमीटर लंबे पानी निकासी के निर्माण को मंजूरी। रेलवे ने लंबी दूरी की रेलगाड़ियों में साफ सफाई और यात्री सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए निगरानी बढ़ा दी है। और ई संजीवनी ने 50 करोड़ टेली परामर्श का आंकड़ा पार कर लिया है। भारत की डिजिटल स्वास्थ्य सेवा पहल में महत्वपूर्ण उपलब्धि। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: श्रोता, अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार। आपकी सेवा में यह आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। शोधन समय रात्रि के ठीक 8 बजे हैं। लीजिए श्रोता, प्रस्तुत है कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत के अंतर्गत आप श्रोताओं द्वारा व्हाट्सएप के जरिए फरमाइश किए गए चंद पुराने हिंदी फिल्मी सदाबहार नगमे। श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला नगमा ये सुनते हैं वेस्ट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट चाईबासा झारखंड से। आप सब है शिवा गोप, प्रेम गोप,

कपिल गोव, शिवांशी गोव, संगीता गोव, लिपि गोव और दीपाली गोव, आप सबके फरमाइश पर आइए आनंद लेते हैं कार्यक्रम का पहला गीत फिल्म सड़क से कुमार सानू की आवाज में। इस गीत को लिखा है समीर ने तथा संगीत दिया है नदीम शवन ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला परामर्श हमें प्राप्त हुआ है राज्य असम से। आप है हितेंद्र दास, आपके परामर्श पर आनंद लेते हैं। एक फूल दो माली फम से मोहम्मद रफी और आशा भोसले की गुलाबाजों में। गीत प्रेम धवन के है तथा संगीत रवि शंकर शर्मा का।

जहाँ मिले दो जवान नजर होती तकरार वही है, दिल पर रख कर हाथ ये कह दो हमसे प्यार नहीं है। जहाँ मिले दो जवान नजर

श्रोताओं, समय आप आना ले रहे हैं। आप श्रोताओं द्वारा व्हाट्सएप के जरिए फरमाइश किए गए चंद पुराने सदाबहार नगमे कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत के अंतर्गत आकाशवाणी के तवंग केंद्र से कार्यक्रम को यूं ही आगे बढ़ाते हुए कार्यक्रम का अगला फरमाइश हमें प्राप्त हुआ है। पटना टालकिस नापा नगर मध्य प्रदेश से आप है सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रकीर शाह, कुशाल शाह, नीति शाह, सुरवी शाह, अश्विन शाह, मंगला बहन शाह और राजेंद्र जी शाह। जनकपुरी सहारनपुर से आप है जॉन डिकास्टो, पिल डिकास्टो, रोजी डिकास्टो और विल्स डिकास्टो। आप सबके फरमाइश पर यह आनंद लेते हैं फिल्म हाथ की सफाई से मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की युगल आवाजों में। गुलशन बावरा के लिखे इस गीत को संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी ने।

नीलेश्वर नगर नरवाल महाराष्ट्र से आप है पीएस नर्वेकर निर्मला नर्वेकर और विशाल नर्वेकर। मालकापुर से आप है नारायण इंगले सपुन तादे और आशीष मुरेकर। आप सबके फरमाइश पर आयाना लेते कार्यक्रम का अंतिम गीत फ्रॉम बम्बई का बाबू से आशा भोसले और मोहम्मद रफी के युगल सुरों में। इस गीत के गीतकार है मैश्रो सुतनपुरी तथा संगीतकार है एसटी बर्मन।

श्रोता भी पाने लिए थे कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत का, जिसके तहत हमने पेश किए आप सभी के व्हाट्सएप फरमाइशों पर आधारित कुछ बेहद प्यारे सदाबहार नगमे। अगर आप इस सुरों की महफिल में शामिल होना चाहते हैं तो हमें सुबह 5 बजे से शाम 5 बजे तक व्हाट्सएप जरूर करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6033914908। साथ ही अपना नाम, पता, गीत के बोल और फिल्म का नाम लिखना ना भूलें, ताकि आपकी पसंद हमारे जरिए सब तक पहुंच सके। इसी के साथ ही आपकी फरमाइशों पर आधारित हमारा या रोमानी और यादों पर कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्म गीत यही समाप्त होता है।

नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण के साथ मैं प्रशांत कुमार आप सभी श्रोताओं का अभिनंदन करता हूं। खेल जगत की हलचल, खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन और मैदान से जुड़ी हर अहम खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। तो शुरू करते हैं।

आज का सफर। सबसे पहले एक नजर स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। भारत और वेस्टइंडीज के बीच पहला T20 क्रिकेट मुकाबला लखनऊ में जारी। हरमनप्रीत कौर ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तानी छोड़ी, खिलाड़ी के रूप में खेलती रहेंगी। ICC प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए महिला वर्ग में शेफाली और श्रीचरणी तथा अभिषेक और शुभमन गिल पुरुषों की श्रेणी में नामित। दिग्गज नोवाक जोकोविच और कार्लोस अल्काराज का दबदबा। कार्लोस ने जापान ओपन और नोवाक जोकोविच ने चाइना ओपन टेनिस का खिताब जीता। और नेशंस लीग फुटबॉल में इटली और फ्रांस ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत दर्ज की।

0: कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं क्रिकेट से, जहां भारत और वेस्टइंडीज के बीच T20 मुकाबला खेला जा रहा है। लखनऊ में भारत और वेस्टइंडीज के बीच पहला T20 क्रिकेट मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक वेस्टइंडीज ने 18वें ओवर में 8 विकेट पर 155 रन बना लिए हैं। इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। भारत के लिए नमन धीर डेब्यू कर रहे हैं। 5 मैचों की श्रृंखला का दूसरा मुकाबला 9 अक्टूबर को रांची में खेला जाएगा। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी विशेष। क्या है मुकाबले की ताजा तस्वीर
1: प्रशांत? अभी भारतीय टीम ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी गेंदबाजी का फैसला किया था, और वेस्टइंडीज की जो बल्लेबाजी है वो काफी हद तक बैलेंस नजर आई है। अभी तक कप्तान शे होप ने 37 गेंदों पर 52 रन की पारी खेली थी। उसके बाद कमिल पूरन, शिमरन हेटमायर, रेवमन पॉवेल कोई भी बड़ा स्कोर नहीं कर सका, लेकिन शेरफेन रदरफोर्ड ने वहां पर पारी को संभालते हुए 30 गेंदों पर 46 रन बनाए और अभी भी क्रीज पर मौजूद हैं।
0: और अगर गेंदबाजों की बात की जाए भारतीय गेंदबाजों की, तो अर्शदीप सिंह वापसी कर रहे हैं। एशियन गेम्स में भारत को स्वर्ण पदक दिलाने में अहम भूमिका रही थी। भारतीय गेंदबाजों का कैसा रहा है आज का प्रदर्शन?
1: आज भारतीय गेंदबाजों का प्रदर्शन प्रशांत काफी शानदार रहा है। अगर अर्शदीप सिंह की बात करें तो वो एक गेंद बची है उनके स्पेल में और अभी तक उन्होंने 30 रन दिए हैं, एक विकेट भी चटकाया है। वहीं नमन धीर ने आज अपनी गेंदबाजी से काफी प्रभावित किया है। 4 ओवर में उन्होंने 31 रन देकर 3 विकेट अपने नाम किए हैं। कुलदीप यादव ने 2 और अक्षर पटेल ने 1 विकेट अपने नाम किया। मयंक यादव जो है वो थोड़े से महंगे साबित हुए आज।
0: आपने नमन धीर की बात की जिनका प्रदर्शन शानदार रहा है। 4 ओवर में उन्होंने 7.8 की इकोनॉमी रेट से 3 विकेट लिए हैं और आज डेब्यू भी कर रहे हैं। कैसा रहा है उनका सफर? अभी एक दिवसीय क्रिकेट में उन्हें मौका मिला था और बैक टू बैक अब T20 में भी डेब्यू कर रहे हैं।
1: बिल्कुल प्रशांत, आज नमन धीर के लिए काफी बड़ा पल है। वैसा ही प्रदर्शन उनसे अभी देखने को मिला है। काफी शानदार गेंदबाजी, 31 रन देकर 3 विकेट, किफायती गेंदबाजी करी उन्होंने। और ओडीआई क्रिकेट में उन्होंने हाल ही में अपना डेब्यू किया था। एक मुकाबले में बल्लेबाजी का मौका मिला था जहां उन्होंने 30 रन बनाए थे 142 के स्ट्राइक रेट से। गेंदबाजी हालांकि साधारण रही थी पर एक विकेट उनको फिर भी मिला था।
0: और विशेष, 18 ओवर का खेल हो चुका है। वेस्टइंडीज ने 8 विकेट पर 160 रन बना लिए हैं और पहली इनिंग लगभग खत्म होने को है। कौन कौन से ऐसे बल्लेबाज हैं स्क्वाड में आज भारत के जिन पर निगाहें होंगी, जो ये जो टोटल जो भी होगा वेस्टइंडीज जो भी टारगेट सेट करेगी भारत के लिए उसको चेस करने के लिए सशक्त रूप से मैदान पर उतरेंगे?
1: प्रशांत, भारतीय टीम का जिस हिसाब का बल्लेबाजी क्रम है 200 रन का टारगेट भी भारत को छोटा नजर आता है, क्योंकि अभिषेक शर्मा शुरुआत करते हैं, वहीं संजू सैमसन उनका साथ देते हैं, उसके बाद पॉकेट डायनमो ईशान किशन, कप्तान श्रेयस अय्यर भी शानदार फॉर्म में है, तिलक वर्मा नीचे से बल्लेबाजी को संभालते नजर आएंगे और शिवम दुबे और नमन धीर फिनिशिंग के रोल की भूमिका निभाएंगे।
0: जी, फिनिशिंग रोल में नजर आएंगे और श्रेयस अय्यर ने लगातार अच्छा प्रदर्शन किया अपने बल्ले से और अपनी कप्तानी से भी। हाल ही में उन्होंने भारत को एशिया कप में गोल्ड मेडल भी दिलाया और मुकाबले से पहले भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने अब तक के अपने कप्तानी के अनुभव को भी साझा किया। आइए सुनते हैं।
2: I know it's a learning curve. It's just the starting phase of my captaincy, and I'm sure that it is going to blossom in the coming matches as well. So it's important to stay in that state of equilibrium and not overthink about the past, nor what future has got to offer. So I like to be in the present and see to it that we embrace the situation as much as possible and then react to it.
0: उधर भारतीय महिला क्रिकेट टीम के इतिहास के एक स्वर्णिम अध्याय का आज अंत हो गया। अपनी कप्तानी में भारतीय महिला क्रिकेट टीम को सफलता की नई ऊंचाई पर पहुंचाने वाली हरमनप्रीत कौर ने अपना पद छोड़ दिया है। 37 साल की हरमन ने सोशल मीडिया पर महिला क्रिकेट टीम की कप्तानी छोड़ने की घोषणा की। बतौर खिलाड़ी वो सक्रिय रहेंगी।
3: Women in blue finish atop the podium for a second time at this continental multi-sport.

0: successfully defend their gold medal from Hangzhou 2023.
1: हरमनप्रीत कौर भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सफलतम कप्तान है। हरमनप्रीत के कप्तान बनने से पहले भारतीय टीम देश और विदेश में बड़ी बड़ी टीमों को चुनौती तो देती थी, लेकिन जीत से दूर रह जाती थी। 2016 में पूर्णकालिक कप्तान बनने के बाद हरमन ने टीम की दशा और दिशा दोनों ही बदल दी। अपनी 10 साल की कप्तानी में हरमन ने भारतीय टीम को न सिर्फ अलग अलग वैश्विक मंचों पर चैंपियन बनाया, बल्कि टीम को एक मजबूत और सशक्त ताकत के रूप में स्थापित कर दिया। 37 साल की हरमनप्रीत 2016 में पूर्णकालिक कप्तान बनी थी। उनकी कप्तानी में भारतीय महिला टीम ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर अपना पहला ICC इवेंट वनडे विश्व कप 2025 जीता था। हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में भारतीय टीम ने 4 बार यानी 2012, 2016, 2022 और 2026 में एशिया कप जीता। 2012 में वो अस्थायी कप्तान थी। हरमन की कप्तानी में भारतीय महिला टीम हांगझोऊ एशियन गेम्स 2023 और आईची नागोया एशियन गेम्स में लगातार 2 बार गोल्ड मेडल जीत चुकी है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारतीय टीम ने हरमन की कप्तानी में ही सिल्वर मेडल जीता था और हाल ही में लॉर्ड्स में महिलाओं का पहला टेस्ट भी खेला गया था। हरमन की कप्तानी वाली भारतीय टीम ने घरेलू टीम इंग्लैंड को हराकर इतिहास रच दिया। पिछले 10 वर्षों में हरमनप्रीत कौर ने भारतीय टीम का 5 टेस्ट, 51 वनडे और 155 T20 में नेतृत्व किया। मुनीश शर्मा, स्पोर्ट्स कैन।
2: एंड दैट्स द थिंग अबाउट द वेट ऑफ बिलियन ड्रीम्स। When you finally lift it, it feels as light as the confetti falling around you.
3: उधर भारत की शेफाली वर्मा और श्रीचरणी तथा शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा को सितंबर 2026 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड के लिए नामित किया गया। विशेष चारों ही खिलाड़ी ने डोमिनेट किया पिछले महीने को, कैसा रहा उनका हालिया प्रदर्शन?
4: प्रशांत, अगर शेफाली के प्रदर्शन की बात करें तो उन्होंने सितंबर में 7 T20 मैचों में 72 की औसत से 184 के स्ट्राइक रेट के साथ 360 रन बनाए हैं। श्री चरणी, जो कि बाएं हाथ के एक स्पिनर हैं, उन्होंने 7 T20 मुकाबलों में 18 विकेट चटकाए हैं और अभिषेक शर्मा शानदार फॉर्म में हैं। उन्होंने 30 गेंदों में शतक लगाकर सबकी सुर्खियां बटोरी थी। उसके बाद कप्तान शुभमन गिल ने वनडे में रिकॉर्ड तोड़ पारियां खेली और दोहरा शतक, अपने करियर का दूसरा दोहरा शतक भी लगाया था।
3: और आज के मुकाबले पर भी सभी की निगाहें अभिषेक पर होंगी। और अब चलते हैं टेनिस के कोर्ट की ओर, जहां नोवाक जोकोविच हो या फिर कार्लोस अल्काराज, उन्होंने अपने अपने खिताब जीते हैं। नोवाक जोकोविच ने चाइना ओपन टेनिस का खिताब जीत लिया है। पुरुष सिंगल्स फाइनल में उन्हें एडी मिनार से वॉकओवर मिलने के बाद ये खिताब उन्हें उनके नाम किया गया। वॉकओवर मिलने से पहले जोकोविच ने पहला सेट 7-6 से जीत लिया था। विशेष अगर हम देखें इस चैंपियन खिलाड़ी की अगर बात करें तो कोई भी टूर्नामेंट हो, सबकी निगाहें इन पर ही होती है। और एक बार फिर आज जोकोविच ने साबित किया है कि क्यों उन्हें इस कोर्ट का बादशाह कहा जाता है। कैसा रहा उनका ये सफर?
4: बिल्कुल प्रशांत, नोवाक डी जोकोविच ने अपने करियर में आज एक और उपलब्धि जोड़ दी है। एलेक्स डी मिनोर, जो कि रिटायर्ड हो गए आज के मुकाबले में, उससे पहले ही जोकोविच 7-6 से पहला गेम जीत चुके थे। अगर इस टूर्नामेंट में उनके सफर की बात करें तो राउंड ऑफ 16 में उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया था। उसके बाद क्वार्टर फाइनल में US ओपन के विजेता अलेक्जेंडर ज्वेरेव को कड़े मुकाबले में शिकस्त दी थी। सेमीफाइनल के दूसरे गेम में मेदवेदेव के बाहर हो जाने से उनको वॉकओवर मिल गया था। तो जोकोविच का प्रदर्शन इस टूर्नामेंट में शानदार रहा। साथ ही साथ अगर उनकी उपलब्धियों की बात करें तो 24 ग्रैंड स्लैम टाइटल उनके नाम है और 101 ATP सिंगल टाइटल उन्होंने जीते। ये दर्शाता है कि किस दर्जे के जोकोविच खिलाड़ी हैं और किस तरीके का वो प्रदर्शन करते रहते हैं।
3: और श्रोताओं, आपको बता दें कि रूस की एकातेरिना अलेक्जेंड्रोवा ने महिला वर्ग के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। प्री क्वार्टर फाइनल में उन्होंने चेक गणराज्य की लिंडा नोस्कोवा को 6-2, 6-2 से हराया। विशेष पुरुष वर्ग का तो विजेता हमें मिल गया, लेकिन महिला वर्ग में अभी भी रोमांचक मुकाबले खेले जा रहे हैं। आज कैसा रहा एकातेरिना और बाकी खिलाड़ियों का प्रदर्शन?
4: प्रशांत, अगर चाइना ओपन महिला सिंगल्स की बात करें तो आज हुए 4 राउंड ऑफ 16 मुकाबलों में निकोला ने सिंजा क्राउस को 6-0, 4-6, 6-3 से शिकस्त दी। वहीं कैरोलिना मुखोवार ने जापान की नाओमी ओसाका को 7-5, 1-6, 7-6 से हराकर अगले दौर में प्रवेश किया। अगले क्वार्टर फाइनल में मुखोवा का मुकाबला बार्तुनोवा से होगा। इसके अलावा मीरा एंड्रीवा और एकातेरिना अलेक्जेंड्रोवा ने डारिया स्निगुर और लिंडा नोस्कोवा को हरा दिया है। अब क्वार्टर फाइनल में एंड्रीवा और अलेक्जेंड्रोवा आमने सामने होंगी।
3: विशेष ये तो हुई आज के मुकाबलों की बात, लेकिन कल कौन कौन से रोमांचक मुकाबले खेले जाने हैं?
4: कल काफी रोमांचक मुकाबले खेले जाने हैं प्रशांत। इवा जोविक इगा स्वाइटेक से मुकाबला करेंगी। कोको गॉफ एलिस

0: ब्रिटेन्स का और एलिना कराइवा क्वेन झेंग का सामना करेंगी और अंतिम मुकाबले में एन ली की भिड़ंत एलिना स्वेतलोना से होगी। इन मुकाबलों को जीतने वाले चार खिलाड़ी क्वार्टर फाइनल में प्रवेश करेंगे। 8 अक्टूबर को क्वार्टर, 10 को सेमी और 11 को फाइनल मुकाबला खेला जाएगा।
1: उधर श्रोताओं, आपको बता दें कि कार्लोस अल्काराज ने जापान ओपन टेनिस का खिताब जीत लिया है। फाइनल मुकाबलों में उन्होंने जिरी लेहेका को 7-6, 6-4 से हराया। विशेष यूएस ओपन के प्रबल दावेदार माने जा रहे थे कि इस टूर्नामेंट को वो जीतेंगे, लेकिन कार्लोस अल्काराज क्वार्टर फाइनल में ही बाहर हो गए। इस प्रतियोगिता को जीतना कितना अहम है उनके लिए?
0: बिल्कुल प्रशांत, काफी अहम है क्योंकि कार्लोस अल्काराज शानदार खिलाड़ी हैं और उन्होंने यूएस ओपन की हार को एक सीख की तरह लिया। ऐसा ही प्रदर्शन उन्होंने आज कुछ शानदार प्रदर्शन किया, जहां जिरी लेहेका उनके सामने बेबस नजर आए और मुकाबले को उन्होंने 7-6, 6-4 से गवा दिया। अल्काराज ने इस टूर्नामेंट में मैथ्यो को राउंड ऑफ 16 में, क्वार्टर फाइनल में डेनिस को और सेमीफाइनल में जोमे मुनार को हराया था। अल्काराज के करियर का यह 27वां सिंगल्स टाइटल है। इससे पहले उन्होंने 7 ग्रैंड स्लैम, 8 एटीपी मास्टर्स 1000, 10 एटीपी 500 और 2 एटीपी 250 टाइटल्स अपने नाम किए थे। तो जितनी लंबी यह लिस्ट है प्रशांत, अगर इसी रफ्तार से वे आगे बढ़े तो कई और मुकाम अपने नाम करेंगे।
1: कई और मुकाम अपने नाम करेंगे। और अब हम लोग चलते हैं फुटबॉल के मैदान की ओर। नेशंस लीग फुटबॉल में इटली ने शानदार प्रदर्शन करते हुए तुर्की को 3-1 से हराया। इस जीत के साथ ही इटली प्रतियोगिता के ग्रुप A1 में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। रॉबर्टो मैंसिनी ने इटली के मैनेजर के तौर पर लौटने के बाद घरेलू मैदान पर पहली जीत हासिल की है। सुनते हैं ये रिपोर्ट।
2: इटली ने प्रतियोगिता में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए अपने ग्रुप में दूसरा स्थान हासिल कर लिया है। तुर्की के साथ हुए मुकाबले में इटली ने जियान लुका कामाका के पहले गोल ने उन्हें बढ़त दिलाई, लेकिन अराल सिमसिर के रीस्टार्ट के बाद तुर्की को बराबरी पर ला दिया। हालांकि बराबरी ज्यादा देर तक नहीं रही क्योंकि रिकार्डो कैलाफियोरी ने बेंच में आकर अपनी टीम को फिर से आगे कर दिया। इससे पहले पियो एस्पोटिस्टो ने आखिरी स्टेज में जीत पक्की कर दी। कई बार बाहर रहने के बावजूद तुर्की के खिलाफ 3-1 की जीत से यह पक्का हो गया कि इटली को यूरोपियन चैंपियनशिप क्वालिफाइंग ड्रॉ में सीड मिलेगी। इटली के लिए स्कैमाका ने 3 साल बाद गोल किया था। पहले हाफ में कोई खास कमाल नहीं दिखा पाने के बाद इटली ने सिमसिड के बराबरी गोल के बाद जोरदार जवाब दिया, जिसकी वजह से रिकार्डो और पियो के गोल हुए। तुर्की के स्ट्राइकर ने एक बार फिर खिलाड़ियों को छकाते हुए स्कोर 1-1 कर दिया। कैलाफियोरी ने बरेला की फ्री किक पर एक जबरदस्त छलांग लगाकर इटली को फिर से आगे कर दिया। इसके बाद एस्पोसिटो ने आखिरी समय में कमाल संभाली, रोमानो के क्रॉस को नेट में डिफ्लेक्ट करते हुए इटली के लिए 13 मैचों में अपना 7वां गोल किया। इटली अपने आखिरी 2 ग्रुप मैच 12 नवंबर को फ्रांस और 15 नवंबर को बेल्जियम से खेलेगी। शक्ति सिंह, स्पोर्ट्स कैन।
1: पुणे स्थित आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट के एथलीटों ने एशियाई खेलों में 12 पदक जीते। भारतीय दल में ASI के कुल 25 एथलीट शामिल थे। एथलेटिक्स में गुलवीर सिंह ने 1500 और 10,000 मीटर में रजत और 5,000 मीटर में कांस्य सहित 3 पदक जीते। सावन बरवाल ने मैराथन में रजत पदक जीता, जबकि सर्वेश कुशारे ने ऊंची कूद में रजत पदक हासिल किया। धनवीर ने 4x400 मीटर रिले टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। मुक्केबाजी में अंकुश ने स्वर्ण पदक जीता, जबकि नरेंद्र और कपिल ने कांस्य पदक अपने नाम किए। और एक बार फिर रुक कर लेते हैं पहले T20 क्रिकेट मुकाबले की ओर। क्या मौजूदा स्थिति है विशेष?
0: वेस्ट इंडीज 171 रन पर ऑल आउट हो गई है प्रशांत। 172 रन का लक्ष्य मिला है भारतीय टीम को। अक्षर पटेल ने आखिरी विकेट अपने नाम किया है, जिससे अब उनके विकेटों की संख्या आज 2 हो गई है। मयंक यादव को भी 1 विकेट मिल चुका है, जहां उन्होंने 4 ओवर में 40 रन देकर 1 विकेट अपने नाम किया। शानदार प्रदर्शन रहा भारतीय गेंदबाजों का आज।
1: 172 का लक्ष्य मिला है, कुछ ही देर में भारतीय बल्लेबाज मैदान पर आएंगे 172 रन के लक्ष्य को चेज करने के लिए। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल स्पोर्ट्स कैन में आपसे फिर मुलाकात होगी खेल जगत की हर खबर के साथ। आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा, इस पर अपनी राय और सुझाव में स्पोर्ट्सकैन की ईमेल sportscan.eir@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए मुझे और पूरी टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। सरकार ने बहुआयामी योजना को सुव्यवस्थित करने के लिए एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स प्राधिकरण की स्थापना को मंजूरी दी। लघु और मध्यम उद्यम विकास

0: कोष के लिए 10,000 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के लिए बड़ा प्रोत्साहन बताया। मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री मोदी को सरकार के प्रमुख के रूप में 25 वर्ष के निरंतर नेतृत्व को पूरा करने पर बधाई देते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। रक्षा मंत्रालय ने नौसेना के जहाजों के लिए ब्रह्मोस फायर कंट्रोल सिस्टम और लॉन्चर की खरीद के लिए 660 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों और असम की नागांव लोकसभा सीट के उपचुनावों के लिए मतदान शांतिपूर्वक संपन्न, मतगणना शुक्रवार को। बेल्जियम में जन्मे वैज्ञानिक फ्रांसिस हालजेन को खगोल भौतिकी मूल के उच्च ऊर्जा न्यूट्रिनो की खोज के लिए 2026 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार। और लखनऊ में पहले T20 क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज ने भारत को 172 रन का लक्ष्य दिया। और अब समाचार विस्तार से। मंत्रिमंडल ने एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स प्राधिकरण के गठन को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे परिवहन और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में अनुसंधान, योजना, मूल्यांकन, निगरानी और प्रभाव आकलन को मजबूती मिलेगी। श्री वैष्णव ने कहा कि ये देश में एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स योजना के लिए शीर्ष संस्था के रूप में कार्य करेगा।
1: देश में जिस तरह से जीडीपी बढ़ रही है 7% 8% के बीच में, लॉजिस्टिक्स की रिक्वायरमेंट लगातार बढ़ रही है। देश में बहुत सारे हाईवे बन रहे हैं, रेलवे लाइंस बन रही है, वाटरवे बने, पोर्ट्स नए बन रहे हैं, एयरपोर्ट्स नए बन रहे हैं। इन सब का एक यूनिफाइड तरह से प्लानिंग हो, उसके लिए पीएम गतिशक्ति पोर्टल प्रधानमंत्री जी ने कुछ वर्षों पहले लागू किया था। अब भविष्य की जरूरतों को देखते हुए जो प्लानिंग बनानी हो, उस सबको स्टडी करने के लिए एक इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स अथॉरिटी का निर्माण किया जाएगा।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने छोटे और मझौले उद्यमों में पूंजी निवेश के लिए 10,000 करोड़ रुपए के लघु और मध्यम उद्यम विकास कोष की स्थापना को भी मंजूरी दी है।
1: कई देश ऐसे हैं जिसमें एमएसएमई बहुत स्ट्रांग है, उन एग्जांपल्स को स्टडी करने के बाद में एमएसएमई मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के सहयोग से यह आज फैसला लिया गया। इसमें 10,000 करोड़ रुपीस का एमएसएमई ग्रोथ फंड क्रिएट किया जाएगा। ये ग्रोथ फंड एमएसएमई और फाइनेंस मिनिस्ट्री के सहयोग से चलेगा।
0: मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सरकार के प्रमुख के रूप में 25 वर्ष पूरा करने पर बधाई देते हुए एक प्रस्ताव पारित किया है। श्री मोदी कल सरकार के प्रमुख के रूप में 25 साल पूरे करेंगे। श्री वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने एक ऐसा इतिहास बनाया है जिसकी मिसाल किसी भी लोकतांत्रिक देश में बहुत कम देखने को मिलती है।
1: ये जो निरंतर सेवा देश की है, इसके लिए कैबिनेट ने अभिनंदन किया माननीय प्रधानमंत्री जी का और एक प्रस्ताव पारित किया। जिस तरह से गुजरात में माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने कार्यक्रमों के माध्यम से, नीतियों के माध्यम से कई ऐसे परिवर्तन किए जिसके लिए दुनिया भर में माननीय प्रधानमंत्री जी को जो काम उन्होंने किए वो सारे काम आगे जाके देश के लिए एक बड़ी टेम्पलेट बने। तो गुजरात मॉडल को दुनिया भर में पहचाना गया, सराहा गया और भारत भर में उसकी इम्प्लीमेंटेशन हुई।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मंत्रिमंडल का फैसला सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन है और भारतीय उद्योग जगत की अगली पीढ़ी को तैयार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री ने कहा कि एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स प्राधिकरण के गठन से देश की परिवहन व्यवस्था में बेहतर तालमेल, आंकड़ों के आधार पर योजना बनाने और परिवहन के विभिन्न साधनों को एक दूसरे से जोड़ने में मदद मिलेगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इंडिया मोबाइल कांग्रेस से पहले ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशंस एसोसिएशन के बोर्ड सदस्यों के साथ बातचीत की। प्रधानमंत्री ने डिजिटल प्रौद्योगिकी से

उपरी कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बल दिया। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी का फायदा समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए और अल्प विकसित और विकासशील देशों में सस्ती डिजिटल पहुंच सुनिश्चित की जानी चाहिए। उन्होंने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बदलाव की गति बढ़ाने वाला माध्यम बताया। प्रधानमंत्री ने साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए प्रौद्योगिकी आधारित समाधान और उभरती प्रौद्योगिकियों के लिए वैश्विक मानक तय करने पर भी बल दिया। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के जहाजों के लिए ब्रह्मोस फायर कंट्रोल

0: यह परियोजना 3 वर्षों की अवधि में रोजगार सृजित करेगी। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने आज स्वदेशी हाई एल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म फ्लाइट का सफल परीक्षण किया। ये परीक्षण वायुसेना सैन्य विमान योग्यता और प्रमाणन केंद्र, नागर विमानन महानिदेशालय, भारतीय एयरपोर्ट प्राधिकरण और अन्य नागरिक प्राधिकरणों के साथ मिलकर किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत की यात्रा में एक अहम पड़ाव है और इसका उद्देश्य लंबे समय तक हवा में रहने वाला स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप बनाना है। सरकार ने एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित को वायुसेना का नया प्रमुख नियुक्त किया है। वे 31 अक्टूबर को कार्यभार संभालेंगे। वे अमरप्रीत सिंह का स्थान लेंगे। एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने वायुसेना में कई महत्वपूर्ण परिचालन और रणनीतिक पदों पर जिम्मेदारी संभाली है। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों और असम की नागांव लोकसभा सीट के उपचुनावों के लिए मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। तमिलनाडु में मदुरांतक में 86.22% और धारापुरम में 80.30% मतदान हुआ। पुदुचेरी की थट्टाचावड़ी सीट पर 80.81% और पश्चिम बंगाल के रेजी नगर में 80.07% तथा नंदीग्राम में 80.87% मतदान हुआ। असम की नागांव लोकसभा सीट पर 76.19% मतदान हुआ। मतगणना शुक्रवार को होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के 25 वर्ष कल पूरे कर रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता तथा सुशासन से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लिए अनवरत कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण से लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। आज विशेष श्रृंखला में हम जानेंगे कि यूपीआई ने इस दृष्टिकोण को किस तरह से साकार किया है।
1: भारत के डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र में उल्लेखनीय बदलाव आया है। यह प्रत्येक नागरिक के लिए सुलभ, सरल और सुरक्षित भुगतान प्रणाली बनाने की दृष्टि से प्रेरित है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा विकसित एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई भारत की डिजिटल भुगतान क्रांति की आधारशिला के रूप में उभरा है। आज यूपीआई को 11 देशों में स्वीकार किया जाता है, जिसमें ग्रीस और मालदीव भारत के वास्तविक समय भुगतान मंच को अपनाने वाले नवीनतम है। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि यूपीआई अब घरेलू सीमाओं तक ही सीमित नहीं है। उन्होंने कहा कि कुछ समय पहले भारतीय बैंक खातों से सीधे विदेशों में भुगतान करने का विचार अविश्वसनीय लगता, लेकिन आज यह एक वास्तविकता है।
2: यूपीआई अब सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। कुछ वर्ष पहले यहाँ कोई कहता कि विदेश में भी भारत के बैंक अकाउंट से पेमेंट कर देगा तो शायद ही कोई विश्वास करता, लेकिन आज यह एक हकीकत है। भारत का यूपीआई अब दुनिया के 11 देशों में लाइव है। ये अद्भुत आंकड़े हैं जो हमें बताते हैं कि हमने कितना लंबा सफर तय किया है।
1: यूपीआई को 25 अगस्त 2016 को शुरू किया गया था और केवल एक दशक में यूपीआई ने देश में डिजिटल भुगतान के पैमाने को बदल दिया है, जिससे लेनदेन तेज, सरल और अधिक सुलभ हो गए हैं। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए दिल्ली के एक छात्र जतिन ने कहा कि जब से उनके जीवन में यूपीआई आया है तब से चीजें बहुत सहज आसान हो गई हैं।
3: जब से यूपीआई मेरी लाइफ में आया तब से चीजें आसान हो चुकी है, क्योंकि अब मुझे कहीं भी जाने के लिए वॉलेट का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। तो जब मैं वॉलेट इस्तेमाल करता था तो मुझे डर लगता था कि कहीं चोरी ना हो जाए। आज के टाइम मेरे पास एक फोन है और उसमें यूपीआई से मैं कहीं भी किधर भी ट्रांजैक्शन कर सकता हूँ।
1: 2025 तक दुनिया के वास्तविक समय भुगतान लेन देन की मात्रा में यूपीआई का योगदान लगभग 49% है। आज यूपीआई केवल एक भुगतान प्रणाली नहीं है, बल्कि लोगों का एक मंच है जो वित्तीय लेन देन को तेज, सरल, पारदर्शी और समावेशी बनाता है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप newsonair पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के नेता राहुल गांधी की आलोचना करते हुए कहा है कि वे बार बार निर्वाचन आयोग और अन्य संवैधानिक संस्थाओं को निशाना बना रहे हैं। नई दिल्ली में श्री रिजिजू ने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं को निशाना बनाना न तो देश के हित में है और न ही कांग्रेस पार्टी के हित में है।
4: ये रोज रोज कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी जो ड्रामा करते रहते हैं, इलेक्शन कमीशन को लेकर के, सुप्रीम कोर्ट को लेकर के जो हमला करते रहते हैं, अब बंद करने का समय आ गया है। लोकतंत्र में लोगों

0: को सेवा करो तो आपको जनादेश मिलेगा। अब जनादेश प्राप्त नहीं कर पाता है और इलेक्शन कमीशन को गाली देंगे, और जब सुप्रीम कोर्ट ने माफी मांगने के लिए कहते हैं, बाद में सुप्रीम कोर्ट को भी फिर अटैक करते हैं और बोलते हैं कि कोर्ट के ऊपर में भरोसा नहीं है, तो इससे ना लोकतंत्र ठीक होगा ना कांग्रेस पार्टी का फिर से उदय होगा।
1: भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल गांधी के आकाशवाणी भवन में घुसने की भी आलोचना की। इस बीच कांग्रेस नेताओं को दिल्ली पुलिस ने आकाशवाणी से हिरासत में ले लिया है। इनमें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा भी शामिल थे। इससे पहले दिन में विपक्षी दलों ने विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर संसद भवन से निर्वाचन आयोग के मुख्यालय निर्वाचन सदन तक विरोध मार्च निकाला। हालांकि सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें आकाशवाणी भवन के पास रोक लिया। इसके बाद राहुल गांधी पार्टी नेताओं और समर्थकों के साथ आकाशवाणी भवन में घुस गए। बेल्जियम में जन्मे वैज्ञानिक फ्रांसिस हालजेन को आइस क्यूब न्यूट्रिनो वेधशाला में योगदान और खगोलीय स्रोतों से आने वाले उच्च ऊर्जा वाले न्यूट्रिनो की खोज के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। 82 वर्षीय फ्रांसिस हालजेन ने अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों की एक टीम का नेतृत्व किया, जिसने दक्षिणी ध्रुव पर आइस क्यूब नामक न्यूट्रिनो डिटेक्टर विकसित किया था। इससे ब्रह्मांड के अध्ययन में सहायता मिलेगी। भारत ने ओमान के तट और काला सागर में वाणिज्यिक जहाजों पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इन जहाजों के चालक दल में कई भारतीय नागरिक हैं। हमले में घायल चालक दल के सदस्यों का उपचार किया जा रहा है। अबूधाबी स्थित भारतीय दूतावास ने बताया कि कैप्टन स्मिथ मच्छार के स्वास्थ्य में लगातार सुधार हो रहा है और वे स्वस्थ हो रहे हैं। दूतावास ने कहा है कि वो उनके परिवार, डॉक्टरों और स्थानीय अधिकारियों के लगातार संपर्क में है। लखनऊ में पहले T20 क्रिकेट मुकाबले में वेस्टइंडीज ने भारत को 172 रन का लक्ष्य दे दिया है। वेस्टइंडीज की पूरी टीम 171 रन पर सिमट गई। नमन धीर ने 3, कुलदीप यादव और अक्षर पटेल ने 2-2 विकेट लिए। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने बहुआयामी योजना को सुव्यवस्थित करने के लिए एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स प्राधिकरण की स्थापना को मंजूरी दी है। लघु और मध्यम उद्यम विकास कोष के लिए 10,000 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत। प्रधानमंत्री ने इसे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के लिए बड़ा प्रोत्साहन बताया। मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री मोदी को सरकार के प्रमुख के रूप में 25 वर्ष के निरंतर नेतृत्व को पूरा करने पर बधाई देते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। प्रधानमंत्री का साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए प्रौद्योगिकी आधारित समाधान और उभरती प्रौद्योगिकियों के लिए वैश्विक मानक तय करने पर जोर। रक्षा मंत्रालय ने नौसेना के जहाजों के लिए ब्रह्मोस फायर कंट्रोल सिस्टम और लॉन्चर की खरीद के लिए 660 करोड़ रूपये के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। और लखनऊ में पहले T20 क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज ने भारत को 172 रन का लक्ष्य दिया। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम शगुन चोपड़ा विद द न्यूज एट 9। The headlines. Government approves setting up of Integrated Transport and Logistics Authority to streamline multimodal planning. Clears 10,000 crore rupees Small and Medium Enterprises Growth Fund. Prime Minister Narendra Modi hails decision as major boost to MSME sector. Union Cabinet congratulates Prime Minister Narendra Modi on completing 25 years of continuous leadership as head of the government. Defence Ministry inks 660 crore rupee contract to procure BrahMos fire control system and launchers for Indian Navy ships. Peaceful polling held for by-elections to 5 assembly constituencies in Tamil Nadu, Puducherry and West Bengal and Nagaon Lok Sabha seat in Assam. Results on Friday. Belgian-born scientist Francis Hausen wins 2026 Nobel Prize in Physics for discovery of high-energy neutrinos of astrophysical origin. In men's cricket, West Indies set a target of 172 runs for India.